0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: बुधवार 20 मई रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। सुप्रभात आप सभी को। घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं। समय हुआ है समाचार का।
1: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमहरा से। नमस्कार और आदाब।
2: नमस्कार रादाब। मुल्क में बेरोजगारी की दर में लगातार गिरावट नोट की जा रही है। सन 2015 में ये आंकड़ा 7.9% था और पिछले साल 5.7% दर्ज हुआ। कल स्टैटिस्टिक्स मुल्क ने एक रिपोर्ट आम की। आर्थिक एवं सामाजिक सूचकांक के इस 17वें संस्करण में ये जाहिर हुआ कि एक तरफ 16 से 24 साल की उम्र वाले नौजवान बेरोजगारी से ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक साल में मॉरिशस में अतिरिक्त 6,700 मॉरिशनों को काम मिला है। कल पीएमक्यूटी कर राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री ने बैंक ऑफ मॉरिशस के संदर्भ में कुछ जानकारियां दी। पिछली सरकार के तहत केंद्रीय बैंक की निगरानी इतनी कमजोर रही कि करीब 4 स्थानीय बैंकों में तकरीबन 25 बिलियन रुपए कम पड़ गए। ये रकम टॉक्सिक लोन्स, राइट ऑफ और दूसरे तथ्यों की वजह से इतनी बढ़ी। पिछले साल इस सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश किए गए, जो 48 बिलियन रुपए थे। कई हफ्तों से मॉरिशस के सीईओ ने राष्ट्रीय विमान कंपनी में बदलाव लाने का अपना विजन आम किया। ये विजन आने वाले 10 सालों के लिए ही है। लिंक्डइन पर उन्होंने मॉरिशस के लिए 10 फ्यूचर फिट गेम चेंजर स्ट्रेटजीज की जानकारियां दी। मकसद आमदनियों को बढ़ाना, मंदियों पर दोबारा एक्सेस पाना और भविष्य की वृद्धि का समर्थन करना। विदेश में भारत में नई दिल्ली में बहुत गर्मी महसूस की जा रही है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस का दर्ज हुआ। जगह जगह लोगों को इसे बर्दाश्त करने के तरीके तलाशे हुए देखे जा रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज सुबह सवेरे कुछ बारिश होगी और बाद में मौसम अच्छा रहेगा। दोपहर बाद कुछ बादल घिराएंगे उत्तर और पश्चिम में और रह रहकर बारिश भी होगी। आज रात के दौरान ऊंचे इलाकों में वर्षा होगी और दूसरे इलाकों में मौसम अच्छा रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दिन के दौरान समुद्र की हालत बेहतर होगी, लेकिन आज सुबह दूर समुद्र में ना जाने की सलाह है। तापमान सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 24 से 26। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 23 से 25, अधिकतम 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:33 पर, सूर्यास्त 5:39 पर।
4: RM3 Radio. Radio. Radio.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ये RM3 है परवीज़ा का साथ है उर्दू दशरियात बनामे सबल खैर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप तमाम सामीन खैरियत और आफियत से होंगे। रोशनियों रहमतों और बरकतों से सजी इससे खूबसूरत नशरियात में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। मज़ीद सामीन, ये वो लम्हात है जब दिल ज़िक्र इलाही से मुनव्वर होते हैं, रूह को सुकून मिलता है और ईमान को ताज़गी नसीब होती है। तो आइए मज़ीद सामीन इससे रूह परवर महफिल का आगाज़ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बाबरकत कलाम से, जो सरापा हिदायत और सरापा नूर है। बग़ौर व बाअदब समात फरमाइए तिलावत कुरान पाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोमिनो, किसी बात के जवाब में अल्लाह और उसके रसूल से पहले न बोल उठा करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सुनता है जानता है।

अपनी आवाजें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंची ना करो, और जिस तरह आपस में एक दूसरे से जोर से बोलते हो उसी तरह उनके रूबरू जोर से न बोला करो, ऐसा न हो कि तुम्हारे आमाल जाया हो जाएं और तुमको खबर भी ना हो। जो लोग अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दबी आवाज से बोलते हैं, अल्लाह ने उनके दिल को तकवा के लिए जांच लिया है, उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है।

ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, जो लोग तुमको हुजरों के बाहर से आवाज देते हैं उनमें अक्सर बेअक्ल हैं, और अगर वो सब्र किए रहते यहां तक कि तुम खुद निकलकर उनके पास आते तो ये उनके लिए बेहतर होता, और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है।

0: मोमिनों, अगर कोई गुनाहगार तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, ऐसा न हो कि किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुंचा दो, फिर तुमको अपने किए पर नादिम होना पड़े।
1: وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ

और जान रखो कि तुम में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अगर बहुत सी बातों में वो तुम्हारा कहा मान लिया करें तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को अजीज बना दिया और उसको तुम्हारे दिलों में सजा दिया और कुफ्र और गुनाह और नाफरमानी से तुमको बेजार कर दिया। यही लोग राह हिदायत पर हैं, यानी अल्लाह के फजल और एहसान से, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है।

और अगर मोमिनों में से कोई दो फरीक आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह करा दो, फिर अगर एक फरीक दूसरे पर ज्यादती करे तो ज्यादती करने वाले से लड़ो यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ रुजू लाए, बस जब वो रुजू लाए तो दोनों फरीक में अदल के साथ सुलह करा दो और इंसाफ से काम लो कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए।

मोमिनों, मर्द मर्दों से तमस्खुर न करें। मुमकिन है कि वो लोग जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है इनसे बेहतर हों, और न औरतें औरतों से तमस्खुर करें। मुमकिन है कि वो जिनका मजाक उड़ा रही हैं इनसे अच्छी हों, और अपनों को आपस में ऐब न लगाओ, और न एक दूसरे का बुरा नाम रखो। ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना गुनाह है, और जो लोग तौबा न करें वो जालिम हैं।

कोई किसी की गीबत करे, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? उससे तो तुम जरूर नफरत करोगे, तो गीबत ना करो और अल्लाह का डर रखो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है।

लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को शनाख्त करो। बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, सबसे खबरदार है।

देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए। कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूं कहो कि हम इस्लाम लाए हैं, और ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे आमाल में से कुछ कमी नहीं करेगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है।

मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए फिर शक में न पड़े और उन्होंने अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद किया, यही लोग ईमान के सच्चे हैं।

0: इनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी जताते हो? और अल्लाह तो आसमानों और जमीन की सब चीजों से वाकिफ है और अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। ये लोग तुम पर एहसान रखते हैं कि मुसलमान हो गए। कह दो कि अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान न रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान का रास्ता दिखाया, बशर्ते कि तुम सच्चे मुसलमान हो। बेशक अल्लाह आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों को जानता है और जो कुछ तुम करते हो उसे देखता है।
1: सदकल्लाहुल अजीम। हमने अभी कुरान मजीद की पुरनूर तिलावत समाप्त की। कुरान करीम वो अजीम किताब है जो इंसानियत के लिए हिदायत, रहमत और कामयाबी का सरचश्मा है। ये दिलों को सुकून अता करती है, किरदार को संवारती है और हमें हक और सच्चाई का रास्ता दिखाती है। मज़ीद सामीन, अगर हम अपनी ज़िंदगी को कुरान के उसूलों के मुताबिक ढाल लें तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने, उस पर अमल करने और उसकी तालीमात को आम करने की

तौफीक अता फरमाए, आमीन। तेरे रहमत का नहीं कोई हिसाब, तू ही आगाज़ और तू ही है जवाब। तू ही मुश्किल में सहारा बन जाए, डूबती रूह का किनारा बन जाए।

0: तेरी हम्द सना करते हैं, सर झुका कर ये दुआ करते हैं, या खुदा इल्म की दौलत दे दी, दिल को कुरान की मोहब्बत दे दी। मजीद सामीन, ये और एम फ्री है और आप सुन रहे हैं रूह परवर और ईमान अफरोज खसूसी नशरियात सवाल खैर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मजीद सामीन, हज इंसान को आजिज़ी सिखाता है, एहराम ये बताता है कि न कोई बड़ा है न कोई छोटा, सब एक रब के सामने खड़े हैं। यही इस्लाम की खूबसूरती है, यही ज़िंदगी की हकीकत है। तो आइए मज़े सामीन, इन्हीं बाबरकत सातों और हज की रूहानी नस्बत से जामा मस्जिद के मुअज़्ज़िज़ ख़तीब आली हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ईसा क़ादरी रज़वी साहब का नहायत ईमान अफरोज़ बयान समाअत फरमाइए।
1: नहमदुल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व हबीबिना मुहम्मदिन अल-मुस्तफा وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد ثنا کے بعد सामीन मोहतरम, सूरह वल फज्र में अल्लाह पाक ने 10 रातों की कसम उठाई, फरमाया वलयालिन अशर, और कसम है 10 रातों की। यहाँ 10 रातों से क्या मुराद है? सो तफसीर इबन कसीर वगैरह में है, रूहुल बयान में भी है, रूहुल मानी में भी है, अद्दुर्रुल मंसूर में भी है, तफसीर राजी में भी है कि इससे मुराद माह ज़िल हज के पहले 10 दिन और पहली 10 रातें हैं, और इसकी ताईद मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह अन की इस रिवायत से होती है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अशरा अशरुल अदहा, के

यहाँ वलयालिन आश्र में आश्र से मुराद दस रातों से मुराद माह ज़ुलहज की दस रातें हैं। सो ये बात साबित हो जाती है इस रिवायत से कि आयत मस्कूर में लयालिन अशर से मुराद ज़िलहज के आशरे की और ज़िलहज के पहले दस दिनों की रातें हैं। अब ये बात गौर तलब है कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने इन आयात में फजर और दस रातों की कसम उठाई है और ये बात रोज़े रोशन की तेरे आया है कि कसम आम तौर पर उन चीज़ों की उठाई जाती है जो शान वाली हो। ये लोगों की आदत है और अल्लाह जल्ल मजदहू भी उसी चीज़ की कसम उठाता है जो अल्लाह के यहाँ शान वाली हो। चुनाचे ये रातें किस क़दर अहमियत की हामिल होंगी जिनकी कसम खुद अल्लाह उठा रहा है। इसलिए ये ख्याल अपनी जगह बजा और मुस्तनद है और ये हकीकत है कि ज़िलहज की इब्तदाई दस रातें दीगर रातों पर फजीलत रखती हैं। और दिनों के बजाय रातों का तस्किरा इसलिए किया गया कि चांद के कैलेंडर में तारीख की इब्तिदा ग़ुरूब आफ्ताब से होती है, गोया तारीखों में रात को असल माना जाता है और दिन को उसका ताबे माना जाता है। सो अजीज़ान मोहतरम, ये बड़ी अजीम रातें हैं, इन रातों को ज़ाया ना किया जाए। हमारे यहाँ अजब में इसका इतना ज़्यादा अहतमाम नहीं होता, लेकिन अरब ममालिक में औलिया उलमा अहलुल्लाह सूफिया के यहाँ अवाम और ख़वास में इन रातों को बहुत अहमियत दी जाती है। चुनाचे उनके यहाँ मुख्तलिफ़ औराद मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ राइज हैं, इन रातों में पढ़े जाते हैं, दिनों में पढ़े जाते हैं। अगर आपसे ज़्यादा ना हो सके तो कम अज़ कम इन रातों में तहज्जुद के लिए ज़रूर उठें और 100 दफ़ा दुरूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो नमाज में पढ़ा जाता है वो पढ़ें और 100 दफ़ा तीसरा कलमा और 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार। ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, कल कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि

0: ख्वाब गफलत से बेदार हुआ जाए। नमाज की पाबंदी और जो भी अल्लाह जल्ल मजदहू के अहकाम हैं उन सब की पाबंदी की जाए और गुनाहों से बचा जाए। आला हज़रत नव्वर अल्लाहु मरकदहू का ये शेर है, इसको बार बार पढ़ा जाए कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, वमा अलैना इल्ल बलाग।
1: यकीनन मुअज़्ज़िज़ सामईन, जामा मस्जिद के खतीब अलै मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रज़वी साहब के मुबारक बयान ने हमारे दिलों को इश्क इलाही, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जज्बा इबादत से मुनव्वर किया है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, ज़िलहज का ये मुबारक महीना हम पर अपनी रहमतों और बरकतों के साथ साया फुगन है। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि इबादत, कुर्बानी और तकवा की तरफ एक खूबसूरत दावत है। तो आइए मुअज़्ज़िज़ सामईन, लगातार दो हफ्तों से जो बयान आप सुन रहे हैं आज उसका आखिरी हिस्सा आपके लिए पेश करते हैं, समाअत फरमाइए।
2: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ। हम अपने करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सफर हज की कुछ बातें हुसूल बरकत के लिए सुन रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ आने वाले सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, इन्होंने मक्का मुकरमा में तवाफ़, सही और वहाँ की जो मसरूफियात थी उनसे फरागत पाई। जिन हजरात का उम्रे का अहराम था या जिनका उम्रे के अहराम में तब्दील करवाया गया, हज का अहराम था, सरकार ने फरमाया उम्रे में तब्दील कर दो, जो भी सूरत हुई, तो उन्होंने वहाँ अहराम खोल दिए और सारे मामलात वगैरह जो तरीक़ा कार है उसके मुताबिक किए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, चूँकि आप हज किरान की नीयत से थे, उम्रा माल हज, हज की तीन किस्में रफ़ीकुल हरमैन में इसकी तफसील मौजूद है, तो इन सब में अफजल हज जो है वो हज किरान है। हज किरान में कुछ मुशक्क़त भी ज़्यादा होती है और नबवी अदा भी है, इसलिए भी अफजल है, और जिस काम में मुशक्क़त ज़्यादा होती है वो मुशक्क़त की वजह से भी अफजल होता है। जब योम तरविया आया तो योम तरविया ये हजरात मीना की तरफ मुतवज्जे हुए, यानी 8 ज़ुलहज को मक्का मुकरमा में मौजूद हाजी हज का अहराम बांध कर मैदान मीना की तरफ जाते हैं। योम तरविया, तरविया के दो मानी आमतौर पर किए जाते हैं, एक इसका माना किया जाता है सैराब करना और दूसरा इसका माना किया जाता है गौर करना। योम तरविया को योम तरविया क्यों कहते हैं? 8 ज़ुलहज ये योम तरविया है। सैराब करना के माना को अगर लिया जाए तो अहले अरब का ये अंदाज हुआ करता था कि 8 को चूंकि हज के लिए जाना, 8वीं का दिन मीना में गुजरेगा जोहर से लेकर 9वीं की फजर तक, फिर यहाँ से अरफात चले जाएंगे, अरफात से फिर मुजदलफा में आना, फिर मीना में आना, फिर यहाँ से मक्का मुकरमा आना, तो ये चंद दिन का एक सफ़र हुआ करता था। तो 8 ज़ुलहज को एहतमाम के साथ ऊँटों को पानी पिलाया जाता, इनको सैराब किया जाता ताकि इस सफ़र में हमारे जानवर प्यास की शिद्दत में मुबतला ना हो। ऊंट को अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने यह सलाहियत दी है कि यह पानी अपने अंदर ही ज़खीरा कर लेता है और अंदर ही ज़खीरा करने के बाद फिर हाजत के वक्त उसको इस्तेमाल करता रहता है। तो 8 ज़ुलहज को ऊँटों को पानी पिलाया जाता है, इसलिए इसको योम तरविया कहा जाता है। दूसरा माना गौर करना, अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब मुसलसल ख्वाब में कहा जाता रहा कि अपने बेटे इस्माईल को ज़बह करो, तो आपने योम तरविया

तो ये मैदान क्यामत में भी तलबिया पढ़ते हुए आएंगे, मैदान क्यामत में भी इस शान से आएंगे कि इनकी जबान पर ये कलिमात होंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सरकार ने इस वाक्य की खबर दी। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मैदान अरफात में खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा तो तवील है, उस खुतबे का कुछ हिस्सा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। चूंकि अहले अरब में लड़ाइयां ज्यादा होती थी, झगड़े ज्यादा होते थे, कतरो गारतगरी के सिलसिले ज्यादा होते थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर करने के वाकयात भी उसी कौम से ताल्लुक रखते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जमाने जाहिलियत में होने वाले अफआल और आमाल अपने इस बयान में, अपने इस खुतबे में उन चीजों का रद्द फरमाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुरमति यौमिकुम हादा फी शहरिकुम हादा फी बलदिकुम हादा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे खून, तुम्हारे आपस के माल तुम पर यूं ही हराम है जैसे तुम्हारे इस दिन की, इस महीने और इस शहर की हुरमत। योम अरफा बड़ी हुरमत वाला है ना, योम अरफा भी हुरमत वाला है, जुलहज का महीना ये भी हुरमत वाला है, और जिस जगह पर तशरीफ फरमाए वो जगह भी हुरमत वाली है। फरमाया, जिस तरह ये चीजें इनका तुम अदब व एहतराम करते हो और इन महीनों में, इन दिनों में, इन जगहों में तुम गुनाह करने से और गलती करने से अपने आप को बचाते हो, तो इसी तरह क्यामत तक के लिए तुम पर आपस में एक दूसरे का खून करना, एक दूसरे के माल गसब कर लेना यह हराम कर दिया गया। कत्लो गारतगरी से मना फरमाया, अमवाल गसब करने से मना फरमाया। इसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़बाने फैज़ तर्जुमान पर जो जुमले आए, अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलियति तहत कदमी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खबरदार ज़माना जाहिलियत की जितनी भी रसूमात है ना, वो सारी की सारी रसूमात मैंने अपने कदमों के नीचे रौन डाली, वो सारे तरीके आज तुम्हें खत्म करने होंगे, और आज के बाद जमाना जाहिलियत की किसी रस्म किसी तरीके को तुम नहीं अपनाओगे। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वदिमाउल जाहिलियत मौदूआतुन, जमाना जाहिलियत में होने वाली खून रेजी के जो मामलात थे, एक का बदला लेना है, इसका बदला लेना है, उसका बदला लेना है, इस कबीले वालों ने फलां का बदला लेना है, उस कबीले वालों ने फलां का बदला लेना है, तो ये जितने भी तुम्हारे खून वगैरह के मामलात थे ये सारे के सारे आज के बाद खत्म। नहीं, आज के बाद कोई साबिका किसी कत्ल की वजह से बदला किसी से नहीं लेगा, पिछले सारे मामलात खत्म। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वला दमिन अदाउ मिन दिमाइना दमुबनी रबीअत बिनिल हारिथ वकान मुस्तरदियन फी बनी सादिन फकतलहू हुज़ैलुन, सबसे पहला कत्ल जो कबीला बनी साद का हुआ था उसका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया। कबीला बनु साद और कबीला हुज़ैल, इन दोनों की आपस में जंग के मामलात थे। कबीला हुज़ैल वालों ने कुछ पथराव वगैरह किया जिसकी वजह से कबीला बनु साद में रबीआ बिन हारिस का बेटा ये इंतकाल कर गए। रबीआ बिन हारिस के बेटे के इंतकाल का जो मामला हुआ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उसका जिक्र किया कि उसका खून भी मुआफ, कबीला हुज़ैल वालों से उसके खून का बदला नहीं लिया जाएगा। फिर इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वरिबल जाहिलियत मौदूउन व अव्वल रिबन अदाउ मिन रिबा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब फ़इन्नहु मौदूउन कुल्ला, इरशाद फरमाया कि सूद के जितने भी लेन देन के मामलात थे आज से वो भी खत्म। असल रकम किसी ने लेनी है वो ले ले, लेकिन जायद उस पर जो रकम बनेगी वो लेने की इजाजत नहीं है। और इसके बाद हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के चचा जान है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनका जिक्र किया। चूंकि इनका सूद की हुरमत से पहले लेन देन का कुछ सिलसिला वगैरह रहा था तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने

उसका जिक्र किया कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने जिस जिस का जो जो लेना है वो आज से वो भी खत्म। अच्छा, इसमें अगर गौर करें ना तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने घर की बात कर रहे हैं, अपने खानदान की बात कर रहे हैं।

0: अंदाज में तुम इनकी इज्जत व अजमत का, इनकी इज्जत व इस्मत का, इनके खाने पीने रहने सहने का भी ध्यान रखो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इनका जिक्र किया, फिर किताबुल्लाह ने कुरान पाक को मजबूती के साथ थामने का जिक्र हुआ। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम किताबुल्लाह को थामे रखोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाह को थामने का, किताबुल्लाह पर अमल करने का, किताबुल्लाह को मजबूती के साथ लेने का, इसके अहकामात पर अमल करने का हुक्म इरशाद फरमाया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जितने भी वहां मौजूद हैं उनसे एक सवाल किया। वो सवाल क्या है? अंतुम तसअलून अन्नी फमा अंतुम काइलून, तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा, तुम बताओ मेरे बारे में क्या कहते हो। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने मुझे इसलिए भेजा ताकि मैं तुम्हें अल्लाह के पैगाम पहुंचाऊं, उसके अहकाम पहुंचाऊं, उसकी तालीमात से तुम्हें आगाह करूं। तुमसे इस चीज के बारे में सवाल किया जाएगा, तुम बताओ मेरे बारे में क्या कहते हो। इन हजरात ने अर्ज किया, नशहदु अन्नका कद बल्लगता व अद्दैता व नसहता, हम ये अर्ज करेंगे, हम ये गवाही देंगे कि आपने अपना फरीजा अदा कर दिया, आपके रब ने जो पहुंचाने का कहा था वो आपने पहुंचा दिया। अच्छा, जब ये सहाबा इकराम अलैहि मुर्दवान की जबान पर आया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह की बरगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मशहद अल्लाहुम्मशहद अल्लाहुम्मशहद, ए अल्लाह गवाह हो जा, ए अल्लाह गवाह हो जा, ए अल्लाह गवाह हो जा, जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी वो मैंने जिम्मेदारी अदा कर दी, जो काम मेरे जिम्मे किया गया था वो काम मैंने आज पूरा कर दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने इस मुबारक खुतबे में कई और बातें जिक्र फरमाई, लेकिन इख्तिसार के साथ जो बातें आपकी खिदमत में अर्ज की गई हैं थोड़ा सा उनका दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खून रेजी से मना किया, अमवाल गसब करने से मना किया, कत्लो गारतगरी से मना किया, सूद के लेन देन से मना किया, औरतों के हकूक अदा करने का हुक्म इरशाद फरमाया, औरतों पर जो मर्दों के हकूक हैं उनका जिक्र किया और मर्दों पर जो औरतों के हकूक हैं उनका बयान फरमाया। और इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने किताबुल्लाह को मजबूती के साथ थामने का, मजबूती के साथ थामने का मतलब इसकी तालीमात पर अमल करना, इसके अहकामात और इरशादात को दिलो जान से कबूल करना, इसका जिक्र किया। और इसके बाद ये खुतबा मुबारक अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ा। ये इख्तिसार के साथ दो चार बातें उस मुबारक खुतबे की आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। आमीन बिजाह नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
1: या अल्लाह, मक्का मुकर्रमा में अपने घर के मेहमानों पर अपनी खास रहमतें नाजिल फरमा। ऐ रब्बे करीम, जो लोग हज की सआदत हासिल कर रहे हैं उनके हज को मबरूर बना दे, उनकी इबादतों को कबूल फरमा और उनके हर कदम को अपनी रजा का जरिया बना दे। या अल्लाह, हर मोड़ पर उन्हें आसानी अता फरमा, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, तमाम हुज्जाज कराम को महफूज रखना, उनके सफ़र को आसान बनाना और उन्हें अपने घर इसी हाल में लौटाना कि तूने उनसे राजी हो गया हो। आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अंजू की फराहम करदा टिकनी की रहनुमाई का शुक्रगुजार हैं हम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक परवीज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

Wave are just from 7 a.m. to 8 a.m. Danny Seyarangam.

0: మరి ఆల్ చేసుండాలం చేసుండాలం
1: Your request.

रस्सी को कई शंका नहीं कि या तासा चिले भारी कार्यक्रम सामना रहे त्रिशेष्टी कनेक्टेड विद अस दहा वास्ता पर्यंत एंडिकेटिंग है पुढील गाणं तुम्हा सगळ्यांसाठी।

0: the rich folks, man.
1: दुनिया भर में करे कमाणी
0: ड्राइविंग इन द बेंटली मान
1: खोट ना धंधा मा पण नफो करे के खोट ना धंधा मा पण नफो करे
2: लागे। लागे। लागे।

0: काकुस केसर तोता पूरी
1: शियाड़े उंधियो खवा
2: बालोर पापड़ी ने मुठिया ना भूलता
1: चौमासा मा भजिया तड़ो के

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: श्रोताओ कहेवाय छे ने के भाई देखा देखी करीने जीवन बगाड़सो नहीं, कोईनी सलाह पर चालसो नहीं अने अंगत वातो शेर करशो नहीं। हमेशा अपनी सगवड अने अपनी विचारधारा आपणे जीवीशुं ने तो सुखी रहीशुं। कहेवाय ने के भाई देखा देखी थी जीवन ने अपने बगाड़वानुं नहीं अने कोईनी सलाह पर अपने चालवानुं नहीं, ने जे अंगत वातो छे आपणी ने ए कोईने कोईने शेर करशो नहीं। हमेशा अपनी सगवड़ अने जे अपनी विचारधारा प्रमाणे जारे अपने जीवीए छे ने तो आपणुं जीवन सुखी रहे छे। एनी साथे गुजराती कार्यक्रमनो सुंदर मजानो आगलो गीत लई ले भाई, पार्थिव ગોહિલ અને અર્પણ મહિનાળ અવાજમાં લેવામાં આવેલું અન્ય વે।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

0: 旋转旋律治愈日常，听众朋友，今天的星月之旅即将缓缓落幕，感谢30分钟的音乐温柔相伴，愿舒缓的乐章抚平疲惫，温暖心境。收藏这份安静与松弛，我们下期再会。祝您周三万事舒心，午间安好。
1: की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली, आपको नमस्कार और आदाब।
2: नमस्कार और आदाब। कल स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने अपनी रिपोर्ट आम की और कहा कि मॉरिशस में बेरोजगारी की दर में लगातार गिरावट नोट की जा रही है। सन 2015 में ये आंकड़ा 7.9% था और पिछले साल 5.7% दर्ज हुआ। आर्थिक एवं सामाजिक सूचकांक के इस 17वें संस्करण में ये जाहिर हुआ कि एक तरफ 16 से 24 साल की उम्र वाले नौजवान बेरोजगारी से ज़्यादा प्रभावित हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक साल में मॉरिशस में अतिरिक्त 6,700 मॉरिशनों को काम मिला है। प्रधानमंत्री ने बैंक ऑफ मॉरिशस के संदर्भ में कुछ जानकारियां दी हैं। पिछली सरकार के तहत केंद्रीय बैंक की निगरानी इतनी कमज़ोर रही कि करीब 4 स्थानीय बैंकों में तकरीबन 25 बिलियन रुपए कम पड़ गए। ये रकम टॉक्सिक लोन्स, राइट ऑफ और दूसरे तथ्यों की वजह से इतनी बढ़ी है। पिछले साल इस सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश किए गए जो 48 बिलियन रुपये थे। पर्यावरण पुलिस कचरों के फेंके जाने के संदर्भ में सख्त रवैया जारी रख रही है। गुडलैंड्स में फेंके कूड़ों में मिली एक रसीद से पता चला कि हरकत के पीछे कौन है। पुलिस एक एक बात पर ध्यान दे रही है। गए दिनों में कई कार्रवाइयां चलाई गई, 3 लोगों को कंट्रावेंशन दिया गया है। सऊदी अरब में हज अदा करने गए करीब 50 मॉरिशनों को अलजीजिया में होटल से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके लिए नए होटल का बंदोबस्त किया गया। इस्लामी सकाफती सेंटर और वहां पर हमारे सुल्तनत ने बताया कि उन्होंने खुद हज मिशन के साथ हाजियों के लिए नया होटल ढूंढा और हमारे हमवतन इत्मीनान से रह रहे हैं और ज़ियारत कर पा रहे हैं। विदेश में थाईलैंड ने वीज़ा को लेकर कुछ मुल्कों के लिए नई पाबंदियां लागू की। सन 2024 से

0: विदेशों से आने वाले पर्यटकों को 60 दिनों के ठहराव के लिए वीजा की जरूरत नहीं है ताकि थाईलैंड की अर्थनीति में मजीद योगदान हो, लेकिन अब कुछ देशों को 30 से ज्यादा दिनों के ठहराव के लिए वीजा की अर्जी भेजनी पड़ेगी, उनमें ग्रेट ब्रिटेन शामिल है। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। एक्स रेलवे रोड पदागोचिया में 80 साल के 80 years old श्री धनेश्वर समुज जो पुजीवन के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनके घर एक्स रेलवे रोड पदागोचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्टॉन्स सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM ओल्ड ट्राफोर्ड लेन लेस्पेरेंस कोचिया मिलिटिया में 69 years old श्री अंबिकादत्त सुकलाल जो सुगान के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज साढ़े तीन बजे इनके घर ओल्ड ट्राफोर्ड लेन लेस्पेरेंस कोचिया मिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेस्पेरेंस कोचिया मिलिटिया की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Radio.TV.
2: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर के सभी लिसनर्स का एक बार फिर से वेलकम स्वागत. कैसे हैं, कहाँ हैं, लंच करने के लिए निकले हैं, निकल रहे हैं या फिर ऑफिस में बैठे बैठे खाना खा रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, तो आपका स्वागत करती हूँ मैं रेडियो मनोरंजन पर. और नंबर आपको पता है 4028-0700. आपको अगर अपनी पसंद का कोई गाना सुनना है या तो फिर आपको बस हमसे कोई बात करनी है या तो फिर आपको हमारे टिकटॉक के साथ अगर लाइव जुड़ना है तो यू आर मोस्ट वेलकम. ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपके साथ रहूँगी 2 बजे तक.
1: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: सुहाना सफर
1: स्वागत है सुहाना सफर प्रोग्राम में। 12:11 हुए हैं, आज है वेडनेसडे 20 मई। जी हाँ, वक्त भाग रहा है या हम पीछे रह गए पता नहीं, लेकिन इसीलिए कहते ना कि जिंदगी जो है बहुत छोटी सी है, हर एक पल हर एक लम्हे को इंसान को चाहिए कि वो प्यार से जिए, मुस्कुरा के जिए और इसका पूरा फायदा उठाए, क्योंकि कल हमारे बीच में कौन नहीं, कोई नहीं जान सकता। आज हम सब साथ में है, गाना सुन रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कल बस हम में से कोई ना कोई याद बन के रह जाएगा। इसीलिए जितना हो सके जिंदगी को प्यार से जियो, खुश होकर जियो, जियो और जीने दो, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ है रीना, अक्रम, ललिता, जीवासन, पिरोमाल, विहा, माधुरी जो 1, 2, 3 करती हुई आ गई, एजे हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, आई एम मच बेटर, एंड जीतन दुलवा, आपका हम स्वागत करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कौन,

0: यहाँ पर हमारे साथ है कविता बख्तवर सलोनी गायादीन और साथ में यहाँ पर हमारे हैं मीला रामा एंड परी आ गई. जी हाँ, परी का हम रोज़ इंतज़ार करते हैं. कल वो नहीं थी, परसों नहीं थी, लेकिन उनको याद किया जाता है. जब हम में से कोई भी नहीं होता है ना, तो हर कोई ना किसी किसी को याद करता रहता है. सो परी का हम स्वागत करते हैं. एंड रेखा रामा नमस्ते, स्वागत है आपका. सुल्ताना खंदाए आपका भी स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, नमस्कार आपको. शैला वायतलिंगम हमेशा की तरह उनका मैसेज आता है, स्वीट मैसेज, गुड आफ्टरनून कुकोडू. थैंक यू शैला, गुड आफ्टरनून टू यू टू माय कुकोडू. एंड चलिए यहाँ पर अभी मूड बन गया है, सारे लोग हमारे साथ शामिल हो गए हैं. और अनु जानू हमारे साथ है, हाई सिस्टर. और वी हैव तिलक कुमार जो सुन रहे हैं हमें, रवि शालिनी, नीरव, केशनी और साथ में हमारे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर अनु जानू ने कहा कि फर्स्ट टाइम मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच. एंड यहाँ पर मोहसिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है, वेलकम है आपका. हमारी पूरी फैमिली साथ में, मिस्टर एस सिंह आपका भी हम स्वागत करते हैं. दिलवंती सोनातन नमस्ते. चलिए जी, यहाँ पर बातें बहुत सारी हो गई, गाने आ गए हैं, तो माधव बलरूप आपके लिए भी पेश है ये अगला गाना.
1: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: प्रोग्राम है सुहाना सफर। भले ही हमें 5250-6200 पे मैसेजेस ना आए, लेकिन हमारा टिकटॉक जब लाइव चलता है तो यहाँ पर मैसेजेस की बारिश होने लगती है, तूफान आ जाता है। चलिए यहाँ पर आरती सदाशिवन का वेलकम करते हैं, और यहाँ पर हमें मोहसिन कहते हैं कि आई एम फ्रॉम वैनकूवर कैनेडा। सो उन्होंने सबके लिए बहुत सारा प्यार भेजा है, थैंक यू सो मच। केशनी हमारे साथ है, और साथ में यहाँ पर हमारे और भी बहुत सारे लिसनर्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। चलो कहते हैं कि एक प्यार सा गीत लता जी का, कोई दर्द भरा गीत मैं कोशिश करती हूँ, है मेरे पास, शायद काफ़ी सारे लोगों ने फरमाइश की थी तो चलाने की अभी हम कोशिश करते हैं। गंगाराम फैमिली के लिए नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करते हैं, वहीं पे यास्मीन हमारे साथ हैं, कहती हैं हेलो वेफिता। आदाब आपको यास्मीन, वेदिता को वेफिदा बना दिया, हम तो फिदा हो गए। चलो नेहा नीलनी हमारे साथ हैं, थैंक यू फॉर लविंग दिस सॉन्ग। एंड मनोज जी आप बताइए आप कैसे हैं, कहते हैं कि मेरा हाल ठीक ठाक है, कोई गाना हो तो चला देना और आपके पहलू में आकर सो गए। आपको क्या लगता है, 12:20 हो रहे हैं, मैं क्यों सुलाऊं किसी को? ये तो जागने का टाइम है ना। मैं कोशिश करूंगी ये गाना आपके लिए भी थोड़ी देर में चलाने की, मजाक कर रही हूँ समझा करो। चलो ललिता रामचंद जी थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एंड साथ में यहाँ पर हमारे इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, हमें हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं सुन रहे हैं, उन सबको मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी, प्यार भरा नमस्कार कहती हूँ, वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज के गीतों का जो सिलेक्शन है आप पसंद करेंगे। यहाँ पर साहिल भी आ गए हमारे साथ जुड़ने के लिए हमेशा की तरह। एंड गाना आपने मांगा है, आपने गाने की फरमाइश की है यास्मीन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा गाना है, आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि ये कौन सा गाना है तो मैं चला पाऊँगी, मैं उसको ढूंढ पाऊँगी। कोशिश हमारी रही है कि आपको हम आपके पसंद का गाना सुनाएं, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चलो यहाँ पर अमन सेजिया मिल फॉर साइट से हमारे साथ हैं, अभी मैं आपको थ्रियो ले चलती।
2: RL Free Radio.

जी नहीं, पुराने गीतों का सफर शुरू हो गया है, रुकने वाला नहीं है। मनोज हमारे साथ सेवास्तोपोल से है, उनके लिए गाना होगा और साथ में ये गाना होगा फॉर मिसेस प्रीति जो साथ दे रही है हमारे। थैंक यू वंस अगेन। और यहाँ पर किसी ने मैसेज लिखा है, नाम नहीं लिखा है, प्लीज़ जब आप लोग मैसेज करो तो अपना नाम ज़रूर लिखना। और तरुण का करते हैं हम वेलकम, उनका गाना थोड़ी देर में।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: पुराने गीतों का प्रोग्राम सुहाना सफर 12:26 विदित आपके साथ और आप लोग हमारे साथ खूबसूरत गाने गुनगुना रहे हैं। चलिए गुनगुनाते हुए अभी जो अगला गाना होगा वो भी हम आपको नजर करेंगे और नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं हम इसे हमारे प्यारे दोस्त तरन राम के लिए। जी हाँ, जो कि हमारे साथ हैं। सो तरुण, आई होप यू आर डूइंग गुड, एकदम मस्त झकास मूड में हो। अनोरखी, वी हैव नेक्स्ट गाना मम इंदिरा और साथ में अंजू, शाइना और रेहाना के लिए। प्रीति फिजी से हमें सुन रही हैं, कहती हैं कि यहाँ पे रात के 8:20 हुए हैं। ओह लला, क्या बात है। तो ऐसे में तो मूड थोड़ा सा और भी मज़ेदार हो जाएगा, है ना। पुराने गाने जब चलते हैं शाम के वक्त तो रात में स्पेशली अंधेरा होता है, क्या मज़ा आता है। पद्मिनी मर्डामुतु हमारे साथ, महमूद इब्राहिम हमारे साथ और महक रामदिनी का कल बर्थडे है तो आपको अभी से ही हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। राम रीता, गुड आफ्टरनून आपको। और मोहम्मद पोटलुइस से हमारे साथ हैं, आपने गाने की फरमाइश की है, मैंने नोट कर लिया है। सिमोन जोगी फ्रॉम होलैंड एंड हमारे साथ हैं रिची और हैं मिस्टर खान फ्रॉम

हैं तो आपको अभी से ही हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू राम रीता, गुड आफ्टरनून आपको। और मोहम्मद पोर्टलुइस से हमारे साथ हैं, आपने गाने की फरमाइश की है, मैंने नोट कर लिया है। सिमोन जोगी फ्रॉम हॉलैंड एंड हमारे साथ हैं रिची और हैं मिस्टर खान फ्रॉम, कि आप लोग नाम नहीं लिखते, अब्दुल रिशाद आपका वेलकम है यहाँ पर, श्वेता, देवांश, मामा सीता, ख्वायोसी और सभी फैमिली के नाम। सना आपका भी वेलकम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में और साथ में उन तमाम दोस्तों का जिनको पुराने गाने पसंद हैं।

0: पुराने गीतों का प्रोग्राम है जहां पर हम सिर्फ पुराने गाने चलाते हैं। 80s के कुछ गाने हमारे प्रोग्राम में फिट हो जाते हैं, कुछ लेट 80s के भी, कुछ अर्ली 90s के भी फिट हो जाते हैं, लेकिन जब आप हमसे उसके बाद की जो प्रॉब्लम ये है कि आप जब गाने मांगते हो तो अपने प्रोग्राम में हम शामिल नहीं कर सकते। चलिए देर न करते हुए यहाँ पर जो नेक्स्ट गाना होगा हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए। हमारे साथ हैं नितेश बुलाकी, अनसुया, राजेश जूतन, वीर सिंह, प्रकाश है, सुल्फिनो, सेफी हमारे साथ है। रॉकस्टार फिल्म का गाना हम नहीं चला सकते, हम सो सॉरी। सना की तरफ से हम अलीजे को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। बबीता अपनी बेटी नेहा को बर्थडे विश कर रही हैं, आज उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। कोई मिल गया फिल्म का गाना हम नहीं चला सकते, हम सो सॉरी। और यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट गाना होगा हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए, कहते हैं कि हमने आज तुम्हें ये नाम दे दिया, राजा साहब फिल्म का गाना। ठीक है, हमने नोट कर लिया राजा साहब फिल्म का गाना, और मुझे पता है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। हम कोशिश करेंगे इस गाने को अभी ढूंढने की, फ़िलहाल के लिए तो अभी जो नेक्स्ट गाना होगा वो मैं आपको डेडिकेट करना चाहूँगी, और साथ ही साथ यही गाना हम आप सभी लिसनर्स के नाम चला रहे हैं, साथ दे रहे हो, थैंक यू सो मच। एक कॉलर है, उनसे भी बात करना है, तो ऐसा लाइन कट गई, देखा हम बात करते हैं तब तक लाइन कट जाती है, कोई बात नहीं, फिर से कॉल कर लीजिएगा और हम बात कर लेंगे। केतिका आपके लिए भी होगा नेक्स्ट गाना।
1: RM3 रेडियो।
0: वैसे इस गाने की फरमाइश तरुण ने की थी मंडे को, और आज ये गाना हम आपको डेडिकेट कर रहे हैं, सभी लिसनर्स को भी जिनको ये गाने पसंद हैं, और कुछ अगर शोर पसंद है तो क्यों नहीं।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: ये है आपका सुहाना सफर और मैं एक बार फिर अपने सभी लिसनर्स जो कि इस समय टिकटॉक पे हमें सुन रहे हैं हमें देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जब फरमाइश करें गीतों की तो पुराने गानों की ही फरमाइश करें क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है

चलिए जी, यहाँ तो गए हम और कहाँ तक आए। नीतीश कहते हैं उनकी वाइफ निहारिका थोड़ी खफा खफा नाराज सी हैं, उनको मनाने के लिए हो जाए एक प्रोग्राम का अगला गाना। साथ में आशा लखनौत तरन अपने सभी फ्रेंड्स को गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। और वहीं पे हमारे साथ हैं हिमेश रेशमिया, क्या बात है। योगिता जी नमस्कार, स्वागत है प्रोग्राम में। ऋषिदेव राम किलावन जी कैसे हो, प्रोग्राम में आपका हम वेलकम करते हैं। और चलिए इसी के साथ कोई चाय भी बुला रहा है, क्या बात है जी। गीता जी आप त्रियोली से हैं, बेटी अनुषा और विदुषा के लिए गाना होगा।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर
1: प्रोग्राम है सुहाना सफ़र। और यहाँ पे हमारा सफ़र जो है एकदम खूबसूरत हो जाता है जब हमारे दोस्तों का साथ होता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मेरे साथ यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में दुनिया के कोने कोने से लोग निकल कर जुड़ जाते हैं। आपको पता है यहाँ पे अभी मैसेज आया है कैनेडा से, फिजी आइलैंड से, और कितने सारे लोग हैं यहाँ तक कि अभी हमें कुवैत में भी सुना जा रहा है, हॉलैंड से भी है मैसेज आया हुआ है। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, फील कंफर्टेबल, फील होम। बस पुराने गाने हैं, हमारा आप हैं, साथ में गुनगुनाएंगे और अपनी इस सफ़र को खूबसूरत बनाएंगे। चलो जी, तो यहाँ पर हमें अभी अगला जो गाना होगा, किसी ने कहा अदरक वाली चाय ले लो कोई लेकर आ जाए तो हम वो भी पी लें। चलो जी, थैंक यू। किसी ने कहा है पिया तू अब तो आ जा, पिया तू अब तो आ जा, चाय पीने आएंगे ज़रूर। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सिमी कहती हैं कि आज मेरी भतीजी संयुक्ता का जन्मदिन है, उनके लिए कोई मशीन गाना, ये कौन सा गाना होता है मशीन गाना, मुझे नहीं पता आपने क्या लिखा, लेकिन गाना ज़रूर, ठीक है, गाना हम चला देंगे उनके लिए, और साथ में ये गाना हम आपके नाम भी डेडिकेट करेंगे। और दौलत तरन तम्मा तम्मा तो क्या मैं अम्मा को भी नहीं बुला सकती, क्योंकि ये पुराने गीतों का प्रोग्राम है।
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
3: Zulf se pa

0: ना सफर सुहाना सफर
1: न झटको जुल्फ से पानी झटको जुल्फ से पानी। अरे सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में कौन बालों को भिगो के घूमता है भाई। नहाने में टेंशन लग जाती है कि नहाना है कि नहीं नहाना है, नहाना अरे कर ही तो रहा है था, प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ऐसे हो जाता है। चलो यहाँ पर हमें भेजा है इमरान, लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम कैनेडा। थैंक यू सो मच कैनेडा वालों, हमारे साथ इस समय आप लोग जुड़े हुए हैं और हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। अब इस समय मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे दिन के 12 बजे हैं तो आपके यहाँ रात के 12 बजे होंगे, क्योंकि उल्टा चलता है ना। हमारे यहाँ पहले जब सुबह होती है तो आपके लिए ऑलरेडी, हम लोगों का क्या है ना कि जब हम लोग 20 मई तक पहुँच जाते हैं, 19 पे ही रहते हैं, अभी तक उनके पास 20 मई नहीं होता है। जब हम लोग न्यू ईयर मना लेते हैं, सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल देते हैं, तो शाम को वो हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, ऐसा होता है अगले दिन। है ना, मैंने ठीक कहा ना। चलो जी, तो यहाँ पर नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करेंगे अंजू के लिए, अभी जोशन, विहाव हंसवी, इमरान, छाया लक्ष्मण, बेटी वरुणा, दीपा और आशा के लिए गाना होगा, अभियांजु खौपों में सभी फैमिली के लिए, संध्या राम सिंह, अमन मोहन का हम वेलकम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सोनम?

नमस्ते जी, आप बताओ आप कैसे हो? सब ठीक, सब बढ़िया? माला भौरो आप बताए जी, नमस्कार जी। संध्या लक्ष्मुदु कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग सो मच लव। विद्या नायको को हम नमस्कार कहेंगे और आँखों आँखों में हम तुम, अब आँखों आँखों में हम तुम, चलो कोई बात नहीं। मैं नोट कर रही हूँ, नोट करने में भी टाइम लगता है ना, तो गाना ढूंढने में भी टाइम लगेगा। अमृता को स्वागत, क्वीन। वी हैव शवि एंड वी आल्सो हैव शवि। कहते हैं कि आपके तो व्यूअर्स बढ़ने लगे हैं, 11.4 हो गया है, थैंक यू। इसको और बढ़ाने चाहिए, है ना? और भी लोग आएंगे, प्रोग्राम एंजॉय करेंगे, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। कल्याणी हरी जी कैसी हैं आप? गाना हो जाए आपके लिए।

एक्चुअली आप भी मत भूल जाएगा कि इस समय आप विदिता के साथ सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन सुहाना सफर। थोड़ी देर में हम बढ़ने जा रहे हैं समाचारों की ओर। अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे अमन मोहन के लिए, मनीता श्यामा मोहराली और साथ में शिमला बिजादर के लिए, और अंश और उनकी दादी जो साथ दे रहे हमारे।

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुहाना सफर। चलिए बढ़ते हैं समाचारों की ओर।
2: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
1: घड़ी मिला दीजिए, इस समय दिन की एक बजा है।

0: टाइम चेक 1 PM देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना आपको नमस्कार
1: नमस्कार परी सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार 2022 में 48 मिलियन रुपए लागत के लिक्विफाइड सिंथेटिक ड्रग्स जब्त किए जाने के मामले में गिरफ्तार संदिग्ध महिला का कहना है कि उसे जाल में फंसाया गया है इस महिला का नाम मारिया पेरेसुल्किना है जो यूक्रेन से मॉरिशस पहुंची थी उसने दावा किया कि जॉन माइक मोटेंगल नामक व्यक्ति ने उसे बहलाकर जाल में फंसाया सोमवार को अदालत में दिए गए बयान में उसने इन बातों का खुलासा किया उसने यह भी बताया कि उसकी मुलाकात मोटेंगल से बेल्जियम में हुई जहां वो अपने देश से भागकर पनाह लेने गई हुई थी जॉन माइक मोटेंगल ने उसे वाइन और जिन की बोतल का दावा करके उसे लिक्विफाइड ड्रग्स थमाया था पर्यावरण पुलिस द्वारा देश के कोने कोने में अभियान तेज किए जा रहे हैं अवैध तरीके से पर्यावरण में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ती जा रही है गुडलैंड्स में कचरे के ढेर में एक रिसीट से गुनहगार का पता लगाया जा सका अन्य जगहों में भी लोगों को पकड़ा गया और 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ साथ उन्हें स्थल की सफाई करने का भी आदेश दिया गया है विदेशी खबरों में थाईलैंड में वीजा के बगैर छुट्टियां मनाने की अवधि कम कर दी गई है यूनाइटेड किंगडम उन दर्जनों देशों में शामिल हैं जिनके निवासियों को 30 दिनों से ज्यादा समय के लिए थाईलैंड में छुट्टियां बिताने के वास्ते वीजा की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए अर्जी देनी होगी जुलाई 2024 से दुनिया के 93 देशों के पर्यटक ज्यादा से ज्यादा 60 दिनों की अवधि के लिए बिना वीजा ही वहां जा पा रहे थे लेकिन कुछ ही दिनों में ये अवधि कम कर दी जाएगी इसका कारण सुरक्षा और वीजा स्कीम को लेकर मतभेद बताया जा रहा है और लिबनान में हुए इसराइली हवाई हमलों में कम से कम 19 लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोग घायल हुए हैं मृतकों में 3 बच्चे शामिल हैं सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं जो एक ही इमारत में रहते थे ईरान के प्रमुख के मारे जाने के बाद जवाबी हमलों के तौर पर ये मिसाइल दागे जा रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच तय युद्ध विराम के बावजूद भी हिजबुल्ला और इसराइल के बीच हमले जारी रखे जा रहे हैं ये थी अब तक की खबरें थोड़ी देर में शोक समाचार

0: शोक समाचार सुनिए। रुसुफ लेबर्ग में रुसुफ लेबर्ग में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड की मिसिज बीबी मरियम अपिया मिसिज बीबी मरियम अपिया जो भतू के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज सुपहर 3 बजे उनके बेटे राजकुमार बतू के मकान रुसुफ्लेयर मेबर्ग से उठाकर दफनाने के लिए रिविया दे क्रेओल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 8:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. You're listening to RM3 Radio. Man.

0: अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म ये नहीं पता। शुरू जब हो जाती तो हो जाती है, लेकिन ख़त्म कहाँ होगी ये भी हमें नहीं पता होता। तो हमारे जो दोस्त हैं ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड थैंक यू सो मच रेडियो मनोरंजन पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, एंड स्पेशली जो लोग हमें टिकटॉक पे देख रहे हैं उनको।
1: सफर
0: जी हाँ, उनको हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के कोने कोने से लोग हमारे इस टिकटॉक को फॉलो करते हैं और यहाँ पर उनको अपनी पसंद का गाना भी सुनने को मिलता है, हमारी कुछ बातें भी होती हैं, कुछ वो सुनाते हैं दिल के हाल, कुछ हम अपना भी सुना लेते हैं। तो अभी हमें 14.9 के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे टिकटॉक लाइव के साथ, थैंक यू सो मच। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को हमारे पुराने गाने पसंद आते हैं और हमारा लाइव जैसे ही चलता है लोग यहाँ पर जुड़ जाते हैं, हर कोई अपने अपने दिल की बात बताने के लिए, कुछ अपने पसंद के गाने सुनने के लिए यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और वैसे भी जहाँ रेडियो के साथ भी हमारे बहुत सारे लोग हैं जो हमें सुनते हैं इस टाइम पे, ख़ास तौर पे हमारे जो लेडीज़ होती हैं इस टाइम पे, उनको तो रिलैक्स करने का टाइम भी नहीं मिलता, बस ये गाने ही हैं जो इनके दिल को बस थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ी एनर्जी देती हैं काम करने के लिए, और जब वो थक के बैठ जाती हैं तो थोड़ा सा आराम।
2: You're listening RM Free Radio Radio Radio.
0: चलिए चलते चलते ये गाना हम खतू बामंगर के लिए डेडिकेट करेंगे। दीप्ति गंदौरी, विशाल शिवम, रेशमा राम किशुन, वर्षा फिया, राजेश और माया, नालिनी गुलाम, रेणुकार मुस्ताक खान के नाम।

चलिए गाना अनीता जी के लिए जो फ्लिक ऑफ लाक से साथ दे रही हैं, कहती हैं अभी बहुत बारिश है उनके यहाँ, बारिश का मजा लीजिए और गीतों का भी। साथ में है शीतल जी, हाँ, पूजा, बबीता, अनसुया, मॉरिशस में काम करने वाले सभी हमारे लिसनर्स को बोंकुआश कहती हैं, नीरू रामसन, प्रेमिला रखी राम और शारदा के लिए डेडिकेट करते हैं ये नेक्स्ट गाना, और साथ में इंदिरा राम, रेखा जी, शांता और योहान और पूरी फैमिली के लिए और रोहन के लिए भी। और चलिए लेफ्ट राइट करते हुए तरुण हम अगला गाना सुन ही लेते हैं।

0: 20 मिनट और आज वेडनेसडे 20 मई भी है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट गाना होगा प्रतिमा के लिए और उनके पति के लिए, गेट वेल सून। दीपक बिहारी वेलकम, दानी जगरू गुडलैंड से, कृष्णेल रेड्डी और साथ में है प्री, निशा भवानी, इन सब का वेलकम है। निशा ने कहा गुड मॉर्निंग, हम कहेंगे गुड आफ्टरनून। अनीश हमारे साथ हैं, हेलो जी कैसे हो आप। और यहाँ पर सुमन बल्दचीनो, हेलो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम, स्वागत है आपका। मनीता जी आपने गाने की फरमाइश की है, दर्पण फिल्म का गाना, कौन सा गाना है ये, मुझे प्यार करने का हक, प्यार करने का हक, अरे आपको तो प्यार करने का हक है, क्यों किसने कहा चलिए मैंने नोट कर लिया, मुझे प्यार करने का हक, मैं गाना भी ढूंढती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पर हमारे साथ श्वेता सुकराज हैं और साथ में यहाँ पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं एक और हमारे प्यारे दोस्त शीतल शर्मा, एक शीतल थी और यहाँ पर एक है शीतल शर्मा, ब्यूटिफुल। ओके थैंक यू सो मच, वॉचिंग फ्रॉम फिजी आइलैंड। ओ माई गॉड, फिजी आइलैंड से एक बार फिर हमारे दोस्त आए हैं, उनका स्वागत है। दिस इज़ रेडियो मनोरंजन मॉरिशस का ये रेडियो चैनल है जहाँ पर इस समय यानी कि 12 से लेकर 2 बजे तक हम पुराने गाने चलाते हैं। शीतल शर्मा फील होम एंड आप चाहें तो आप भी गाने की फरमाइश कर सकते हैं, ये बात अलग है कि आपने जो गाना मांगा वो कहीं गाना नया ना हो। ओके यहाँ पर तरुण कहते हैं हाई फ्रॉम अमेरिकानो, अभी मैं भेजती हूँ आपको। चलो जी यहाँ पर गाना होगा आपके लिए प्रवीणा दुर्गा एंड दीपक बिहारी, आपने कहा ओके नमस्ते दीपक जी, नमस्ते। अभी 69 मैसेजेस है ना, तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं। वैदेही वेलकम है आपका, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे जो मैसेज हैं वो मैं पढ़ लूँ। सुमन जी थैंक यू सो मच, आपको आप खुश हैं हमारे, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कविता हलकोरी नमस्कार, स्वागत आपका और स्वागत करते हैं लीना का, हेलो लीना आपका भी वेलकम करते हैं हम। एंड साथ में यहाँ पर रंभा जी एक बार फिर जुड़ी हुई हमारे साथ, रांची कहती हैं कि नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माय डॉटर, शी इज़ डूइंग एग्जाम्स, ओके यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उनके लिए होगा ये गाना।
1: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर।
1: घर पर बैठे हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको मैं यही बोलूँगी कि 5-10 मिनट अपने लिए निकाल लिया करो, बैठ लिया करो। पता नहीं लंच किया होगा या नहीं किया होगा, या कहेंगे 4 बजे काम ख़त्म कर लेंगे ना घर का, फिर उसके बाद कुछ खाएंगे पियेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। अभिषेक और खेबल, आप सबका हम वेलकम करते हैं। SVMM आपका भी वेलकम करती हूँ मैं। पूरा नाम तो नहीं लिखते लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश कर लेते हैं। शिवानी हेलो हाय, मंजुला कवली सर नमस्कार एंड लो हमारे साथ हैं। कहते हैं नेक्स्ट गाना फॉर सुनागी फैमिली ऑफ पिचिपा के मोता ब्लाउश। तो चलिए नेक्स्ट गाना उनके नाम हम डेडिकेट करते हैं, और साथ ही साथ ये गाना जो होगा मंजुला कवली सर के लिए भी, उनके पति संदीप के नाम। और नेक्स्ट गाना होगा, जी बिल्कुल आपने सही पहचाना तरुण, ये उन्हीं का आवाज़ में गाना है। नासिम हमारे साथ हैं, सलाम कैसे हैं आप। और हमारे साथ हैं प्राकी, हाय प्राकी, आई एम फाइन, हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी। चलो जी कम से कम यहाँ पे तो देख लिया, गुड टू सी यू एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र, बी माई फैमिली एंड बी माई हम सफ़र, क्योंकि यहाँ पर हर कोई हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हम सफ़र बन जाते हैं, आपका वेलकम है। चलिए जी किसी दिन आप बुला लो हमको, हमें भी डांस करना है। आजकल बहुत डांस करने का मन कर रहा है। कहते हैं बहुत सीरियस लग रहे हो, अरे नहीं, जब गाने ढूंढने की बारी आती है ना तो मैं सीरियस हो ही जाती हूँ, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं गाने ढूंढने के लिए। चलो यहाँ पर श्यामा महराली हमारे साथ हैं, कहते हैं आओ ना लगी बुझा दो ना, ऐ फ्राई ब्रिगेड मंगवा दे दो, ठीक है मैं गाना ढूंढती। रोहित हमारे साथ सुरीनाम से हैं, हाय रोहित, हाय सबरीना, नमस्कार रानी जी, कैसी हैं आप। कहते हैं गाना राधा रानी पोर्टुगीज़ के लिए, टू माय लव कविटो, कहते हैं हाँ विद्या के लिए गाना। चलो यहाँ पर इन्होंने लिखा है बोंजियोर्नो, इसका मतलब है बोंजू होता है ना, ठीक है मैं समझ गई। अभी मिस्टर युक्साली जी भी हमारे साथ हैं, हेलो हाय वेलकम मिस्टर युक्साली जी एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र, आई होप यू आर लविंग द सॉन्ग्स। एंड ऑफ कोर्स वी हैव द नेक्स्ट सॉन्ग डेडिकेटिंग स्पेशली टू नासीम। वैसे आपने जो गाना मांगा है उससे दिल तो टूट जाएगा, लेकिन मैं उसको थोड़ी देर में चलाऊंगी, फिलहाल अभी के लिए ये वाला गाना।
2: RM3 Radio.

0: बातें हो रही थी कि हमें डांस करना है और उन्होंने कहा ऐसे रोमांटिक गानों से स्लो डांस ही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो हमने सोचा कि मूड बदल दें।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: यह है प्रोग्राम सुहाना सफर और यहाँ पर चलिए देखते हैं कौन हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं तीश, प्रिया, सपना राम तोहर, मीनाक्षी, माधवी, हीरा, सीला, सिसाहाय और मनोज जी कहते हैं क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है। हम तो हमेशा खुश होते हैं भाई, और हमेशा खुश ही होना चाहिए इंसान को, है ना। चलिए तो यहाँ पर रेश का हम स्वागत करते हैं। नमस्ते, आप कैसी हैं? साथ में यहाँ पर श्यामा महिराली भी हैं, कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं आपकी बात को पकड़ी हूँ, नो वरी।

गिटार, माया जी गिटार बजाना चाहिए, बस ये बात अलग है कि मैं गिटार नहीं बजा रही थी, मैं खुजा रही थी। हाँ, और दिन, मुझे दिन तारे नज़र आते हैं, हाँ ये दूसरे तरह के तारे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, सच में दिन में चाँद नज़र आता है। आप लोग कभी देखिएगा, आपको चाँद ज़रूर नज़र आएगा। एंड सब कहते हैं ना कि चाँद तो रात में आता है, नहीं नहीं, आजकल चाँद का मूड बदल गया, आज वो दिन में भी आता है, और ऐसे आता है कि सामने से देखता है कि सूरज टाइम पे उग रहा है कि नहीं, फिर शिकायत करने जाता है कि देखो भाई सूरज आज टाइम पे उगा नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट गाना जो होगा आप सभी के नाम डेडिकेट करेंगे। खतौना किरण, कैसे हैं आप, वेलकम और खुश रहिए जितने भी लोग साथ में हैं। वी हैव अराउंड 18.4K ऑफ लिसनर्स जो हमारे साथ टिकटॉक पे जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच मंजुला, आपके लिए गाना होगा, और वशिष्ठ कावली सर के लिए जो कि आपके निफ्यू हैं उनके नाम गाना।

मारेंगे या मर जाएंगे, चले कोई बात नहीं। यहाँ पर गाना ही इतना ज़बरदस्त था, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं सब के सब डांस करने लगे और सबका एकदम मूड ठीक हो गया। चले तो यहाँ पर हम कोशिश, जैसे मैंने कहा ना, हमारी कोशिश यही रहती है हमारे जो लिसनर्स हैं वो खुश रहें, और आपको खुश करने के लिए हमारे पास सारे राज हैं। जी हाँ, सारे के सारे राज हैं। चलिए जी, यहाँ देखते हैं कि कौन सा गाना होगा आपके लिए। तो नेक्स्ट गाना जो होगा बहुत प्यार से लेकर आए हैं आपके लिए, एंड ये गाना जो है डेडिकेट करते हैं हम आप सभी लिसनर्स के लिए। वैसे तो यहाँ पर नासिम अभी भी डांस कर रही हैं, और मनीता कहती हैं कि अभी चांद भी अब वो करने लगा। हाँ बिल्कुल, चांद भी अब इधर उधर करने लगा है। चले जी, शुरुआत बहुत अच्छी हो गई है, एंड सारे के सारे दोस्त हमारे साथ हैं। वी हैव ऑलरेडी अराइव 19.2K, एंड इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नासिम थैंक यू सो मच, आप जुड़ी रही। माया जी आपको भी बहुत बहुत प्यार हमारी तरफ से, एंड बहुत कम लोग यहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं हमारे साथ, लेकिन हमें ज्वाइन करते हैं, हमें देखते हैं, हमारे प्रोग्राम को इन्जॉय करते हैं। चलो इसी बात पे जो अगला गाना होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, और फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल।

0: किसका निशान।
1: भाई मुझे नहीं पता निगाहें क्या ढूंढ रही है, लेकिन मेरी निगाहें ढूंढ रही है रामिनी को, जो कि है फ्रॉम इटली, आरती, और साथ में है संजय बुधवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंदिरा मतो सिंह आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू। और यहाँ पर सुबी का आज बर्थडे है, तो उनको हमारी ओर से हैप्पी बर्थडे, उनके पति धीरज, उनके बेटे दिविज की तरफ से बहुत सारा प्यार है और उनको हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए इसी के साथ अब हमारे जाने का भी टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगला गाना आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशली सुबी आपके नाम। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।

0: सिखाना सफर, सिखाना सफर। देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं पूजा। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मधुमक्खियां प्रकृति और कृषि दोनों में एक अहम भूमिका निभाती हैं। आज 20 मई को मनाए जा रहे विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कृषि उद्योग मंत्रालय ने परागण करने वाली जीवों की सुरक्षा पर जोर दिया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसमें मधुमक्खी पालक, कृषि तकनीशियन और स्थानीय उत्पादक शामिल रहे। शहद उत्पादन, जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा के बीच मधुमक्खियों की भूमिका मॉरीशस के लिए आज भी बहुत रणनीतिक बनी हुई है। देश के परिवर्तन के साथ कदम मिलाने के लिए ज्ञान पर ध्यान देना, ये उद्देश्य है नेशनल हायर एजुकेशन स्ट्रेटेजी 2025-2035 का, जिसकी लॉन्चिंग आज बालाक्लावा के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में की गई। जहां ये रणनीति 5 प्रमुख पहलुओं पर आधारित है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता से लेकर शोध और नवाचार, जीवन भर सीखने, साथ ही वैज्ञानिक कूटनीति और डिजिटलाइजेशन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है। मॉरीशस में 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 9,92,500 लोग हैं। इनमें से 5,87,200 लोग आर्थिक रूप से सक्रिय है, यानी श्रम बल भागीदारी दर 59.2% है। देश में 33,500 बेरोजगार दर्ज किए गए हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक है। 19,400 महिलाएं और 14,100 पुरुष 16 से 24 वर्ष के युवा अकेले 11,700 बेरोजगारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि सेकेंडरी सेक्टर, खासकर उद्योग और निर्माण क्षेत्र के कर्मचारी सबसे अधिक काम करते हैं, औसतन 41.3 घंटे प्रति सप्ताह। विदेश में लबनान में हुए इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 19 लोगों की जानें गई हैं, कई लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। और ईरान के प्रमुख के मारे जाने के बाद जवाबी हमलों के तौर पर ये मिसाइल दागे जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच तय युद्ध विराम के बावजूद भी हेजबुला और इसराइल के बीच हमले जारी है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार।
2: रुसुफ्लर मेबग में 81 साल की 81 years old बीबी मरियम अपिया, जिन्हें लोग भत्तू नाम से ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज सुपहर के तीन बजे इनके बेटे राजकुमार भत्तू के मकान रुसुफ्लर मेबग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए

0: Rivière du Creole, Kakabristan di Jaya Jaya. Commission today at 3 p.m. शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है.
1: NBC Radio.
2: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से. तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे.
3: नमस्ते. धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में आप सब लोग के स्वागत बा. हमें अरविंद साथ में हमने के तकनीकी सहयोगी संजू तुकुगी हवन और कार्यक्रम में भी तनकुन हमने के सहयोगी जय गणेश दाव सिंह के भी सुनब जा. आज जब कौन सी तैयार करके अनले हुआ तक कार्यक्रम जन्मे करे ई महात्मा गांधी संस्थान के भोजपुरी लोक संस्कृति विभाग और एमबीसी के मिला जुला सहयोग से तैयार करल जात बा. और ई एकर उद्देश्य हक की मॉरिशस में भोजपुरी के प्रचार प्रसार खातिर को योगदान दे के और भोजपुरी में जो निधि है जो अमूल निधि है ओकरा निकाले के और ओकरा तो लोग के सामने आने के ई मूल्यवान निधि ई धरोहर में चलेला इस सरोवर में आवेला त ई कार्यक्रम हमनी लेके आ लई जा. त अब आज हमनी के कार्यक्रम के शुरुआत करब जागो गीत संगे और उस एकर बाद एगो एक दुगो भोजपुरी कविता भी सुनब जा.
1: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio.
1: अभी हम बोलते तो लोग के एगो कविता के बारे में चर्चा करब जा। अभी देखा तो हम फोन बजल तो संजू भी हमके याद दिलैलक कि हमी के जो लड़का लोग होन जा वो लोग के भी चाहेला भोजपुरी बोले के सिखाए की। तो इसने बोल देवे तो लोग कहा मौका मिलेला नहीं मिलेला। तो अभी हम के ई मैसेज आवत बा कि भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन देने से एगो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के संदर्भ में भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन जो कला और संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में काम करेला वह लोग एगो भोजपुरी कहानी सुनावे के प्रतियोगिता आयोजित करत बन जा। यानी भोजपुरी एगो लोक कथा सुनाई के वो कहानी सुनाई के ओकर विषय है परंपरा संस्कृति असली जिंदगी के अनुभव चाहे कल्पना से जुड़ल हुई कहानी जो भी। तो एक विषय जैसे है परंपरा संस्कृति असली जिंदगी के अनुभव चाहे कल्पना से जुड़ल हुई कहानी। तो ई कहानी के एगो ऑडियो वर्शन में चाहना विदा करेगी। आज तो मोबाइल सबके पास बा तो 5 मिनट के एगो कहानी ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट एगो कहानी लेकवा सुनाए ओकरा रिकॉर्ड करके आप सगजा भाग ले। ई सब उम्र के लड़का लोग के है जो बैठका जालन से और या फिर शनिवार के स्कूल में भोजपुरी पढ़त हो जा। तो ई सब उम्र के लड़का लोग के है और एक में जोन रही कैसे बोले के सफाई क्लैरिटी रचनात्मकता ओकर में कितना क्रिएटिविटी बा भाषा के सही प्रयोग और प्रस्तुति। तो ई एगो भोजपुरी कहानी सुनावे के प्रतियोगिता है। एकर अलावा एगो भोजपुरी कविता पाठ प्रतियोगिता एकर विषय है मातृभाषा के महत्व द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग। ऑडियो चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग 3 मिनट में करके आप सब बजा भेजे मोबाइल से जैसे भी ओकर ऑडियो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करके मातृभाषा के महत्व विषय है और जैसे वही नियम बाजुन अभी पहले बोलनी जा। तो एक में जो देखब जा हाव भाव ओकर एक्सप्रेशन जिसे बोले जाओ कर उच्चारण साथ में भावना और विषय से जुड़ाव। तो ई जो बा रिकॉर्ड करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वीडियो चाहे ऑडियो सब बजा भेजे और एक प्रतिभागी के पूरा नाम उम्र स्कूल के नाम और संपर्क के जानकारी यानी ओकर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें दे के। तो ई महीना के अंत ले तो लोग लगे समय बा जून महीना के अंत ले और ईमेल के पता है bsumauritius@yahoo.com। ईमेल के पता है bsumauritius@yahoo.com। आप लोग ई पर सक बजा अपन जो कहानी बा या फिर कविता बा वो भेजे या फिर आप लोग भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के सब बजा संपर्क करे और वेकर में जो पहल का इनाम बा पहल का इनाम वो है 5,000 रुपया और मेडल। दूसर का इनाम 3,000 रुपया और मेडल। तीसर का पुरस्कार बा 2,000 रुपया और गो मेडल और पांच गो सांत्वना पुरस्कार बा 5 गो कंसोलेशन प्राइज ओकर खातिर देवल जाए 1,000 और मेडल और सब प्रतिभागी के एगो भागीदारी के प्रमाण पत्र देवल जाए। तो ई भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन दिन से आयोजित करल जात बा हमने के लड़का लोग खातिर भोजपुरी कहानी सुनावे के प्रतियोगिता भोजपुरी कविता पाठ प्रतियोगिता। एकर पर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग सगबजा भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन से संपर्क करे या फिर महात्मा गांधी संस्थान के भोजपुरी लोक संस्कृति विभाग में भी आपके जानकारी मिली। तो ई रहल ई प्रतियोगिता भोजपुरी से भोजपुरी पर आधारित भोजपुरी में आधारित जो आप अपन लड़का लोग के सुविधा प्रोत्साहित करे। ई माध्यम लड़का लोग के भोजपुरी बोले

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: जब दादे मोरे ऐलन ई धरोहर के अपन संगे अनलन. वैसे याद नहीं भाई तुम लोग एक बारे में तुम लोग बोल रहे नहीं कि का संजुंग याद दिलाए विनय रामदू एक गीत गेले हुए नहीं. हाँ तो रामदू भाई महात्मा गांधी संस्थान में जब पढ़ाई करत हलन अपन डिप्लोमा संगीत में वोकल हिंदुस्तानी में, फिर बाद में अपन बीए भी करलन, अपन पीजीसी भी करलन, अभी अध्यापक हुवन स्कूल में, सरकारी स्कूल में. वैसे बधाई चाह दे कि बहुत मेहनत कर ले हुन जाए लोग हैजा पर पहुंचे के. तो हमने के छात्र रहलन एगो हमने के मौजूद रहल फोल्कलो पर भोजपुरी पर, भोजपुरी सीखले रहलन. तो भोजपुरी उतना बच्चा ही नहीं जानत रहल. तो जब ई गीत ई जो गीत अभी सुन ला ई गीत फिर से गाय की जब हमने सोच या फिर से एक बनाए के त वैसे बता दिया जाए आचार्य शुक्लाल ई गीत लिखले हुवन उनका नमन कर लिया जा. तो ई गीत के जब फिर से गायक के हमें कोई कोई खोजा था नहीं जा तो हमी के दिमाग में रामदू भाई आला. तो यशी भाई हमी हमी के जा परी हवन तो यशी से बोलनी रामदू से पूछ लिए. तो कैसे पूछता तब रामदू भाई बोलता उतना भोजपुरी बतियाए नहीं जानीला, भोजपुरी गई बहुत कमती गई नहीं जा. मनी भैयो तराका नहीं कर कोनो चिंता नहीं बा. तो हमी के यशी भाई जो ऊ तनकुन गावेलन जन्मे करेला ऊ महात्मा गांधी संस्थान में किस क्या बोला जाओ करा संजू लोग लोग बोला जा कीबोर्ड प्लेयर. हाँ तो ऊ संगीत बनाओ एलन कीबोर्ड प्लेयर हुआ उनकर उनकर बैंड बा मॉडल साउंड. तो ऊ गीतवा ऊ गा के उकरा

0: पलक सुन लिए तब गई है। कहे कि जब गीत प्रतियोगिता में गर हल तो गीत के संगीत बनेले रहल निके भाई यशी और उनकर मॉडर्न साउंड, तो कब रामदू भाई सुनलक उ गीत, कब गईलक तनके बोले अरविंद भाई रोवा खड़ा हो गल, रोवे रोवे हो गल, ई गीत में उतना भाव रहल। ये सब देखबा भोजपुरी शब्द में, भोजपुरी कहानी में कितना थला दमदार है। अभी संजो में से पूछा था कि है जो प्रतियोगिता बा कविता कहानी के उकर में सेकंड भाग ले, लैका लैका नहीं हो भैया, लैका लोग की है थला, जो लोग बैठका में जालन जा पर है वो लोग की है, तो लोग के मौका चाहे देखे ठीक। तो एक अलावा ये भी तो लोग के बोल देला जा कि अभी भोजपुरी के लेके जो काम हुआ, तो अभी हाल ही में एगो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा इंडेंचर रूट प्रोजेक्ट के लेके, या प्रवासी खाद्य से आयोजित करल गया रहा, उकर में देश विदेश के ढेर कोई आ रहा जा, और उधर ऑनलाइन भी काफी पेपर प्रस्तुत करल गल, और भोजपुरी के लेके भी एकर में काफी चर्चा हो रहा। अब हमी के किरण जानकी सहयोगी जन हुआ, उनकर जो कार्यक्रम आवेला वो कार्यक्रम के एगो भाग दालपुरी पर एगो भाग देखेले रहन, काफी लोग प्रभावित हो जा विरासत कार्यक्रम जो चलेला। तो जितना काम हुआ था भोजपुरी के लेके, इस सब के प्रोत्साहित इस सब के प्रोत्साहन हमी दे ले जा। तो अब कहानी कैसे सुनाए के, कौन ढंग के सुनाए के, तो संजू भाई हम लगे बा ना कहानी रिकॉर्ड जितना रिकॉर्ड कर ले जा, तो वो कहानी चुने ले जा। एक तरह से तो लोग के अनुमान हो कि कैसन कहानी कैसे झाला सुनाए के, तब ये प्रतियोगिता में धल अच्छा लगी, चले वो कहानियां सुने ले जा।
1: RM3 Radio.

0: सनी और मनी। एगो हंस रहल, ओकर दूगो बच्चा रहल, एगो करिया और एगो उजर। तीनों एगो तालाब किनारे रहत रलन सन। करियक्का बच्चा के नाम रहल सनी, उजरका के नाम रहल मनी। मनी नीमन रहल, वो अपन माँ के बात सुने। सनी झीट रहल, वो अपन माँ के बात नहीं सुने। दूर तालाब में कमल के सुंदर सुंदर फूल खिलल रहल, कोनो लाल तो कोनो नीला। तीनों हंस उ कमल के देख के बहुत खुशी होत रहलन सा। मनी और सनी कमल के फूल लेवे चाहत रहलन सा। एक दिन मनी बोला सनी से,
1: ए सनी, हम ललका कमल ले।
0: तब सनी जवाब दिलक,
2: नीलका कमल हमार है।
0: दोनों कमल तुरे जालन सा। माँ उलो के देख के रोके चाहेला। माँ बोलक,
3: हे लड़का लोग, उ कमल के भीरी नहीं जाया सा, हुआ जान के खतरा बा।
0: दोनों लड़का माँ के बात सुन ले लन सा। उ लोग हुआ नहीं गए लन सा। बाकी सनी के मन नहीं मनलक। दूसर दिन सनी लुकैते लुकैते कमल के भीर गल। एगो बहेलिया तो इहीं

0: शक में रहल।
1: ऊ छत से सनी के गदन पकड़ लेल। सनी त लगल छटपटाई। बैलिया खुशी के मारे लगल हसे। सनी के जान छुटल जात रहल। बनी सनी के आवाज सुनके माँ के बुलाई लग। दूनो कमल के भीरी हारी से गैलन सा। ऊ लोग मिलके अपन चोंच से बहेलिया के लगलन से काटे। बहेलिया के लगल घाव ऊ लगल चिलाई। बहेलिया सनी के गर्दन छोड़ देलक। ऊ लगल भागे। तीनों हंस खुशी खुशी अपन घर लौट जालन सा। ई घटना के बाद सनी भी अपन माँ के बात सुने लगल। इही खातिर बोलल जाला, बड़ा लोग के बात हमेशा चाहे सुने के।
2: RM3 Radio. तेई तो कहानी रहल। अब जरूरी नहीं बाकी आप कहानी में तन कुंधल कर संगीत म्यूजिक ई सब रही तो अच्छा रही, नहीं रही तो कोनो बात नहीं बा। उद्देश्य ई बा कि लकवा के एगो कहानी सुनाए के मौका मिली भोजपुरी में, ठीक। और ओकर जो दूसरका रहल जिसे बोल कविता, कविता भी संग बजा रिकॉर्ड करके भेजे। और ओकर विषय जो रहल मातृ भाषा के महत्व, तो अभी संजोग के बोलत हुआ एक दूगो कविता हम लगे बाजा परी जो डॉक्टर अंजलि चिंतामणि रिकॉर्ड कर ले हुआ। तो हमी के मॉरिशस के प्रख्यात कवि लोग की तो चला सुन ले जा। और अंजलि की बधाई भी दो अब जा कहे कि अभी आजकल वो हिंदी स्पीकिंग यूनियन देने से एक के बाद एक गतिविधि के आयोजन करत बा। अभी स्कूल के लड़का लोग के कहानी पठन कविता पठन प्रतियोगिता चलत बा। तो देखा मॉरिशस में भोजपुरी हिंदी संगे संगे हाथों में हाथ ऐसे आगे बढ़त हो जा। तो अंजलि सुनाओ था।
3: RM3 Radio। कटनी। ऊख गहरैले रामा फूल कुम्हलैले। आइल कटनी के आई गईले दिनवा हो। निहुरी निहुरी काट गन्ना के छड़िया। भोरवा के लालिमा में टहके इंजोरिया। सैया के माथे चमके बूंद रे पसनवा। काटेला जे उखवा त झूमे रे गगनवा। गोरिया के पायल बाजे बाजे हाथ कंगना। इखवा हिलोर मारे नाचे मोरा मनवा। हाली हाली काट भैया खेत मोरा धनवा। कटनी के धन से चुनरी पहनैब के चुलिया। हो पिया झुमका गढ़ैब के कंगना कढ़ैब। चांदी से गरहबे रानी तोरी रे सेजरिया। सोना से गरहबे रानी तोरी रे चुनरिया। अटिया जे बांधनी त भारी भारी अटिया। मेढ़वा से उतरा न दुखे मोरी बहिया। हाली हाली काटा भैया सांझ गहरैले। खेत पिया रहिले भैया फूल कुम्हलैले। ढेड़िया लगैली।

0: राजा हथवा लगावा हो, अटिया के भैया मोरे मथवा चढ़ावा। चला भैया चली आइल चले के हो बरिया।
1: आरएम स्वीट रेडियो रेडियो रेडियो
2: रथ यात्रा। सूर्यदेव सिबोरत। माँ जात बानी तीरथ यात्रा पर, परी तालाब पर नहीं, पहाड़ पर्वत के कोनो मंदिर के नहीं, कोनो पुण्य भूमि के भी नहीं। जात बानी उ जगह के धूल के तिलक लगावे, पहला गिरमिटिया के पहला चरण जहां परल मोरिस के धरती पर। दर्शन करे जात बानी पत्थर के ऊ पुराना होवल चिमनी के, जोन गन्ना के खेत के बीचों बीच अकेले परलबा। ओकर हर पत्थर के नीचे हमनी के बाप दादा के उज्जर हड्डी टुकुर टुकुर झांकत बा हमनी के सबके आत्मा के। हवा के हर झोंका से जिनकर से निकल रहल बा आह आह आह। कुल कामानी सूर्यदेव सिबोरत। अब सपना हो गयल उ फुलवन उ तितलियन उ कॉमिक के जादू भरल चरित्र उ गारी खटोला जोन कब्बो ने सकल जात बने। अब सपना हो गयल उ जोन पुस्तकन में कापियन में हम अपन छोटा छोटा पतरा पतरा कोमल कोमल उंगरी से चिपकावत रहली सजावत रहली। जोन जय जया रशीद रशीदा क्लोद क्लोदैत आक्वेत आकोद औरी हम एक दूसर संगे अपने में बांटत रहली जा, छिपावत रहली जा, चुरावत रहली जा और लौटावत रहली जा। अब त सपना हो गयल उ फुलवन उ तितलियन उ कॉमिक के जादू भरल चरित्र उ गारी खटोला जोन कब्बो ने सकल जात बने। अब त हमर हर एगो उंगरी नश्तर हो गयल बाएगो, खंजर हो गयल बाएगो, कटार हो गयल बाएगो, छुरा हो गयल बाएगो, चाकू हो गयल बाएगो, जौन पर क्लोद क्लोदैत के आक्वेद आकोद के कटल काटल औरी छाटल छाटल मूरी के कुल कामानी।

0: कार्यक्रम के आगे बढ़ाव थे जा संजू बोला थुन चाय पिए के समय हो गलबा तो हमी के सहयोगी जय गणेश डाव सिंह चापी के आवत हुआ कहे कि एगो गीत दूगो गीत लेके आवत हुआ दूगो सोहर के बारे में जानकारी दियन तो सुना और उ कार्यक्रम के समाप्ति कर संगे करी लजा फिर मिलब जा को नवा कार्यक्रम संगे तब ले बहुत बहुत धन्यवाद संजू के भी बहुत धन्यवाद धरोहर के सरोवर MBC रेडियो पर सुनते रहिए नमस्ते
1: RM3 रेडियो
2: नमस्ते धरोहर के सरोवर नामक हमनी के प्रोग्राम में टोहलोक के हार्दिक अभिवादन बाटे आज दुगो ललना गीत लेके आल हैं जोन अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के मॉरिशन हेरिटेज वॉल्यूम 1 के सोहर बर्फ सॉन्ग्स फ्रॉम मॉरिशस एंड इंडिया के सीडी से लेनी गायिका हवन सचिरिता गुप्ता और मंगला सलोनी प्रोड्यूस बाय अर्चना कुमार फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ई डॉक्टर अर्चना कुमार और डॉक्टर पवित्रानंद रामुटा MGI के भूतपूर्व अधिकारी के मिलल जुलल सहयोग से एगो प्रोजेक्ट रहल मॉरिशस में सोहर या ललना पुत्र जन्म के मांगलिक अवसर पर गावल जाला यूं तो हर संतान के जन्म के शुभ मानल जाला और लैका के जन्म पर ललना गावल जाला सोहर गीत नारी शक्ति

प्रायः प्रसूति गृह के बाहर बैस के गावे लंजा। आगे ई गीत लेकवा के छठी या बारही पर अर्थात छह या बारहवे दिन ले गावल जात रहल। बरही ले लेकवा प्रसूति गृह में परल रही, उनकर सेवा गाय के हाथ होवत रहल। ओ गृह में एगो बोरसी जोन पेड़ के तीन लकड़ी के जमीन खोद के उनमें अंगोरा जलावल जात रहल। उनकर बाद लेकवा के छठे दिन पर स्नान करल जात रहल। प्रसव काल में ही प्रसूता के खाए खातिर पौष्टिक पदार्थ देवल जात रहल, जैसे कसार जोन मेथी सौंफ तथा चावल के पीस के लड्डू नियन गोल बनाए के खिलावे लंजा। इनकरा से प्रसूता के देह में पीड़ा तथा आदि व्याधि दूर भाग जाए। छठी बरही के प्रथा आजो हमनी के देश में प्रचलित बाटे और ऐसन विशेष अवसर पे सोहर गावल जाला। सोहर गीत नारी शक्ति के अपन रचना है। ई गीतवन में श्रृंगार तथा करुण रस के प्रधानता बाटे। सोहर गीत में पाठक गण प्रायः हर माता के सीता या यशोदा के रूप में देखी और शिशु के राम या कृष्ण के रूप में। एगो माँ खातिर उनकर लयका उनकर सबसे बड़ा निधि है। इनकर प्रमाण सोहर गीत में झलकेला। सोहर गीतवन में व्यापक भाव भरे परलबा। ये गीतवन में पुत्र जन्म संबंधित अनेक प्रकार के भाव से भरल है। प्रस्तुत गीत में गोकुल में बधाई बजता, कारण के कन्हैया के जन्म यशोदा मैया और नंद बाबा के यहाँ होल बाटे। कृष्ण के अवतार से गोकुल निवासी के तब भाग्य उजागर हो गलबा। पलना में घनश्याम जी के यशोदा मैया जुलावत हवन। हैजा के वातावरण रंगीन महर के वर्णन तथा खुशहाली के वर्णन से ई गीत सजीव हो जाला।

दूसर गीत एगो ललना है, केकर अंगनिया में झंझरिया बाझेला, केकर बहु पेट से हवन, केकर घर ललना बाजे के होइबा। तब बुलल गयल की दादा के आंगन पायल बजता, और वो घर आंगन में खुशहाली छाल बाते। समस्त परिवार आवेलन और ललना में शामिल होवेला, पायल के मीठे धुन से सबके मन खिल जाला। ई गीतवन के साथ तो लोग से आज्ञा लेवब, धन्यवाद, नमस्ते।

0: सुनिए मैं आगे पूजा उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मधुमक्खियां प्रकृति और कृषि दोनों में एक अहम भूमिका निभाती हैं। आज 20 मई को मनाए जा रहे विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कृषि उद्योग मंत्रालय ने परागण करने वाली जीवों की सुरक्षा पर जोर दिया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसमें मधुमक्खी पालक, कृषि तकनीशियन और स्थानीय उत्पादक शामिल रहे। शहद उत्पादन, जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा के बीच मधुमक्खियों की भूमिका मॉरिशस के लिए आज भी बेहद रणनीतिक बनी हुई है। अफ्रीका के पास अपने पेंशन फंड और संस्थागत निवेशकों के माध्यम से बिलियन रुपए निवेश किए जाते हैं, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल महाद्वीप के विकास के लिए कैसे किया जाए, साथ ही कर्मचारियों की बचत की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। सातवें अफ्रीका पेंशन फंड एंड रिटायरमेंट समिट में उठाए गए प्रमुख मुद्दों में से ये एक था। बुनियादी ढांचे में निवेश, शासन और सार्वजनिक विश्वास के बीच ये भी उजागर किया गया कि मॉरिशस इलाकाई वित्तीय प्लेटफॉर्म के रूप में किस प्रकार भूमिका निभा सकता है। देश के परिवर्तन के साथ कदम मिलाने के लिए ज्ञान पर ध्यान देना, ये उद्देश्य रहा नेशनल हायर एजुकेशन स्ट्रेटेजी 2025-2035 का, जिसकी लॉन्चिंग आज बालाक्लावा के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में लॉन्च की गई। ये रणनीति 5 प्रमुख पहलुओं पर आधारित है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता से लेकर शोध और नवाचार, साथ ही वैज्ञानिक कूटनीति और डिजिटलाइजेशन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है। विदेश में भारत के कई हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी और बदलते मौसम का असर लगातार देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार।
2: इक्यासी साल की 81 years old बीबी मरियम उपिया जिन्हें लोग भत्तू नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुपहर के तीन बजे इनके बेटे राजकुमार भत्तू के मकान रू सुफ्लेर मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिविया दे क्रोल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टूडे 3 PM। अवेन्यू बुगेविल तमारे में 71 साल के 71 years old श्री लालदेव जगरनोत जिन्हें लोग पाउतने नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे मोसलमो वीओएस कास्कावेल के रहने वाले थे। इनकी अर्थी आज दिन के इनकी अर्थी कल गुरुवार को दिन के 1:30 बजे इनकी बेटी करुणा जगरनोत रंजीब के मकान अवेन्यू बुगेविल ये तमारे से उठाकर गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 1:30 PM। रॉयल रोड बोबासे में 70 साल की 70 years old श्रीमती जसमती बिकारू पैदाशी नाम नरसिंह और जिन्हें लोग बालिका नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी

0: कल सुबह 10 बजे एलियनसन रॉयल रोड बुबासन से उठाकर पीतोंकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 एम। नंबर 14 बी डाउविन एवेन्यू कैचबोन में 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड श्रीमती कामुशालाई रमनजुलू पैदाशी नाम हमसामी और जिन्हें लोग सरोजिनी नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके दामाद पीले मौदे विनेश के मकान नंबर 14 बी डाउविन एवेन्यू कैटरबोन से उठाकर सहमौते मो होश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमारो 11 AM। और एक्स रेलवे रोड पदागुचिया में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड श्री धनेश्वर सामुज जिन्हें लोग पोदीवन नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल सुबह 9:30 बजे इनके मकान एक्स रेलवे रोड अपदागुचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकुंस्ता सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 9:30 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: You're listening to RM3 Radio, Mana.

बुधवार 20 मई आज की तारीख और आज की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। इसका सीधा प्रसारण इस वक्त रेडियो मॉरिशस पर आप सुन पा रहे हैं, साथ ही साथ इसका सीधा प्रसारण एमबीसी के तीसरे चैनल पर आप देख पा रहे हैं और फेसबुक पेज पर भी आज के इस कार्यक्रम को आप फॉलो कर पा रहे हैं। मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं आज के इस कार्यक्रम को लेकर और हर बुधवार की तरह आज

0: आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य पर, कुछ ऐसी ज़रूरतमंद बातों के साथ आज जुड़ेंगे। और आज हमारी जो मेहमान है, दो ऐसी विशेष मेहमान हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं। पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं बलदीप जी आई हैं यूके से, और वे एक पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती हैं, और वे एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, साथ ही साथ वे ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी में बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, साथ ही साथ वे एक सदस्य हैं इंटरनेशनल ब्रीद वर्क फाउंडेशन की। और आज के इस कार्यक्रम में वे यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, उनको आमंत्रित किया गया है अभ्यास, जी हाँ अभ्यास जो है इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस द्वारा वे यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगी मिस निवेदिता गरोड़िया, जो भारत की हैं और यहाँ पर अभ्यास बिल्कुल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस की एक सदस्य हैं। और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक पर, जो 11 मई से 17 मई तक मनाया गया। और बिल्कुल आज के समय में मेंटल हेल्थ कितनी आवश्यक है, और आज तनाव बढ़ता जा रहा है और तनाव का सीधा प्रभाव हमारे हेल्थ पर पड़ रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ कुछ ऐसा कुछ हम कर रहे हैं जो गलत हो रहा है जिसके कारण हम ये तनाव को हैंडल नहीं कर पा रहे, इन सारी बातों पर आज के इस कार्यक्रम में हम खुलासा करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं बलदीप जी का, जिनको सभी लोग प्यार से बल कहते हैं। बल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: एंड साथ ही साथ निवेदिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू रत्ना जी।
0: और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में मैं बलदीप जी से यही पूछना चाहूँगी कि बलदीप जी, मेंटल हेल्थ, जो हमारा माइंड है, जो हमारा मेंटल हेल्थ है, उसका मतलब क्या है, मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है?
1: मेंटल हेल्थ है आपका साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल वेलबींग जो होता है। आप कैसे फील करते हैं, आप कैसे इमोशन को हैंडल करते हैं
0: जी।
1: और आप कैसे बिहेव करते हैं, आप रिएक्ट करते हैं या आप रिस्पोंड करते हैं। और अगर आप रिस्पोंड करते हैं, इसका मतलब है कि आप स्ट्रेस को मैनेज करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो मेंटल हेल्थ इज अबाउट जो आपको आपका बिहेवियर कैसा है, आपका इमोशन हैंडल कैसा है,
0: मतलब आप स्ट्रेस के मोमेंट में, इस सिचुएशन में आप अपने आप को किस तरह से आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, ये जरूरी हो जाता है। और हमारा जो फिजिकल हेल्थ है और हमारा जो मेंटल हेल्थ है, क्या वो आपस में कनेक्टेड है?
1: जी बिल्कुल, वो फिजिकल हेल्थ और

0: आपस में कनेक्टेड है।
1: जी बिल्कुल, वो फिजिकल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज, क्रोनिक हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज, तो आपको मोर चांस है कि आपका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी होता है।
0: ओके, और जब हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक की बात करते हैं तो ये दिन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये वीक का ऑब्जेक्टिव क्या है?
1: अवेयरनेस कि हम आप हमारा ध्यान ले आए कि हमारे पास मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। सो हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में ये बात करते हैं कि डिप्रेशन कैसे होता है, एंग्जायटी कैसे होता है, स्ट्रेस कैसे दिखता है, तो आप आइडेंटिफाई करते हैं हाँ हमारे पास भी वो सिम्टम्स है, शायद हमको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए या हमको कोई स्पेशलिस्ट से बात करना पड़ेगा। और वो अवेयरनेस से आपको पता लगता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम है और हमको कुछ करना चाहिए।
0: Okay.
1: वो उसके ये रीजन है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक होता है।
0: बिल्कुल, मैं हमारे श्रोताओं को ये भी बता दूं कि बलदीप जी जो हैं वो एक पीएचडी स्टूडेंट है, अभी उनका रिसर्च चल रहा है नर्वस सिस्टम रेगुलेशंस और लाइफस्टाइल मेडिसिन में। और साथ ही साथ मैं ये सवाल भी ज़रूर पूछना चाहूँगी बलदीप जी, मैंने कई बार सुना है ऐसे कहते हुए लोगों को दैट इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके, तो इस शब्द का या इस सेंटेंस का अर्थ क्या होता है?
1: अवेयरनेस, हम अगेन जैसे हमने बोला है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक के बदले, वैसे ही हम आप हमारा अवेयरनेस लेके आते हैं कि हम ठीक नहीं हैं,
0: या ये जानना
1: जरूरी
0: है।
1: हमको अगर हम नहीं पहचानते तो हम देखते नहीं है कि प्रॉब्लम है, लेकिन अब हम जब हम अवेयरनेस लेके आ सकते हैं कि हाँ एक प्रॉब्लम है, हम कुछ कर सकते हैं।
0: यानी ये जानना जरूरी है जब हम कुछ बिहेवियर में रिएक्ट करते हैं या उसका रिएक्ट इट्स नॉट लाइक नॉर्मल नहीं है, तो ये हमें ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए दैट ये कुछ गलत हो रहा है।
1: वो अगर हम नहीं सोचते हैं कि नहीं हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ
1: पाएंगे, उसका सोल्यूशन हम ढूंढेंगे नहीं क्योंकि हमको मालूम नहीं कि हमको प्रॉब्लम है,
0: प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल,
2: इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं।
0: हाँ जी,
2: इट्स ओके नॉट टू बी ओके में कई बार स्पेसिफिकली यूथ एंड अडल्ट्स में एक चीज़ देखी जाती है कि हम अपने जितने भी इमोशंस हैं या जो हम रिएक्ट कर रहे हैं, हम अपने तनाव में हैं, इन सभी चीज़ों में अपने आप को बहुत ज़्यादा हम सप्रेस कर लेते हैं या रोक लेते हैं, हम बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या जब हम चाहते हैं कि एक्सप्रेस करें तो हमें लगता है कोई हमें जज करेगा।
0: बिल्कुल,
2: कोई हमें देख लेगा, कोई बोलेगा कि अरे इसको तो एंजाइटी है, ये तो स्ट्रेस में
0: मतलब
2: है,
0: हमें हमारे अंदर बहुत प्रॉब्लम है पर हम नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं।
2: तो दैट्स व्हाई ये बहुत जरूरी है कि इट इज ओके टू बी नॉट ओके एंड इट इज ओके टू आस्क फॉर हेल्प, गो आउट, स्पीक आउट। प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग हैं यहाँ पे, ऐसे बहुत
0: इंस्टीट्यूशंस हैं जो हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं और हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। तो कई बार अगर आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं कि आप सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे या सिचुएशंस में से सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ लाइक वो बल्क अप करने के बजाय स्पीक आउट करना बहुत जरूरी है।
1: जी, बहुत जरूरी।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम जब हम इमोशंस सप्रेस करते हैं या इवन रिप्रेस करते हैं, जब दबा देते हैं तो वो हम डीप्रेस कर रहे हैं।
0: हाँ,
1: वो डीप्रेस
0: खत्म नहीं हुआ है।
1: जी, वो डीप्रेस करके वो फिर फिजिकल डिजीज भी बन सकता है क्योंकि हम होल्ड करते हैं वो इमोशन को।
0: बिल्कुल,
1: सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक्सप्रेस करें, हम उसके बाद उसके बदले हम बात करें या किससे भी बात करें या फिर एक्सप्रेस करें, अगर एंगर है या सैडनेस है या ग्रीफ है कि हम एक्सप्रेस कर सकें सेफली और लेट इट गो।
0: या बिल्कुल, जैसे इजी लेना है उसको, बहुत ज्यादा पकड़ के या झकड़ के नहीं रखना है। मेरा अगला सवाल यही होगा बलदीप जी, क्या तनाव के कारण यानी स्ट्रेस के कारण क्या मानसिक बीमारी हो सकती है?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेस जैसे हमने बताया है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हमारे लिए बहुत गुड है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो होता है, हमारे केमिकल्स चेंज हो जाते हैं. जब केमिकल्स चेंज हो जाते हैं तो हम रिएक्ट करने लगते हैं,

0: हमारे जो इम्यून सिस्टम है ऑफ हो जाता है.
1: अच्छा.
0: हाँ, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ऑफ हो जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हो जाता है. तो हमारा जो केमिकल्स बहुत प्रो इन्फ्लेमेटरी रहते हैं, तो हमारी बॉडी ब्रेक डाउन होने लगती है.
1: जी जी.
0: और वो मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है.
1: बिल्कुल.
0: क्योंकि हम, जैसे हमने कहा था, हम बिग पिक्चर नहीं देख सकते.
1: हाँ,
0: हाँ. हम फोकस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पे हम ध्यान देते हैं. जब हम ज़्यादा ध्यान प्रॉब्लम पर देते हैं, हमको जैसे सोल्यूशन नहीं दिख रहा है,
1: सिर्फ
0: प्रॉब्लम दिख रही है. तो वो रिन्यूमरेट करते हैं, वो बार बार वही सोचते हैं. तो हमारे दिमाग पर असर पड़ता है.
1: मतलब हम ऑप्शंस नहीं देख पाते, हम सिर्फ प्रॉब्लम को ही देख रहे हैं. अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि छोटा स्ट्रेस ठीक है बड़ा स्ट्रेस के बजाय, तो इसका मतलब क्या है? आप थोड़ा एलैबोरेट एग्जांपल्स के दे सकते हैं?
0: या जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, हम हमारी बॉडी को पुश करते हैं.
1: हाँ.
0: पुश कर हम स्ट्रेस में लेके जाते हैं, और जब हम रेस्ट करते हैं वो स्ट्रेस नीचे वापस आता है. तो हम हमारे रेस्ट सिस्टम में जाते हैं.
1: हाँ.
0: अगर हम वो एक जैसे मसल है, हम स्ट्रेस में लेंगे और फिर रेस्ट में जाएंगे. जितना ज़्यादा ये कर सकते हैं उतना ज़्यादा स्ट्रेस रेजिलियंस बढ़ता है.
1: ओके.
0: कि कोई भी एनी टाइम हम स्ट्रेस में जाएंगे तो हमारा सिस्टम बहुत जल्दी रेस्ट में आएगा. लेकिन जब हम ये एक्सरसाइज नहीं करते हैं माइंड और बॉडी में, तो जब हम स्ट्रेस में जाते हैं, हम स्ट्रेस में रहते हैं. जब हम स्ट्रेस में रहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, हमारी केमिकल्स चेंज हो जाते हैं.
1: बिल्कुल.
0: सो एक केमिकल है एड्रेनलिन, वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में होता है.
1: ओके.
0: लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में एड्रेनलिन नोर एड्रेनलिन बन जाता है, जो हमारे टिश्यूज को ब्रेक डाउन करता है हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो ये सब होता है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन हम देखते नहीं है कि हमारी एक्चुअली बॉडी ब्रेक डाउन कर रहा है. सो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हमारे लिए नहीं गुड है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हमारे लिए गुड है,
1: जो हम एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान कर सकते हैं.
0: सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, माइंडफुल एक्सरसाइजेस करते हैं.
1: बिल्कुल.
0: एनी ऑफ दोज वी पुश ऑरसेल्व्स.
1: हाँ हाँ. यानी हमको अपने आप को थोड़ा उसके लिए तैयार करना
0: जी,
1: है.
0: जी,
1: बिल्कुल.
0: yeah.
1: बिल्कुल. जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, जुम्बा करते हैं, जिम वर्कआउट्स करते हैं, तो ये हमारी जो बॉडी में जो स्ट्रेस की क्षमता है उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, फिजिकली हम किस तरह से कोई भी आने वाला स्ट्रेस होता है उसके लिए कैसे हम अपने बॉडी को तैयार कर सकते हैं, ये हमें एक्सरसाइज द्वारा प्रदान किया जाता है. सो मैं निवेदिता से पूछना चाहूँगी कि स्ट्रेस, मानसिक स्वास्थ्य जो है, क्या हमारे शरीर को अफेक्ट करता है, और अगर करता है तो किस रूप से, यानी क्या बीमारियां होने के चांसेस हैं?
2: जी, ये करता है, बिल्कुल करता है. जैसे कि हम एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं. ब्रेन हमारा, समझ लीजिए, एक बड़ी मशीन है. और हमारा शरीर एक मैदान है.
1: ओके.
2: ठीक है. अब हम शरीर के इस मैदान, समझ लीजिए, या एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है. इस फैक्ट्री में कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूसली बारम्बार कुछ ना कुछ बनता जा रहा है. और ये फैक्ट्री का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है कि बाहर से डिमांड बहुत आ रही है, तो इसको प्रोडक्शन बढ़ाना है.
1: हाँ हाँ.
2: तो वो मशीन जो थी ऊपर, ब्रेन,
1: हाँ,
2: उसने अपने दो सोल्जर्स को, या कह दीजिए दो केमिकल्स को भेजा अपने शरीर में.
1: हाँ.
2: कि जाओ तुम उनकी मदद करो और जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको बढ़ाओ, ताकि बाहर की तरफ हम उसको और भेज सके. इसका एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि जो केमिकल्स जो बालजी ने मेंशन किए कि ये केमिकल जो शरीर में उतरते हैं जब ब्रेन रिलीज करता है अपनी बॉडी में, तो वो आपके शरीर को एक तरीके से एक अलर्ट मोड पे डाल रहा है, जो कि आपका प्रोडक्शन हाई करेगा. बट अब ऐसा हो गया है कि बाहर से इतना स्ट्रेस, बाहर से बाहर का है नहीं एक्चुअली, बाहर हर एक चीज़ स्ट्रेस ही होती है, अगर हम उसको देखेंगे स्ट्रेस की तरह तो वो स्ट्रेस ही होगी। बाहर से इतना डिमांड आता है कि शरीर कभी रिलैक्स ही नहीं होता,
1: सही बात,
2: या शरीर इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कोई रेस्ट ही नहीं है, तो क्या होता है वो प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है या जो ब्रेन रिलीज कर रहा है केमिकल, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता,
1: मतलब एक तरह से आपका बॉडी थक भी रहा है लेकिन उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है।

0: तो अब उससे क्या हो रहा है, जो केमिकल जो एक्सेस प्रोड्यूस हो गए वो शरीर के अंगों को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं.
1: बिल्कुल.
0: जैसे कि एक बार स्मोक कर लिया, चलो ठीक है, दो बार कर लिया, बट अब कॉन्स्टेंटली आप कर रहे हैं तो कैसे लंग्स के ऊपर धीरे धीरे धीरे उसका
2: प्रभाव पड़ता है. सही बात.
0: वैसे ही उन केमिकल्स का भी काम है कि जितना वो भरता जाएगा शरीर में उतना आपके बॉडी को स्ट्रेस देगा, आपके
2: आपके जो इम्यूनिटी है, बिल्कुल इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगा,
0: रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, इन सब को. तो यस, स्ट्रेस आपके शरीर पे देता है तनाव और आपके शरीर के डिजीज को बढ़ाता है. इसीलिए इस शरीर को पहले आपको रिलैक्स करना है और एक्सरसाइज मोड पे डालना है ताकि बॉडी का रिदम बने, तब जाके आपका शरीर रेडी होगा कुछ स्ट्रेस तनाव लेने के लिए और कुछ तरीके से उसको रिस्पॉन्ड. हर बार रहेंगे उसमें तो कांस्टेंट रहेगा, इसके लिए आपको रिलैक्स होना, ब्रेथ पे आना बहुत जरूरी है.
2: यानी ब्रेथ जो है वो आपको ब्रेक देता है, आपको रिलैक्स मोड पर लाता है और फिर आपको तैयार करता है कि आप और स्ट्रेस को हैंडल कर सको. जैसे इतना आसान शब्दों में आपने समझाया, जैसे बिल्कुल आज के समय में आपने देखा होगा, मैं और एक एग्जांपल यहाँ शायद जोड़ सकती हूँ, जैसे हम कंप्यूटर पर काम करते हैं और कंप्यूटर में फाइल्स डाउनलोड होती जा रही हैं, आप ट्रैश में नहीं फेंक रहे हो उसे, तो एक टाइम आएगा जब आपका कंप्यूटर क्रैश होगा, यानी आपकी मेमोरी डाउन हो जाएगी, आपका फिजिकल लेवल जो है वो पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा और एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जहां पर हम बीमारियों का ढांचा बन जाएंगे. और बिल्कुल ये एक बहुत साधारण सी बात है जो हर इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है. और आज के समय में आपने डिप्रेशन जैसे शब्द सुने होंगे, स्ट्रेस जैसे शब्द हम आए दिन सुनते रहते हैं. मैं यहाँ पर बलदीप जी से पूछना चाहूँगी कि ये जो स्ट्रेस है, चिंता है, हम डिप्रेशन भी इसमें शामिल करते हैं, ये तीनों शब्दों में डिफरेंस क्या है?
3: इतना भी डिफरेंस नहीं है. सो स्ट्रेस जो है, हमने बोला है कि गुड स्ट्रेस भी है और बैड स्ट्रेस भी है. और हमारे पास गुड स्ट्रेस चाहिए फंक्शन करने के लिए, प्रोडक्टिव बनने के लिए. और जो बैड स्ट्रेस है, जब वो बैड स्ट्रेस अक्यूमुलेट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है और हम इमोशन नहीं मैनेज कर सकते, वो इमोशन हम सप्रेस कर करके वो डिप्रेशन बन जाता है. सो वो डिप्रेशन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के कारण होता है. जो दूसरा आपने बोला था,
2: चिंता, स्ट्रेस, हाँ जी बिल्कुल,
3: स्ट्रेस, डिप्रेशन और एक और
0: ओवरथिंकिंग.
3: बिल्कुल. ओके, ओवरथिंकिंग होता है जब आप स्ट्रेस मोड में रहते हैं. जैसे हमने कहा था ना कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं आप एकदम
2: नैरो
3: फोकस हो जाते हैं. नैरो फोकस होने के कारण हम ओवरथिंक, वो ही रिन्यूमरेट करते रहते हैं, वो ही ओवरथिंक करते रहते हैं, क्योंकि हम बार स्ट्रेस के बाहर नहीं आ सकते और बिग पिक्चर को नहीं देख
2: नहीं
3: सकते
2: देख पा रहे. मतलब हम
3: सॉल्यूशन फोकस नहीं है,
2: दैट इज व्हाट, यानी सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं, सिर्फ स्ट्रेस,
3: वो स्ट्रेस, वो चिंता देख रहे हैं. लेकिन अगर हम रेस्ट कर सकें और स्ट्रेस के बाहर निकल सके तो फिर हम बिग पिक्चर देख सकते हैं.
2: बिल्कुल बिल्कुल. यानी जैसे बलदीप जी बता रहे हैं कि स्ट्रेस को हम इतना ज़्यादा फोकस कर देते हैं कि उसके बाहर का सोल्यूशन हम नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ही फोकस पर कर पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा थका देता है. और जैसे आपने कहा, निवेदिता जी ने जैसे कहा कि ब्रीदिंग्स के माध्यम से एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को रिलैक्स मोड पर लाना बहुत ज़रूरी है. जैसे आप पूरे दिन को काम करते हो और रात को जाके घर जाकर सो जाते हो, ये एक तरह से आपको बूस्टअप करता है, आपकी एनर्जी लेवल को बूस्टअप करता है. चलिए लेते हैं गीत का ब्रेक और आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक पर, जो 11th ऑफ मई से लेकर 17th ऑफ मई, यानी 11 मई से लेकर 17 मई तक मनाया गया, उस पर आज का ये कार्यक्रम आधारित है. एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं थोड़ी ही देर में.

0: जी हाँ, रेडियो मॉरिशस पर आज की चर्चा कार्यक्रम, और आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक पर। बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ ऐसा कहा और एक बहुत हंसी का सेशन हुआ यहाँ पर, जैसे हम पहले के ज़माने में, मैं समझती हूँ 70-80 years, 80-90 साल पहले स्ट्रेस नाम की कोई बीमारी थी ही नहीं, और अगर किसी को हो जाए तो कहा जाता था कि भाई इनको तो शाही बीमारी हुई है। और मैं ज़रूर बलदीप जी से ये पूछना चाहूँगी कि ये जो स्ट्रेस है ये आया कहाँ से, आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं।
1: जी, स्ट्रेस हमारे पहले सिस्टम में थी, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में हमको स्ट्रेस चाहिए, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस नहीं लेते थे तो हम जो टाइगर है हमको हम उससे फाइट नहीं कर सकते,
0: या शेर, या ऐसी कोई सिचुएशन

0: जाती थी,
1: फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, हम या तो फाइट करते या दौड़ते. सो वो हमारा इनेट स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, ये पहला रिएक्शन है हमारी बॉडी में और ये हमारे को चाहिए क्योंकि हम सर्वाइवल के लिए बने हैं.
0: सही बात.
1: सो years हुए हैं कि हम हमारा स्ट्रेस बढ़ता है. लास्ट 50 years में हमारा स्ट्रेस काफ़ी बढ़ रहा है और जो जैसे हम फिजियोलॉजी बहुत डिफरेंट टाइप के स्ट्रेसेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, सेल्युलर स्ट्रेस है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हमारे सेल्स में है, बॉडी में है.
0: बिल्कुल.
1: और डिफरेंट स्ट्रेसेस हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस दे सकते हैं. सो जो फूड हम खाते हैं अगर वो प्रोसेस्ड फूड है, वो हमारी बॉडी को सेल्स में वो नई न्यूट्रिशन मिलता, वो स्ट्रेस हो जाते हैं. सो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हमारे अंदर है. अगर हम हमारे फोन्स को देखते रहेंगे, वो EMF जो डिवाइस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज होती है फ़ोन की, वो हमारे बॉडी को सेलुलर स्ट्रेस देते हैं. जो हम नींद सोते नहीं हैं प्रॉपरली, हमारे डिफेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम ऑफ हो जाता है, लो हो जाता है और हमारी बॉडी को स्ट्रेस मिलता है. सो हमारे स्ट्रेसेस बढ़ गए हैं. जैसे हम मूव नहीं होते हैं, हमारा स्ट्रेस रेजिलियंस नीचे है. हम खाते नहीं हैं प्रॉपरली जो फूड हमारे बॉडी के लिए गुड है, नरिशिंग है.
0: मतलब जैसे कहते हैं ना कि 15 टू 20 मिनट्स आपको अच्छे से बैठकर खाना चाहिए. आजकल ऐसा है कि अनकॉन्शियसली
1: करते नहीं है.
0: बिल्कुल, बिल्कुल.
1: हम बहुत अनकॉन्शियसली सब कुछ कर रहे हैं.
0: जल्दी जल्दी खाना है, जल्दी जल्दी टीवी के सामने खाते हुए काम करते हैं या तो फिर खाते हुए टीवी देख रहे हैं.
1: या हम बैठ कर कॉन्शियसली नहीं कुछ कर रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम ऐसे खा रहे हैं कि हमारी जैसे हमने बोला बॉडी को स्ट्रेस मिल रहा है. सो जितना स्ट्रेस हम बिल्ड कर रहे हैं उतना ज्यादा स्ट्रेस हमारे माइंड पर पड़ता है.
0: ट्रू.
1: इसके लिए हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं. सो एक और चीज है जो स्ट्रेस हम बचपन से बिल्ड अप करते हैं. सो थ्रू ट्रॉमास, थ्रू स्टोरीज, पैटर्न्स, जो हमारे हेरेडिटरी है पैटर्न्स, वो सब स्ट्रेस बन जाते हैं. सो हमारी बॉडी पर एक अमाउंट का स्ट्रेस रहता है, लेकिन जितना हम अक्यूमुलेट बाहर से हम करते हैं, हमारा कैपेसिटी यहाँ पर है. सो जब एक और स्ट्रेस ऊपर से आ जाता है, हम रिएक्ट करते हैं. हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम पीछे बैठ के रिस्पॉन्ड कर सकें.
0: सही बात.
1: क्योंकि हमारे पास दिखता नहीं है कि हम और टाइप ऑफ रिस्पॉन्स कर सकते हैं.
0: हाँ, मतलब वो चॉइसेस पर हम ध्यान नहीं
1: जी,
0: देते.
1: जी या
0: बिल्कुल.
1: सो हम रिएक्ट करने लगते हैं. सो ये काम है, सांस का काम ये है कि हम कितना स्पेस दे सकते हैं कि हम रिएक्ट ना करें, लेकिन वो जो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस है वो नीचे करें. तो सो हम कैपेसिटी से रिस्पॉन्ड कर सकें.
0: मतलब सोचने का आपको टाइम मिलता है. जैसे आप बता रहे हैं कि वो पॉज जरूरी है. जब एक चीज हो रही है तो वो पॉज नहीं दे पाते और हम लोग कुछ ऐसा रिएक्ट करते हैं जिसके वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं. तो ये एक बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि ये पॉज लेना बहुत जरूरी है, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, सांस लेना बहुत जरूरी है. कई बार ऐसा होता है कि जब कोई सिचुएशन खड़ी हो जाती है, पहली चीज जो हम नहीं करते वो है सांस नहीं लेते. मैं समझती हूँ हमारी जो सांसें हैं वो बहुत ज्यादा शॉर्टेंड हो जाएंगी. निवेदिता, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी?
2: जो गैप क्रिएट करने की बात हुई है या जो पॉज करने की बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बन गई है आज के समय में. हम बहुत जल्दी हर एक चीज़ में नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं, हम हर एक चीज़ में बोलना चाहते हैं, अपने इनपुट्स देना चाहते हैं, या फिर समझ लीजिए कि हमें वहाँ पहले होना है. एक स्ट्रेस हमें स्ट्रेस जैसे कि तनाव या एक प्रेशर होता है पीछे कि करना है करना है करना है, ये हमेशा पीछे लगा रहता है. तो इसका एक बेसिक अगेन एग्जाम्पल की तरह हम समझ सकते हैं या बेसिक डिडक्शन क्या है कि मुझे जैसे कि किसी व्यक्ति ने बहुत कुछ बोला, उस व्यक्ति की मेरे शरीर में एक मेमोरी छप गई है, इम्प्रेशन छप गई है. अब वो व्यक्ति जब वापस मुझे मिलेगा या वैसा ही व्यक्ति मुझे मेरी लाइफ में आगे कोई मिलता है, तो मेरे जो बॉडी के इम्प्रेशन है वो शरीर के केमिकल से मिलते हैं. जब ब्रेन रिलीज करता है कि अरे ये व्यक्ति गुस्से में मेरे को कुछ बोल गया तो मेरे अंदर भी गुस्सा, तो गुस्से के केमिकल्स और उन मेमोरीज को जब

0: मिलता है तो वो इमोशन बनते हैं, उसे कहते हैं इमोशंस. अब जब वो इमोशंस एक्टिवेट होने लगते हैं, हाई होने लगते हैं कि गुस्सा भरने लगता है, तो वो आपके इमोशंस थॉट्स में बदल जाते हैं कि हाँ अब आपको वो विचार बना रहा है कि ये व्यक्ति ऐसे हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, ये सिचुएशन
1: मतलब
0: ऐसा
1: भले
0: है.
1: आपके सामने ना हो पर उसका ख्याल हमेशा दिमाग पे रहता है.
0: इसी से क्या होगा कि वो थॉट अब पूरी तरह से आप पे हावी हो गया है.
1: True.
0: मतलब कि अब आप वो थॉट आपके जिब्वा पे लाएंगे या एक्शन पे लाएंगे, आप कुछ फेंकेंगे या गाड़ी की
1: या फिर आप कुछ बोल दोगे या फिर
0: बोलेंगे. कुछ भी एक्शन आ गया, बोल दिया, तो उसको बोलते रिएक्शन. आपने रिएक्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्ड. तो अब हमारा जो थॉट है और हमारा जो एक्शन है उसके बीच में एक गैप बहुत ज़रूरी है, जो कि आज हम समझ ले कि अगर ये नहीं करते हैं तो हम बाद में गिल्टी हो गए कि मैंने मेरे बॉस को
1: मैंने गुस्से में पता नहीं क्या कर दिया. नहीं सही बात है, बिकॉज हम कई बार गुस्से में कहते हैं ना कि हमने गुस्से में बहुत नुकसान कर दिया. मतलब जैसे वो रिएक्शन का जो टाइम है ना, हम उसके बीच में पॉज नहीं देते. एक्शन और रिएक्शन के बीच में वो पॉज आना बहुत ज़रूरी है.
0: तो वो थॉट और एक्शन के बीच में गैप कैसे आएगा, जब आप एक अवेयरनेस लाएंगे. अवेयरनेस कैसी आएगी कि जैसे ही कुछ भी हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत एंगर आ रहा है, मुझे सैडनेस आ रही है, तुरंत अपनी एक लंबी गहरी सांस ली, उसे रोक लिया, वहाँ एक गैप ला ली कि सांस को भर के रोका और सांस छोड़ के फिर से रोका. तो सांस के बीच में गैप आ गया, मतलब आपके थॉट्स के और एक्शन के बीच में भी गैप आ ही गया है.
1: मतलब आप उसको ब्रिज नहीं कर रहे हो, आप उनको मौका नहीं दे रहे हो. जो इमोशंस जो हो सकता है कि उस टाइम पर नेगेटिव इमोशंस या जो भी नेगेटिव थॉट्स या जो भी गुस्से वाला या सैडनेस वाला जो भी इमोशंस डेवलप हो रहा है, आप उसको शांत कर रहे हो.
0: Exactly.
1: उसको एम्पावर नहीं कर रहे हो, जो आपके दिमाग को बिल्कुल शांत रखता है. और मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी बलदीप जी से, अभी थोड़ी देर पहले हम ब्रीफिंग सेशंस में बात कर रहे थे, आपने कहा ना कि बहुत तरीके हैं जिसके कारण हमारे शरीर में स्ट्रेस होता है, और जो बेसिक चीज़ें हैं हमारे लाइफ में जैसे खाना खाना या नींद ना आना या ये सारी चीज़ें, इस पर भी थोड़ा सा आप एलैबोरेट करें.
2: ये ना एक डिसिप्लिन है, मेडिसिन का डिसिप्लिन है, लाइफस्टाइल मेडिसिन. उसमें छह पिलर है. वो छह पिलर है कैसे हम खाते हैं, क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं, कैसे मूव करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं. तीसरा है हम स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं. चौथा है हम सोते कैसे हैं, हमारी रूटीन नींद की कैसे है, हाइजीन, वो से स्लीप हाइजीन कहते हैं. फिफ्थ है हमारे रिलेशनशिप्स कैसे है, रिलेशनशिप्स अगलों के साथ और also रिलेशनशिप हमारे साथ, हमारी बाउंड्रीज कैसे है, हम कैसे मैनेज करते हैं अपने आप को. और सिक्स्थ है सब्सटेंस अब्यूसेस, कि हम मैनेज कैसे करते हैं सब्सटेंस अब्यूसेस को. सो इसमें हमने पेपर लिखा था कि स्ट्रेस जो है अंडरलाइंग पिलर है सबके लिए.
1: अच्छा.
2: अगर हम स्ट्रेस नहीं मैनेज करते तो हम खाते नहीं राइट, हम मूव नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम सब्सटेंसेस के लिए जाते हैं, हम सोते नहीं करेक्टली और हमारे रिलेशनशिप सफ़र करते हैं. सो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. और स्ट्रेस को मैनेज करना जैसे सांस के लिए
1: जी.
2: सो अगर वो स्ट्रेस बिल्डअप होता है तो कोई भी पिलर से बिल्डअप हो सकता है. अगर हम राइट नहीं सोते हैं वो भी स्ट्रेस को इम्पैक्ट करता है. अगर हम खाते नहीं राइट तो वो इनसाइड हमारे सिस्टम को स्ट्रेस देता है, तो हमारे केमिकल्स फिर ऊपर आते हैं. सो खाना कॉन्शियसली कुक करना, कॉन्शियसली खाना, जो अर्थ से प्लांट फूड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें
1: फ्रूट्स और जो नेचुरल
2: न्यूट्रिएंट्स काफ़ी है हमारे हमारे वेजिटेबल्स से. जो हम अब खाते हैं वो बहुत प्रोसेस्ड है, उसमें तो कोई लाइफ नहीं है.
1: और जैसे मतलब फ्रिज में से निकाला, जल्दी से गर्म किया और खाया, बिकॉज
2: ने न्यूट्रिएंट्स को तो किल कर दिया है.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: So, माइक्रोवेव्ड, जी, रेफ्रिजरेटेड, ओवर कुक, इवन कुकर में बनाया हुआ खाना भी आपके लिए आज के समय क्योंकि आप प्रेशर कर रहे हो उसे कि जल्दी बन जाए वो
1: पहले के जमाने नेचुरली उसको नहीं पकने दे रहे हैं।
0: पहले के जमाने में हम कुकर वुकर नहीं होता था, पहले हम लोग ओपन मिट्टी के बर्तन में ओपन एयर में सूर्य के नीचे बनाते थे उसको, तो वो सब चीजें नहीं है। कुकर हो गया, अवन हो गया, माइक्रोवेव

0: रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का खाना, कैंड फूड, पूरा सुपर मार्केट में देख रही हूँ कि हर एक चीज ऐसी भरी हुई है
1: जी.
2: Yeah, so it's important, बहुत important है कि हम ध्यान दें कि हम क्या खाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे पकाते हैं और कैसे हम कॉन्शियसली बह के खाते हैं. सो वो एक है. स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है. स्लीप हम उठते और सोते कैसे हैं. सो उठते जब हम उठते हैं, जब हम धूप को देखते हैं, वो हमारा कोर्टिसोल जो स्ट्रेस केमिकल है वो बढ़ता है, एकदम हाई हो जाता है.
1: अच्छा.
2: लेकिन जैसे डे जाता है आपका स्ट्रेस केमिकल नीचे आता है, आपका मेलाटोनिन ऊपर जो स्लीप हार्मोन है वो ऊपर जाता है. सो हम रियली नाइसली स्लीप कर सकें रात को. जो हम 3-4 बजे सवेर को उठते हैं, 2-3 बजे, और हमारा माइंड ऑन रहता है, हमारा मेलाटोनिन लेवल बहुत लो है. क्योंकि हम सुबह को कॉफी ले लेते हैं, सन को नहीं देखते हैं. सो आर्टिफिशियल कोर्टिसोल
3: है. देर तक जागना और देर तक सोना.
2: जी जी.
3: तो ये एक हेल्थ को कहीं ना कहीं, और देखा जाए तो यही सारी जो गलतियां हैं हम आए दिन करते हैं. जैसे आप बता रहे हो कि खाना प्रोसेस्ड बहुत हो गया है. हालांकि हम मॉरिशस में ट्रॉपिकल आइलैंड पर रहते हैं और यहाँ पर जो ताज़ी सब्जियां हैं, ताज़े फल हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं. लेकिन हम आज के लाइफ में फास्ट फूड की ओर ज़्यादा दौड़ रहे हैं. कहीं ना कहीं आए दिन हमने इतने सारे प्रोग्राम्स किए हैं और आए दिन हम ये लोगों को बताते रहते हैं कि ये हेल्दी नहीं है. पर कहते हैं ना कि कई बार हमारी ज़बान को जो अच्छा लगता है वही हमारा मन वहीं पर दौड़ता है. मतलब जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है हम उसी ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं. और अभी थोड़ी देर पहले बलदीप जी हमें एक इतना अच्छा एग्जाम्पल दे रही थी कि एक बोल में रखी हुई है बहुत सारी चॉकलेट और एक तरफ रखा है एप्पल. हालांकि ये सब जानते हैं कि एप्पल बहुत ज़्यादा हेल्दी है, पर हमारा ध्यान भागता है बिल्कुल चॉकलेट की ओर. तो ये हमारे हेल्थ को बहुत नुकसान पहुँचाता है.
2: अगर हम एक बार करें तो वो ठीक है, लेकिन हम बार बार वही करते रहें तो वो हैबिट, वो लैक ऑफ डिसिप्लिन, वो हमारे बॉडी को ब्रेक डाउन करता है.
3: बिल्कुल.
2: अगर हम एप्पल को चूज कर सकें और एवरी नाउ एंड देन हम चॉकलेट ले लें, कोई नुकसान नहीं होता है.
3: बिल्कुल. जैसे बैलेंस में आप
2: बैलेंस में
3: आओ. बैलेंस में लो ओकेजनली. पर हमारा होता है उल्टा कि हम ओकेजनली एप्पल खाते हैं और रूटीन हमारा बन चुका है चॉकलेट. तो यहाँ पर नुकसान है. बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझनी बहुत जरूरी है. चलिए एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं अभी थोड़ी देर में, क्योंकि स्मार्ट कुकिंग और किस तरह से कम समय में हेल्दी खाना तैयार होना चाहिए, किस तरह से वो हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम ना दे, इन सारी छोटी छोटी बातों पर और थोड़ी और ज्यादा चर्चा करेंगे एक गीत के ब्रेक के बाद. वैसे आपको बताते चले, हमारे तकनीक पर हमारा सहयोग दे रहे हैं कादिया जी, साथ ही साथ हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट इस वक्त है दीपशिका, और हमारे साथ प्रोड्यूसर रितेश मोहाबिया जुड़े हुए हैं. हमारे दर्शक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ, बस बने रहें, 10 बजे तक ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा.

बत्ती से धुआं निकलने लगी तो तेल डालने से क्या होगा। जब असर के भूत सर से उतर गया तो अरे गुनी बुलाने से क्या होगा। जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर

रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो

शक्कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब घर की आटा

0: जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम आज हमारे साथ ऐसे मेहमान जो आए हैं यूके से, बलदीप जी और निवेदिता जो हैं अभ्यास की एक सदस्य और आज हमारे साथ जुड़ी हैं। तो मैं ज़रूर निवेदिता से जानना चाहूँगी कि आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि किस तरह से माइंडफुल कुकिंग करें, किस तरह से इंटेलिजेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि आपको पता रहे कि आप क्या खा रहे हैं, इस पर आप थोड़ा सा बता दें हमें।
1: रत्ना जी, वी कॉल इट एज अ कॉन्शियस ईटिंग,
0: ओके,
1: जो कि हमारा अभी की पार्ट है लाइफस्टाइल का, जो मैंडेटरी हो गया है कि हम इसके बिना अभी हमारा रूटीन हम लोग नहीं कर पाते। क्यों कॉन्शियस ईटिंग ज़रूरी है? आपको नहीं पता कि वो भोजन किस मानसिकता से प्रिपेयर किया गया है, True. क्या इमोशंस उस भोजन में है, क्या वाइब्रेशंस उन भोजन में है। तो आप खा तो रहे हैं बट आप उन इमोशंस को भी ग्रहण कर रहे हैं अपने शरीर में, और उसी से ही वो आप बन भी रहे हैं। बाहर जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, या किसी भी कैसे भी हाथ का बना के खा रहे हैं। दो मदर्स कुक फूड इज ऑलवेज लव्ड कुक फूड, मतलब अपनी माँ का हाथ का खाना ये
0: सबसे केयरिंग, सबसे केयरिंग से बनाया जाता है, बिल्कुल।
1: बट कई बार ऐसा होता है कि हम हर बार नहीं खाते हैं, वो कहीं ऐसी चीज़ है। तो हमारे इमोशंस उस भोजन को इम्पैक्ट ना करे, किसी और के इमोशंस उस भोजन को इम्पैक्ट ना करे। हमारे जो इमोशंस है वो 60-70% कम हो जाएंगे अगर हम कॉन्शियस ईटिंग करते हैं इन 5 स्टेप्स से। सो आपको करना कुछ नहीं है, जब भी आप भोजन कर रहे हैं, आपके 3 टाइम के मील्स ले रहे हैं, आपको हमेशा पहला डाइनिंग टेबल अवॉइड करना है,
0: ओके,
1: नीचे बैठ के भोजन करना,
0: जो पहले पद्धति हुआ करती थी, प्राचीन पद्धति,
1: नीचे शुरू करना है। कि पहला स्टेप है, पहले तो नीचे आ जाओ।

0: क्रॉस लेग करके बैठिए, आराम से बैठिए. कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, टेक अ सपोर्ट, कुछ ऐसी जगह पे बैठ जाओ जहाँ आराम से बैठ सको. उससे क्या होगा, पैरों में सर्कुलेशन नहीं होगा ब्लड का, तो जो बचा हुआ सर्कुलेशन है वो आपके एब्डोमेन, आपके
1: डाइजेस्टिव सिस्टम
0: में होगा. तो जठराग्नि में जब अगर अग्नि बढ़ती है तो डाइजेशन बहुत जल्दी होने लगता है, पाचन तुरंत होने लगता है. ये बहुत ज़रूरी है कि हम नीचे बैठ के भोजन करना फिर से शुरू करें. साइंस कहता है बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, डाइनिंग टेबल अच्छा नहीं है. सेकेंड पॉइंट है, दूसरा स्टेप कॉन्शियस ईटिंग का है, टेक अवे ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस. आपके जितना भी फ़ोन, मोबाइल, टीवी, कॉन्वर्जेशंस, गॉसिप्स हम कॉर्पोरेट में देखते
1: थोड़ी देर के लिए, मतलब 10 मिनट के लिए उसको दूर करें.
0: कॉन्वर्जेशन ऑन वाइन, कुछ भी ऐसा हम करते रहते हैं, खुद के थॉट्स, अकेले बैठे हैं तो मन में विचारों को एंटरटेन करेंगे कि अच्छा ऐसे, अच्छा सबको दूर कर दो. टेक अवे ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस, सबको डिस्ट्रैक्शंस दूर कर दो. भोजन आ गया है, अब उधर
1: फोकस,
0: ये दूसरा फोकस, दूसरा स्टेप है
1: जी,
0: कि अपने डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जाना है, थॉट्स भी नहीं. तीसरा स्टेप है, आपका जब भोजन आ जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टार्ट विथ प्रेयर. हमेशा प्रार्थना से शुरू करें.
1: एक थैंक्स गिविंग होना बहुत जरूरी है.
0: एग्जैक्टली, कि आप ग्रेटफुल हैं, आप ग्रेटिट्यूड में, आप उसके लिए कृतज्ञ है कि आपको भोजन मिलता रहा है.
1: सही बात.
0: और उसी से आपकी वाइब्रेशंस भी शांत होंगी, मन का विचार शुद्ध होगा और उस भोजन में भी वही विचार जाएंगे.
1: True.
0: जिससे आपको शक्ति मिल रही है शारीरिक और मानसिक. इसलिए तीसरा स्टेप है हमेशा प्रार्थना करना, भोजन मंत्र या जो भी मंत्र आपको आता है. चौथा, जो कि बहुत ज़रूरी है, कॉन्शियस ईटिंग का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, हम लोगों ने भोजन किया है बहुत अलग अलग तरीके से, चम्मच से, हाथ से, चॉपस्टिक से या फोक नाइफ कटली.

0: आपकी रिंग फिंगर, आपकी मिडिल फिंगर और आपका थंब, इन्हीं फिंगर को आपको यूज करके भोजन को उठाना है और लेना है, उठाना है और लेना है. आपकी जो इंडेक्स फिंगर है और जो लिटिल फिंगर है उसको आप टच भी नहीं करेंगे फूड में, टच भी नहीं. इससे क्या होगा, आप पहली बार कभी चॉपस्टिक उठाते थे कैसे अवेयर हो जाते कि अरे मेरे को भोजन कैसे उठाना है, पहली बार फोक यूज करते थे,
1: आपका माइंडफुलनेस आप ईटिंग करोगे तब.
0: तो इसी से आप अपने आप को पैटर्न में ब्रेक करते हो कि कुछ छोड़ो, बाजू में सब हटाओ, पहले मुझे इस तीन उंगली से कैसे खाना है वो. इसलिए आप कॉन्शियस हो जाएंगे कि हाँ ये अपान मुद्रा कहा जाता है, अगेन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है. तो ये आपका फोर्थ स्टेप कि आपको इन्हीं दो फिंगर और थंब को मिला के भोजन करना है हमेशा.
1: बिल्कुल.
0: अगर टूट गया तो वापिस आ जाओ, इसी से करो, कोई चारों पांचों उंगलियों को मिला के नहीं करेंगे. पांचवा जो लास्ट है वो है क्रिएट अ गैप. जो हम गैप की बात कर रहे थे वो भोजन से भी हो सकता है कि आप जब भी एक मोरसल या एक
1: निवाला
0: लेते हैं तो उसके और दूसरे निवाले के बीच में गैप होना बहुत जरूरी है. हम करते क्या, ग्रीडी, खुद ही की थाली में ग्रीडी बन जाते
1: कि जल्दी जल्दी मतलब खाना है. कई बार ऐसा होता है कि मतलब अभी हमारे पास होते नहीं है टाइम, मतलब दो मिनट में हमें खाना सारा खत्म करना है. exactly. खाया पचाया मतलब चबाया भी नहीं ठीक से. कई बार हमारी आंतों पर ही हम बहुत ज्यादा जोर दे देते हैं.
0: तो उससे क्या करना है, एक गैप क्रिएट करना है आपको. सिंपली एक बार मोरसल लिया, उसको अच्छे से चबा लिया, उसकी टेस्ट ली, टेक्सचर लिया, उसका स्मेल लिया, और फिर क्योंकि वो 10 मिनट जो भोजन कर रहे हो वो आपका फ्यूचर बना रहे हैं, वो आपका हर एक चीज बना रहे. तनाव में करोगे
1: वही होगा.
0: आराम से करोगे, कुछ अच्छे क्रिएटिव आइडियाज, 60-70 % इमोशंस निकलेंगे.
1: बिल्कुल सही,
0: बहुत जरूरी है इन 5 स्टेप्स.
1: बहुत बढ़िया कहा निवेदिता जी. और साथ ही साथ बलदीप जी को भी मैं पूछना चाहूंगी, आप बता रहे थे कि किस तरह से वो पॉजेस क्रिएट करना है. हम लोग लगभग आज के प्रोग्राम के अंत तक आ गए हैं, तो कम शब्दों में और इसी के साथ हम वाइंड अप करेंगे, क्या मैसेज देंगे आप हमारे श्रोताओं को?
2: ये हमने आइडेंटिफाई किया है ये आज की कॉन्वर्सेशन से कि पोज बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और पोज हो सकता है हमारे सांस के साथ, और अगर हम सांस ले सकते हैं पोज में, वो है बॉक्स ब्रीदिंग. बॉक्स ब्रीदिंग बहुत मशहूर है, सब करते हैं, फ्रॉम नेवी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, यू नो, सब करते हैं पोज लेके आने लेने के लिए. और वो होता है 4 सेकंड इनहेल करना, 4 सेकंड सांस रोकना,
1: ओके, होल्ड करना,
2: या होल्ड करना, 4 सेकंड एक्सहेल करना और 4 सेकंड होल्ड करना. वो बॉक्स बन जाता है.
1: बिल्कुल सही.
2: सो अंदर सांस लीजिएगा 4 सेकंड, होल्ड करिए 4 सेकंड, बाहर ले आइए 4 सेकंड और होल्ड करिए 4 सेकंड, और करिए 4 टाइम्स. सो 4-4-4 हो जाता है
1: जी.
2: वो सिर्फ 4 टाइम्स करने से आपका एकदम स्टेट बदल जाता है. हम आप जाते हैं स्ट्रेस के दूर और काम,
1: बिल्कुल मन शांत होने लगता
2: शांत
1: है
2: में.
1: बिल्कुल, बिल्कुल
2: जी. वो पोज बहुत इम्पोर्टेंट है और अब प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो अगर
1: मैं समझती हूँ हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, पर ये आपने जिस तरह से कहा मैं एक बार बिल्कुल इसको दोहराना चाहूंगी. जैसे बलदीप जी ने बताया कि ये आप कहीं पर भी कर सकते हो, आप गाड़ी ड्राइव करते हुए भी कर सकते हो, काम के दौरान भी आप ये कर सकते हो. यानी 4 सेकंड्स आपको सांस अंदर लेनी है, 4 सेकंड उसे होल्ड करना है, 4 सेकंड आपको उसे बाहर निकालना है और 4 सेकंड उसे फिर होल्ड करना है. ये बहुत ही सिंपल टेक्निक, बहुत ही सिंपल तरीका, आप खुद करके देखिए, आपको दिखाई देगा कि ये आपकी मानसिक तनाव को, आपकी शारीरिक तकलीफों को किस तरह से धीरे धीरे करते हुए ये नियंत्रण में लाता है. ये पॉज लेना बहुत आवश्यक है. और जैसे हमने शुरू में बताया, 11 मई से 17 मई के बीच मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक, और इसी के संदर्भ में आज का ये कार्यक्रम. तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम अपने जीवन शैली को बदलने में उतारें तो आप देख सकते हैं कि आप बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक जीवन बिता सकते हैं. बलदीप जी, जाते जाते हमारे श्रोताओं को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे?
2: मारा यही मैसेज है कि जो ये पोज हमने बात की है,
1: हाँ,
2: ये 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड बॉक्स ब्रीदिंग का, ट्राई करिए एक बार एवरी आवर.
1: अच्छा.
2: सो 12 बजे 1 मिनट के लिए, 1 बजे 1 मिनट. सो ऑन द आवर, एवरी आवर स्टॉप

0: and do the box breathing.
1: Box breathing.
0: Yeah.
1: Milkul.
0: Just four times and see. देखे कि ये आपके मेंटल हेल्थ को कैसे चेंज करता है
1: सही.
0: क्योंकि यही सांस ने आपको अवेयरनेस ले आएगा.

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम पूजा के साथ सुनते हैं। नमस्कार आपको पूजा।
1: नमस्कार रिया, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। अफ्रीका के पास अपने पेंशन फंड और संस्थागत निवेशकों के माध्यम से बिलियन रुपए निवेश किए जाते हैं, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल महाद्वीप के विकास के लिए कैसे किया जाए, साथ ही कर्मचारियों की बचत की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। सातवें अफ्रीका पेंशन फंड एंड रिटायरमेंट समिट में उठाए गए प्रमुख मुद्दों में से ये एक रहा। बुनियादी ढांचे में निवेश, शासन और सार्वजनिक विश्वास के बीच ये भी उजागर किया गया कि मॉरिशस इलाकाई वित्तीय प्लेटफॉर्म के रूप में किस प्रकार भूमिका निभा सकता है। मधुमक्खियां प्रकृति और कृषि दोनों में एक अहम भूमिका निभाती हैं। आज मनाए जा रहे विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कृषि उद्योग मंत्रालय ने जीवों की सुरक्षा पर जोर दिया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें मधुमक्खी पालक, कृषि तकनीशियन शामिल रहे। शहद उत्पादन, जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा के बीच मधुमक्खियों की भूमिका मॉरिशस के लिए आज भी बहुत रणनीतिक बनी हुई है। पुलिस एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण पुलिस द्वारा देश के कोने कोने में अभियान तेज किए जा रहे हैं। अवैध तरीके से पर्यावरण में कचरा फेंकना या फिर गुडलैंड्स में कचरे के ढेर में एक रिसिप्ट से ही गुनहगार का पता लगाया जा सकता है। अन्य जगहों में भी लोगों को पकड़ा गया और 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ साथ उन्हें स्थल की सफाई करने का भी आदेश दिया गया। विदेश में उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में तापमान लगातार रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हालात और गंभीर होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और में गर्म रातों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार और शुभ दिन।
2: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: You're listening to RM3 Radio Mano.

0: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
1: So चलिए दोस्तों, दिल से मिले दिल इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं आपके लिए, जहां पर दिन भर की थकान को दूर करने के लिए वी हैव सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, खूबसूरत गानों का कारवां आपके नाम RM Free Radio मनोरंजन। मैं हूं परी आपके साथ ठीक 5 बजे तक। एक घंटे का ये सफर होने वाला है खास और स्पेशल, क्योंकि गाने हैं एकदम लाजवाब। चलिए सभी के लिए कविता कृष्णमूर्ति, सोनू निगम की आवाजें, फिल्म है महाराजा। खास सा एहसास आप सभी के साथ शेयर करते हुए हम एंजॉय दिस वन।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: सो वेल फ्रेंड्स, कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए. और कहते हैं जिंदगी का जो नाम है वही तो अप्स एंड डाउन्स है, यानी कि कहते हैं कभी खुशी कभी गम, कभी कुछ खोते हैं कभी कुछ पाते हैं, लेकिन जो भी है लाइफ के सिचुएशंस, मुस्कुराते हमेशा रहते हैं. सो इट्स 424 एंड दिस वन्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक. एक गाना ऐसा जो जिंदगी के बहुत सारे फेजेस समझा जाता है. अभी के लिए काम खत्म करके अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर ड्राइव करते हुए ट्यून इन किया है आपने रेडियो मनोरंजन के साथ. सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना आपके नाम. इक्वली गोज आउट फॉर मिस्टर गोविंद रघुनंदन. साथ दे रहे हैं वाकवा से फॉर योर ब्यूटीफुल वाइफ वेदा. साथ दे रहे हैं हमारे सभी लिसनर्स 5250620000. आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस.

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: और चलिए इस वक्त ज्योति जी हमारा साथ दे रहे हैं शादो बनारस से ये गाना आपके नाम एंड फॉर ऑल द फैंस ऑफ जगजीत सिंह गोविंद जी आप भी हमारा साथ दे रहे हैं एंड वन ऑफ योर फेवरेट्स चलिए इसे डेडिकेट कर रहे हैं आपके लिए विशिंग यू अ वंडरफुल आफ्टरनून अ वंडरफुल टाइम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन कोशिश यही है हमारे लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं आपके इस समय को हम खास और स्पेशल बना सके मैं हूं परी आपके साथ शाम के 5 बजे तक ऑन रेडियो मनोरंजन

0: listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और वेल यहाँ पर सरिता जी हमारा साथ दे रही हैं, खाना बनाते हुए चाय की चुस्कियाँ एंजॉय कर रही हैं, उस पर बरसाती मौसम कहते हैं, गानों का लुत्फ उठा रही हूँ और साथ ही साथ इस दोपहर में ये जो गाने हैं एकदम परफेक्टली सेट हो रहे हैं। बस सरिता जी आपके चेहरे की मुस्कुराहट यही तो हमें चाहिए। सो वेल अभी के लिए जो गाना है डेडिकेट कर रहे हैं आपके नाम एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑन रेडियो मनोरंजन। आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5250620052506200 में हूँ परी आपके साथ शाम के 5 बजे तक।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. And some beautiful songs आपके नाम विजया जी साथ दे रही हैं आप भी, so thank you so much for your sweet message. चलिए अभी के लिए तो बस कोशिश यही है कि इन गानों के साथ आपका दिल बहल रहा है. आपके दिल को बहलाने कुछ प्यारे ट्रैक्स हम लेकर आए हैं ऑन रेडियो मनोरंजन. मैं हूं परी आपके साथ शाम के ठीक 5 बजे तक, और उसके बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी इन नई सोच एंड दिल से मिले दिल रात के 9 बजे तक. सो बस हमारे साथ कनेक्टेड रहिए आप. कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए हम चलाते रहेंगे ताकि आपके इस वेडनेसडे को हम बना सके एक खूबसूरत सा फन डे. मिड वीक में पहुंच चुके हैं हम और उसे बना रहे हैं खास इन प्यारे गीतों के साथ.

और चलिए दोस्तों यहां पर इसी गाने के साथ इट्स टाइम कि मैं आपसे लूं अलविदा, लेकिन मुलाकात होगी थोड़ी ही देर में 6:30 बजे आपके लिए नई सोच प्रोग्राम और 7 से लेकर 9 बजे तक दिलों की आवाज़ यहां पर कुछ प्यारे गीतों के साथ एक बार फिर मैं बनूंगी आपकी म्यूजिकल हमसफर ऑन रेडियो मनोरंजन। तो आज के लिए साथ रहेगा आपका और मेरा रात के 9 बजे तक, सो साथ दीजिए हमारा। अभी के लिए आपसे लूंगी विदा, मुलाकात होगी जल्द थोड़ी ही देर में, तब तक के लिए ये खूबसूरत सा ट्रैक हमारे सभी लिसनर्स के नाम।

0: दानं भोगो नाशस्त्रिसो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतेर भवति। अर्थात धन की तीन गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। जो न दान करता है और न स्वयं उपयोग करता है उसका धन नष्ट हो जाता है। श्रोताओं, यह श्लोक हमें सिखाता है कि धन को केवल इकट्ठा या संग्रह करके रखने से उससे कोई लाभ नहीं होता। यदि उसका सदुपयोग न किया जाए तो अंततः वह धन नष्ट हो जाता है। धनुर्धारी कर्ण ने अपने मूल्यवान कवच और कुंडल का भी दान कर दिया था, इसीलिए उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से संबोधित किया गया। उसी प्रकार राजा बलि ने विष्णु भगवान के वामन अवतार को 3 पग भूमि देने का वचन निभाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। यही सच्चा दान कहलाता है। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर अनकही एक कहानी नामक कार्यक्रम में विश्वानंद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। अपनी स्वरचित कहानी लेकर प्रोफेसर राज शेखर भी हमसे जुड़ गए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। तो देर न करते हुए चलिए सुनते हैं अनकही एक कहानी प्रोफेसर राज की जुबानी।
1: आपका हार्दिक आभार गुरु बिस्वा। नमस्कार प्रिय श्रोतागण, रेडियो की इन मधुर तरंगों पर गुरु बिस्वा के साथ मैं प्रोफेसर राज आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम अनकही एक कहानी में। भारतीय पुराणों और कथाओं में ऐसे अनेक चरित्र मिलते हैं जो हमें त्याग, दान, विनम्रता और धर्म का सच्चा अर्थ सिखाते हैं। इन कथाओं में केवल चमत्कार नहीं होते बल्कि जीवन को दिशा देने वाले गहरे संदेश छिपे होते हैं। हाँ श्रोतागण, आज की हमारी कहानी अनकही कहानी में ऐसी ही एक महान दानी और सत्यनिष्ठ राजा की कहानी है, राजा बलि की। राजा बलि केवल एक पराक्रमी राजा ही नहीं थे बल्कि वे अपने वचन, दानशीलता और प्रजा प्रेम के लिए भी प्रसिद्ध थे। लेकिन जब शक्ति और अहंकार धीरे धीरे जीवन में प्रवेश करने लगा तब स्वयं भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उन्हें धर्म और विनम्रता का वास्तविक मार्ग दिखाया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज अनकही एक कहानी में हम जानेंगे कि सच्ची महानता अधिकार में नहीं बल्कि विनम्रता, त्याग और वचन पालन में होती है। असुर राज बलि, पुराण प्रसिद्ध विष्णु भक्त, अप्रतिम योद्धा और सप्त चिरजीवियों में से एक हैं। वे विरोचन के प्रतापी पुत्र थे और वैरोचन साम्राज्य के सम्राट थे, जिसकी राजधानी महाबलीपुर थी। समुद्र मंथन के बाद जब देवासुर संग्राम छिड़ा तब बलि ने अपनी कुशल युद्ध नीति और असुरों की मायावी शक्तियों के बल पर देवताओं को परास्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने तीनों लोकों पर अस्थाई अधिकार करने के लिए विश्वजीत और 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान प्रारंभ किया और इसी क्रम में महाबलीपुर का मुख्य राज दरबार सजा हुआ था। विजय के संघनाद के बीच सैनिक तलवारें लहरा रहे थे और एक असुर सैनिक उसी समय आता है और कहता है, सम्राट वैरोचन महाबली राजा बलि की जय हो, त्रिलोकाधिपति की जय हो। सावधान, तीनों लोकों को विजित करने वाले महाराज बलि राजसभा को संबोधित करने जा रहे हैं।
0: मेरे वीर योद्धाओं, समुद्र मंथन के समय देवताओं ने जिस छल से रत्नों पर एकाधिकार जमाया था आज हमने उस अपमान का प्रतिशोध ले लिया है। इस देवासुर संग्राम में आपकी मायावी शक्तियों के सामने देवराज इंद्र की सेना टिक न सकी।
1: उसी राजदर

0: परिवार में सेनापति प्रहस्त भी मौजूद हैं। वे कहते हैं,
1: सत्य वचन महाराज, इंद्र रणभूमि छोड़कर भाग गए। धनपति कुबेर, यमराज और वरुण देव भी परास्त हो गए। आज स्वर्गलोक आपके चरणों में नतमस्तक है।
2: प्रहस्त, केवल शस्त्रों के बल पर जीता गया राज्य स्थायी नहीं होता। हमारे दादा परम वैष्णव प्रहलाद जी ने सिखाया है कि प्रजा का कल्याण ही राजा का सर्वोपरि धर्म है। हमें एक न्यायप्रिय शासक के रूप में जाना जाना चाहिए।
0: वहां मंत्री कालनेवी भी मौजूद हैं। वे कहते हैं,
3: महाराज, इंद्र कपटी हैं। वे पुनः अपनी सत्ता पाने के लिए त्रिदेवों की शरण में अवश्य जाएंगे।
1: इस असुर साम्राज्य की विजय को अस्थाई बनाने का क्या उपाय है राजा बलि?
2: मंत्री श्रेष्ठ, गुरुदेव शुक्राचार्य की प्रेरणा से मैंने निर्णय लिया है कि मैं नर्मदा नदी के तट पर विश्वजीत यज्ञ के बाद अब 100 अश्वमेध यज्ञों का महाअनुष्ठान प्रारंभ करूंगा।
0: उसी समय सेनापति प्रहस्त भी टोकते हुए कहते हैं,
1: 100 अश्वमेध यज्ञ? अहो भाग्य महाराज, यदि यह अनुष्ठान पूर्ण हो गया तो देवराज इंद्र का स्वर्ग पर सदा के लिए अधिकार समाप्त हो जाएगा।
2: हाँ प्रहस्त, इस 100वें यज्ञ के पूर्ण होते ही हमारी दानशीलता का प्रताप इतना बढ़ जाएगा कि स्वयं नियति भी हमारे अधीन होगी। नर्मदा का तट हमारी यज्ञशाला बनेगा। घोषणा कर दी जाए, उस यज्ञ मंडप में आने वाले किसी भी याचक को राजा बलि खाली हाथ नहीं लौटने देगा। जाओ, तैयारियां तीव्र कर दो, शीघ्र जाओ।
0: उसी समय मंत्री कालनेवी भी कहते हैं,
1: जैसी आपकी आज्ञा त्रिलोकाधिपति। हम अभी नर्मदा तट की ओर कूच करने की व्यवस्था करते हैं। महादानी राजा बलि की जय, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले सम्राट की जय।
0: और दूसरी तरफ महर्षि कश्यप का पावन आश्रम, देव माता अदिति भूमि पर बैठी अश्रु बहा रही हैं। महर्षि कश्यप कुटिया से बाहर आते हैं।
2: प्रिय अदिति, तुम इस तरह भूमि पर बैठकर विलाप क्यों कर रही हो? तुम्हारे इस घोर दुख का कारण क्या है?
0: रोते हुए महर्षि के चरणों में सिर रखकर देव माता अदिति कहती है,
3: हे स्वामी, मेरे पुत्र देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता आज स्वर्गलोक से निष्कासित होकर जंगलों और कंदराओं में छिपकर दिन काट रहे हैं।
2: प्रिय, शांत हो जाओ, सुख दुख समय का फेर है। राजा बलि इस समय अपने सत्य बल और असुर गुरु शुक्राचार्य के तपोबल से अजेय हो चुका है। उसने न्यायपूर्वक युद्ध जीता है।
3: न्यायपूर्वक स्वामी? असुरों ने मायावी शक्तियों के बल पर छल से देवताओं को परास्त किया है, आपको नहीं पता? अब वह असुर राज नर्मदा तट पर 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। यदि वह पूर्ण हो गया तो मेरे पुत्रों के लिए स्वर्ग के द्वार सदा के लिए बंद हो जाएंगे। स्वामी, सदा के लिए बंद हो जाएंगे, क्या एक माता का हृदय यह सहन कर सकता है स्वामी?
2: अदिति, तुम भूल रही हो कि बलि प्रहलाद का पौत्र है। वह कोई दुराचारी राजा नहीं, बल्कि परम दानी और विष्णु भक्त है। शस्त्र के बल पर उसे परास्त करना देवताओं के लिए असंभव है। उसके यज्ञों का कोई साधारण देव बल नहीं रोक सकता।
0: महर्षि कश्यप की बात सुनकर देव माता अदिति हाथ जोड़कर पुनः कहती है,
3: तो क्या देवताओं की माता होने का मेरा गौरव समाप्त हो गया? हे महर्षि, आप प्रजापति हैं, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरे पुत्रों को उनका स्वर्गलोक वापस मिल सके।
2: प्रिय अदिति, जब सारे मार्ग बंद हो जाते

0: आते हैं तब केवल साक्षात भगवान नारायण ही की शरण ही शेष रहती है। राजा बलि का सूक्ष्म अहंकार और देवताओं का कष्ट दोनों केवल भगवान विष्णु ही दूर कर सकते हैं।
1: मुझे बताइए स्वामी, मैं ऐसा क्या करूं कि प्रभु मेरी पुकार सुन सकें?
0: प्रिय, तुम्हें फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिनों तक केवल दुग्धाहार पर रहकर कठिन पयोव्रत का अनुष्ठान करना होगा। शुद्ध मन से तुम्हें महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करना होगा। यदि तुम्हारी भक्ति अटूट रही तो भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारे गर्भ से वामन रूप के अवतार लेकर देवताओं का कल्याण करेंगे।
2: महर्षि कश्यप की बात सुनकर देवमाता अदिति पुनः विचलित होकर कहती हैं, हे आरिपुत्र, मैं आज और इसी क्षण से इस परम कठिन पयोव्रत का संकल्प लेती हूँ। जब तक साक्षात नारायण मेरे गर्भ में नहीं आ जाते तब तक मैं इस तपस्या से पीछे नहीं हटूंगी। प्रभु अवश्य आएंगे।
0: तुम्हारा कल्याण हो देव माता, जाओ भगवान की आराधना में लीन हो जाओ।
2: और देवता अदिति कुटिया के भीतर प्रवेश करती हैं। पृष्ठभूमि में दिव्य ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप गूंजने लगता है। महर्षि कश्यप का आश्रम, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, कुटिया के भीतर से दिव्य प्रकाश पुंज बाहर आ रहा है। शंख दुंदुभी और वेद मंत्रों की गूंज से संपूर्ण वातावरण अलौकिक हो उठा है। महर्षि कश्यप कुटिया के बाहर व्याकुल और हर्षित मुद्रा में खड़े हैं। तभी कुटिया का द्वार खुलता है और साक्षात आदि पुरुष भगवान विष्णु श्रवण नक्षत्र के शुभ संयोग में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर अदिति और कश्यप भाव विह्वल होकर स्तुति करने लगते हैं। प्रभु मुस्कुराते हुए तत्काल एक छोटे कांतिवान बटुक बौने ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं।
0: अहो भाग्य, जगत के पालनहार घट घट वासी श्रीहरि साक्षात प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, आपकी जय हो, आपकी माया अनंत है, जय हो प्रभु।
2: वामन रूपी बालक को अत्यंत वात्सल से निहारते हुए देव माता अदिति भी कहती है, हे मेरे नारायण, मेरी 12 दिनों की कठिन पयोव्रत साधना सफल हुई। आपने एक माता की करुण पुकार सुनी और मेरे गर्भ से जन्म लेकर इस दासी को धन्य कर दिया। हे बालमुकुद, आपको कोटि कोटि नमन। महर्षि कश्यप और देव माता अदिति की बात सुनकर बाल सुलभ मधुर और गंभीर वाणी में भगवान वामन, जो कि बटुक रूप में हैं, बौने रूप में हैं, वे कहते हैं, माता अदिति और तात कश्यप, आपकी निष्काम भक्ति और तपस्या के अधीन होकर ही मैंने यह वामन रूप धारण किया है। माता, आपके आंसुओं ने मुझे वैकुंठ से यहाँ आने पर विवश किया। अब आप धैर्य रखें, आपके पुत्रों का कष्ट दूर करने का समय आ गया है। भगवान वामन की बात सुनकर महर्षि कश्यप कहते हैं,
0: हे पुत्र, आपकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान है। इस पावन विजया द्वादशी के दिन आपके जन्म लेते ही दिशाएं प्रसन्न हो गई है, नदियों का जल निर्मल हो गया है और देवताओं के कष्टों का अंत निकट दिखाई दे रहा है।
2: मुस्कुराते हुए भगवान वामन कहते हैं, तात, अब मुझे आज्ञा दें, मैं इसी क्षण नर्मदा नदी के तट की ओर प्रस्थान करूंगा, जहां असुरराज बलि अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। मैं भिक्षा के रूप में उससे देवताओं का खोया हुआ वैभव वापस मांग लाऊंगा। आशीर्वाद देते हुए देव माता अदिति कहती हैं, जाओ पुत्र, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, तुम्हारी

0: यह बाल लीला असुरों के अहंकार को नष्ट करे और धर्म की पुनर्स्थापना करे।
1: गली गली तेरी लाज जली।

0: नर्मदा नदी का पावन तट, भृगु कच्छ क्षेत्र, राजा बलि का सुसज्जित स्वर्णमयी यज्ञ मंडप, वेद मंत्रों की गूंज और वेदियों से उड़ता पावन धुआं, राजा बलि और आचार्य शुक्राचार्य ऋषियों के साथ यज्ञ की वेदी पर आहुतियां दे रहे हैं। अचानक मुख्य द्वार पर अलौकिक प्रकाश फैलता है और प्रहरी घबराता हुआ राजा बलि के पास आकर कहता है, महाराज की जय हो। यज्ञशाला के मुख्य द्वार पर एक अत्यंत विलक्षण घटना घटी है महाराज, एक विलक्षण घटना घटी है।
1: शांत हो जाओ प्रहरी, इस पावन यज्ञशाला में कैसा भय, बताओ क्या बात है।
0: महाराज, द्वार पर एक अत्यंत लघु कद के बाल ब्राह्मण पधारे हैं। उनके हाथ में दंड, छत्र और कमंडल है। उनका शरीर भले ही छोटा है, परंतु उनके मुख से ऐसा सूर्य जैसा तेज निकल रहा है कि सैनिकों की आंखें चौंधिया गई हैं।
1: बाल ब्राह्मण और ऐसा अलौकिक तेज। गुरुदेव, ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं सूर्यदेव हमारे 100वें अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण कराने पधारे हैं। मुझे स्वयं आगे बढ़कर उनका स्वागत करना होगा।
0: तभी मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान

0: वामन का प्रवेश होता है। उनके मस्तक पर जटाएं, गले में मृग चर्म और योग्योपवित सुशोभित है। उन्हें देखकर भृगुवंशी ऋषि मंत्र पाठ रोककर खड़े हो जाते हैं। ऋषिगण एक स्वर में कहते हैं, अहो रूपम, अहो ब्रह्म तेज, धन्य है यह बालक। तभी श्रद्धा से साष्टांग प्रणाम करते हुए राजा बलि कहते हैं,
1: हे विप्रभर, वैरोचन पुत्र बलि का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपके चरणों के स्पर्श से मेरी यज्ञशाला पवित्र होगी। आइए इस स्वर्ण आसन को सुशोभित कीजिए।
0: बलि स्वयं वामन देव के चरण धोकर उस जल को अपने मस्तक पर छिड़कते हैं। वामन देव आसन ग्रहण करते हैं और कहते हैं, असुर राज बलि, आपका कल्याण हो। आपके पूर्वज प्रहलाद जी जैसी ही पवित्रता आपकी यज्ञशाला में बिखेर रही है। ब्राह्मणों का आदर करने वाले राजा के राज में कभी अमंगल नहीं होता।
1: हे बाल ब्राह्मण, आपकी अवस्था छोटी है, परंतु आपकी वाणी में वेदों का ज्ञान झलकता है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है मानो साक्षात धर्म ही मेरे द्वार पर आया है।
0: राजा बलि की बात सुनकर भगवान वामन कहते हैं, राजन, मैं तो केवल एक ब्रह्मचारी बटुक हूँ जो आपकी दानवीरता की गाथा सुनकर यहाँ चला आया। सुना है कि महाराज बलि के द्वार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता।
1: आपने सत्य सुना है विप्रवर, आज मेरा 100वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। आप संकोच त्याग कर अपनी इच्छा प्रकट करें। क्या आपको हजारों दुधारू गायें, प्रचुर स्वर्ण, बहुमूल्य रत्न, सुंदर महल या उपजाऊ भूमि का विशाल खंड चाहिए? मांगिए ब्राह्मण, सुकुमार बेझिझक मांगिए।
0: राजा बलि की उदारता देखकर भगवान वामन मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन बलि, आपकी उदारता सचमुच वैसी ही है जैसा मैंने सुना था, परंतु एक संतोषी ब्राह्मण के लिए संसार के वैभव का कोई मूल्य नहीं होता। मुझे बड़े राज्यों या स्वर्ण के भंडारों की कोई लालसा नहीं है।
1: तो फिर आपको क्या चाहिए देव? आप जो भी मांगेंगे राजा बलि उसे अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी पूरा करेगा, यह मेरा वचन है।
0: इसी बीच जब राजा बलि और भगवान वामन के बीच एक मधुर संवाद चल रहा होता है, तो एक कोने में खड़े आचार्य शुक्राचार्य वामन देव को अत्यंत सूक्ष्मता से देखते हैं और गहरी चिंता में डूब जाते हैं और फिर स्वयं धीरे से अपने मन ही मन फुसफुसाते हुए कहते हैं, यह बालक साधारण नहीं है, इसका तेज तो साक्षात वैकुंठपति नारायण जैसा है। यह रूप, यह चाल, ओह, कहीं देवताओं ने कोई चाल तो नहीं चली। मुझे बलि को रोकना होगा इससे पहले कि वह कोई आत्मघाती संकल्प ले ले। शुक्राचार्य तेजी से बलि की ओर बढ़ते हैं, जबकि वामन देव शांत मुद्रा में बलि की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। यज्ञ मंडप का एक एकांत कोना है। आचार्य शुक्राचार्य व्याकुलता और क्रोध में राजा बलि को खींचते हुए अपनी ओर लाते हैं और तीखे स्वर में बोलते हैं, बलि, रुक जाओ, तुम किस विनाशकारी मार्ग पर चल रहे हो? तुरंत उस बाल ब्राह्मण को दान देने का विचार त्याग दो।
1: गुरुदेव, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरे 100वें अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं एक तेजस्वी ब्राह्मण कुमार याचक बनकर आया है। ऐसे समय दान न देना साक्षात अधर्म होगा गुरुदेव।

0: राजा बलि की बात सुनकर आचार्य शुक्राचार्य क्रोधित होकर बोलते हैं,
1: मूर्खता मत करो बलि, वह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि साक्षात देवताओं के रक्षक भगवान विष्णु हैं, जो तुम्हें छलने वामन रूप में आए हैं।
2: हैं? क्या साक्षात नारायण स्वयं मेरे यज्ञ में पधारे हैं? हे गुरुदेव, तब तो मेरे इस वंश का उद्धार हो गया।
0: आचार्य शुक्राचार्य कहते हैं,
1: तुम्हारी इस भावुकता पर मुझे तरस आता है, वह कपट वेश में आए हैं ताकि तुम्हारा यज्ञ भंग कर सके। यदि तुमने तीन पग भूमि का संकल्प दे दिया तो विराट रूप धरकर दो ही पगों में तुम्हारी पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल नाप लेंगे। तुम दरिद्र बन जाओगे राजा बलि, तुम दरिद्र बन जाओगे।
2: गुरुदेव, आप हमारे हितैषी हैं, परंतु तनिक विचार कीजिए। जिस नारायण के लिए ऋषि मुनि युगों तक तपस्या करते हैं, वही आज मुझसे भिक्षा मांग रहे हैं। यदि मैं सर्वस्व खोकर भी साक्षात ईश्वर का दाता बन सकूं, तो इससे बड़ा वैभव और क्या होगा?
1: राजनीति की बातें करो बलि, राजनीति की बातें करो। मैं दैत्यों का कुल गुरु हूं, मैं आज्ञा देता हूं कि तुम संकल्प से पीछे हट जाओ। शास्त्रों के अनुसार कुल की रक्षा के लिए वचन बदलना पाप नहीं है।
2: क्षमा करें आचार्य देव, यह नीति प्रह्लाद के पौत्र के लिए नहीं है। विरोचन का पुत्र संकल्प लेकर पीछे नहीं हट सकता। यदि विष्णु मुझे नष्ट करने आए हैं, तो मैं उनके हाथों नष्ट होने को भी अपना अहोभाग्य समझूंगा।
0: क्रोध से उंगली उठाते हुए आचार्य शुक्राचार्य कहते हैं,
1: तो तुम गुरु के वचनों का तिरस्कार करोगे? याद रखो, यदि तुमने उस कपटी विष्णु को दान दिया, तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम तत्काल अपनी समस्त राजलक्ष्मी और वैभव से च्युत होकर धूल में मिल जाओगे। शुक्राचार्य यह बोलकर क्रोध से कांपने लगते हैं और यज्ञ मंडप से वेद मंत्रों की ध्वनि तीव्र हो जाती है और एक सोने के आसन पर वामन देव बैठे हैं। राजा बलि और आचार्य शुक्राचार्य चर्चा समाप्त कर लौट आते हैं और बहुत ही विनीत भाव से राजा बलि कहते हैं,
2: हे ब्राह्मण कुमार, क्षमा करें, मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे कुछ नीतिगत परामर्श दिए थे, अब मैं आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए तत्पर हूं।
0: भगवान वामन मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, कोई बात नहीं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कुल गुरु शुक्राचार्य जी आपकी दानशीलता से चिंतित हैं। यदि आपके मन में कोई संशय हो, तो आप अपने वचन से पीछे हट सकते हैं।
2: नहीं विप्रवर, ऐसा कदापि न कहें। प्रह्लाद के वंशज याचक को संशय में नहीं डालते। आपकी मांग को पूरा करना मेरा सौभाग्य होगा।
0: उसी क्षण आगे बढ़कर कड़े स्वर में आचार्य शुक्राचार्य कहते हैं,
1: ठहर जाओ बलि, तुम महापाप की ओर बढ़ रहे हो। हे कपट वेशकारी बटुक, तुम इस दानी राजा को छलने आए हो। मैं अंत समय तक चेतावनी दे रहा हूं, संकल्प का जल हाथ में मत लेना, अन्यथा पाताल लोक में ढकेल दिए जाओगे।
2: पूज्य गुरुदेव, यदि यह बालक स्वयं सृष्टि के नियंता भगवान विष्णु है, तो क्या मुझे हाथ पीछे खींचना चाहिए? हरि स्वयं याचक है और बलि दाता है। इस अलौकिक दृश्य के सामने त्रिलोक के साम्राज्य का मूल्य क्या होगा?
1: बलि, तुम मर्यादा भूल रहे हो। राजा का पहला कर्तव्य अपनी राजलक्ष्मी की रक्षा करना होता है। इस संकल्प को अस्वीकार करो।
2: क्षमा करें आचार्य, यदि दान देते देते मेरा राज्य छिन जाए या मुझे पाताल की यातनाएं भी सहनी पड़े, तो मैं सत्य के पीछे से नहीं हटूंगा।

0: मैं विष्णु के हाथों छले जाने को भी अपना मोक्ष समझता हूँ।
1: शुक्राचार्य सांप का जल भूमि पर फेंक देते हैं और यज्ञशाला में हाहाकार मच जाता है, परंतु बलि शांत भाव से गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। राजा बलि कहते हैं,
0: आपका शाप शिरोधार्य है गुरुदेव, अब मेरे भीतर का सूक्ष्म अहंकार भी समाप्त हो गया।
1: बलि सोने का कमंडल उठाकर वामन देव के सामने आते हैं।
0: हे बाल ब्राह्मण, गुरु के शाप के बाद भी बलि का सत्य अटल है। मैं इस पावन नर्मदा जल को हाथ में लेकर संकल्प करता हूँ कि आपकी मांगी हुई 3 पग भूमि मैं आपको सहर्ष दान करता हूँ। यह जल, अग्नि और संपूर्ण ब्रह्मांड साक्षी है।

0: राजा बलि संकल्प का जल वामन देव के चरणों में छोड़ देते हैं। पूरी पृथ्वी कांपने लगती है और बादलों में गड़गड़ाहट होने लगती है। वामन देव के चेहरे पर दिव्य मुस्कान फैल जाती है और ये सारी परिस्थिति को देखकर राजा बलि कहते हैं,
1: हे ब्राह्मण कुमार, मैंने दान का संकल्प पूरा कर दिया है। अब आप बिना संकोच के अपनी 3 पग भूमि नापने की कृपा करें।
0: राजा बलि के प्रस्ताव को सुनकर भगवान वामन कहते हैं, राजन बलि, तुम्हारी सत्यनिष्ठा देखकर मेरा मन हर्षित हुआ है। तुम सचमुच प्रह्लाद के सच्चे वंशज हो।
1: विप्रवर, आप जैसी अलौकिक कांति वाले बालक ने मुझसे केवल 3 पग भूमि मांगी।

0: स्त्रीलोकाधिपति से इतनी तुच्छ याचना, मुझे संकोच हो रहा है।
1: राजन, जिसके मन में संतोष नहीं उसे पूरी पृथ्वी भी कम पड़ेगी। मुझे अपनी वेदी और संध्या वंदन के लिए केवल 3 पग भूमि ही चाहिए, जो मेरी काया के अनुरूप हो।
0: जैसे आपकी इच्छा, मेरी पूरी वसुधा आपकी है। कृपया अब विलंब न करें और भूमि ग्रहण करें।
1: ठीक है राजन, तो अब मैं पग बढ़ाता हूं। सजग होकर देखो कि ब्राह्मण के 3 पग कितने बड़े हो सकते हैं। उसी समय घबराकर मंत्री कालनेमी कहते हैं, मंत्रियों, तनिक देखो इस बालक की आंखों का तेज। हवाएं रुक गई हैं और भूमि कांप रही है। विस्मय से राजा बलि भी कहते हैं,
0: हे ब्राह्मण देव, आपके शरीर से यह कैसी अलौकिक किरणें फूट रही हैं।
1: अचानक भारी गर्जना होती है। बटुक वामन का शरीर विशाल होने लगता है। उनका पैर भूमि पर और मस्तक आकाश की ओर बढ़ जाता है और सभी सभासद भय से चिल्लाने लगते हैं, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, यह बालक तो साक्षात त्रिलोकीनाथ का रूप ले रहा है। भक्ति से घुटनों के बल बैठकर राजा बलि प्रार्थना करने लगते हैं,
0: हे प्रभु, आपकी जय हो, यह आपका कैसा विराट रूप है।
1: भगवान वामन अपने पहले पग से संपूर्ण पृथ्वी और दूसरे पग से अंतरिक्ष व स्वर्गलोक को नाप लेते हैं और अपने विराट रूप में भगवान कहते हैं, राजन बलि, देखो 2 ही पगों में तुम्हारा यह वैरोचन साम्राज्य और त्रिलोक समाप्त हो गया। अब बताओ, मेरा 3रा पग अभी बाकी है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, मैं इसे कहाँ रखूं? अन्यथा तुम्हें असत्य का भागी बनना होगा। तभी तलवार खींचकर सेनापति प्रहस्त कहता है, महाराज, यह कैसा छल है, 2 ही कदमों में सब कुछ छीन लिया। आज्ञा दीजिए, हम अपनी असुर सेना के साथ इन पर आक्रमण कर देते हैं।
0: ठहर जाओ प्रहस्त, अस्त्र शांत करो। जो साक्षात चराचर जगत के स्वामी है उनसे युद्ध कैसा? यह छल नहीं, साक्षात हरि मेरे सामने खड़े हैं।
1: विराट रूप में भगवान वामन कहते हैं, राजन बलि, व्यर्थ की चर्चा छोड़ो। यदि तुम 3रा पग रखने का स्थान नहीं दे सकते तो तुम्हें वचन भंग के कारण नरक का भागी बनना पड़ेगा।
0: हे जगत के स्वामी, यदि 2 पगों में मेरा सारा राज्य समा गया है तो नीति के आधार पर विचार कीजिए। धन या साम्राज्य कभी उसके स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। त्रिलोक आपका हुआ, परंतु इस त्रिलोक का राजा अभी भी अछूता है।
1: तुम क्या कहना चाहते हो, स्पष्ट कहो।
0: हे अच्युत, साम्राज्य से बड़ा सम्राट होता है। लीजिए प्रभु, आपका यह 3रा और अंतिम पग मेरे इस मस्तक पर रख दीजिए। मैं अपना शरीर, प्राण और अहंकार आपके चरणों में समर्पित करता हूं।
1: उसी समय आंखों में आंसू भरकर आचार्य शुक्राचार्य कहते हैं, अद्भुत, अद्भुत बलि, अद्भुत, तुमने आज असुर कुल को धन्य कर दिया। जिस सत्य

0: व्यक्ति के लिए मैंने तुम्हें श्राप दिया, तुमने उसे भगवान के चरणों का प्रसाद बना दिया। और प्रसन्न होकर पुनः चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और अपना चरण बलि के मस्तक पर रखते हुए कहते हैं, धन्य हो राजा बलि, धन्य हो, गुरु का श्राप और सर्वस्व छीन जाने का भय भी तुम्हें सत्य से डिगा नहीं सका। तुमने स्वयं को दान करके ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दान किया है।
1: प्रभु, आपकी कृपा के सामने मेरा यह दान तो तिनके के समान है। अब आपकी जैसी आज्ञा हो।
0: बलि को गले लगाते हुए भगवान वामन कहते हैं, बलि, तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें सप्त चिरजीवियों में स्थान देता हूँ। मैं तुम्हें स्वर्ग से भी श्रेष्ठ पाताल का अधिपति बनाता हूँ, जहाँ कोई दुख या पराजय तुम्हें छू नहीं सकेगी।
1: हे नारायण, मैं सहर्ष पाताल जाऊँगा, परंतु क्या वहाँ मुझे आपके दर्शन प्राप्त नहीं होंगे?
0: भगवान वामन आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, नहीं बलि, मैं तुम्हारी इस निष्काम भक्ति के ऋण को चुकाने के लिए गदा धारण कर सदा के लिए तुम्हारे पाताल लोक के मुख्य द्वार पर तुम्हारा द्वारपाल बनकर पहरा दूंगा। जब भी तुम आंखें खोलोगे, मुझे अपने सम्मुख पाओगे। चरणों में गिरकर राजा बलि कहते हैं,
1: हे प्रभु, दाता को अपने याचक बना दिया और स्वयं ईश्वर होकर मेरे द्वारपाल बन गई। आपकी यह लीला धन्य है प्रभु, धन्य है। जय हो प्रभु, वामन अवतार की जय हो, जय हो।
0: और इसी के साथ आकाश से देवगण पुष्प वर्षा करते हैं। शंखनाद के बीच राजा बलि ससम्मान पाताल लोक की ओर प्रस्थान करते हैं और भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए उनके पीछे द्वारपाल के रूप में चलने लगते हैं।

0: तो श्रोताओं, अभी अभी आपने एक बहुत ही सुंदर कहानी का आनंद उठाया, उसका रसास्वादन किया, जिसका शीर्षक है राजा बलि। और राजा बलि के बारे में आपने यह भी सुना कि उन्होंने महादान किया, और एक प्रकार से हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और संदेश के रूप में प्रोफेसर राज्य भी हमारे समक्ष कुछ विचार रख रहे हैं, हम कृपया उनको सुनते हैं।
1: राजा बलि की कथा हमें यह गहरा संदेश देती है कि शक्ति और वैभव तभी सार्थक हैं जब उनमें विनम्रता और धर्म का संतुलन हो।
0: जी एकदम।
1: राजा बलि अत्यंत दानी, पराक्रमी और प्रजावत्सल थे। उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों तक अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था।
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर सामर्थ्य का गर्व उत्पन्न होने लगा। भगवान विष्णु ने 52 अवतार लेकर उनकी परीक्षा ली। जब वामन ने केवल 3 पग भूमि मांगी तो राजा बलि ने बिना संकोच उसे स्वीकार कर लिया। और जब भगवान ने अपने विराट रूप से संपूर्ण सृष्टि को नाप लिया, तब राजा बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया।
0: जी।
1: यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा दान वही है जिसमें अहंकार ना हो।
0: एकदम।
1: वचन का पालन मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है और विनम्रता ही वास्तविक महानता का आधार है। राजा बलि का त्याग यह दर्शाता है कि धर्म का मार्ग कभी कभी परीक्षा लेता है।
0: जी।
1: लेकिन अंततः वही मनुष्य को अमर बना देता है।
0: बिल्कुल।
1: तो गुरु विश्वा, मैं आपसे इसी से संबंधित प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ।
0: जी अवश्य।
1: कि पुत्र के रूप में आपका अपने माता पिता के प्रति सबसे बड़ा महादान क्या होगा?
0: पुत्र के रूप में अपने माता पिता के प्रति जो मेरा धर्म होगा वह होगा सेवादान। क्योंकि देखिए, मैं अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहा, सभी संतान ऐसे रहते हैं 9 महीने।
1: बिल्कुल।
0: और 9 महीने एक बच्चे का पालन करना आसान नहीं होता।
1: बिल्कुल।
0: बहुत कठिन होता है।
1: जी।
0: आप सोचिए, रात दिन उसकी रक्षा करना, पेट में है उसकी देखरेख करना, देखभाल करना, यह माँ ही समझती है।
1: जी।
0: ये आसान बात नहीं होती।
1: माँ समझती है और पिता की छत्रछाया
0: और
1: होती
0: पिता की छत्रछाया में ये सब होता है। तब उसके बाद हमारा जन्म होता है, संतान उत्पत्ति होती है, और परवरिश में भी, जैसे बोलते हैं अपब्रिंगिंग, उसमें भी माता पिता का योगदान रहता है। और देखते हैं अंत में, जब वही माता पिता वृद्धावस्था में होते हैं, वृद्ध होने की स्थिति में से गुजरते हैं,
1: जी।
0: तब बहुत से ऐसे बच्चों को मैंने देखा है, वे ध्यान नहीं देते हैं अपने माता
1: जी
0: पिता के प्रति, उनका ध्यान नहीं होता है। तो मैं यह अनुरोध करता हूँ उन बच्चों से कि वृद्धावस्था में अपने माता पिता की देखरेख करें।
1: जी बिल्कुल।
0: अपनी सेवा प्रदान करें, और यही सबसे बड़ा दान होगा बच्चों के लिए। तो सेवा दान मेरे लिए सबसे बड़ा दान है माता पिता के प्रति।
1: जी। और जो आज नवजुवक हैं, कल वे वृद्ध होंगे।
0: जी हाँ।
1: और कल्पना करें कि यदि वृद्ध होने पर वही उनके साथ भी दोहराया जाएगा।
0: एकदम।
1: यदि नवजुवक उस तरह से सोचें कि मैं भी वृद्ध होऊंगा, यदि मेरे बच्चे मेरे साथ वही दोहराएंगे जो अपने माँ पिता के साथ दोहरा रहा हूँ।
0: हाँ।
1: तो स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे कि हम अपने माँ पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को समझेंगे, और यही हमारा सेवादान महादान होगा।
0: यही हमारा कर्तव्य भी है।
1: जी।
0: बहुत से लोगों को हम देखते हैं वृद्धों को होम भेज देते हैं।

0: जी,
1: लेकिन वो होम असली होम नहीं होता,
0: असली होम नहीं।
1: हाँ, घर तो अपना घर स्वर्ग जैसा होता है, उन्हें घर पर ही रखिए, समय निकालिए, काम के लिए भी समय होता है, लेकिन माता पिता की देखरेख करना भी अवश्य बहुत महत्वपूर्ण है।
0: तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया और साफ दिखता है कि आपके पास जीवन का एक ऐसा अनुभव है जिससे आप हमारे श्रोतागण को परिचित भी कराते हैं। इस बार की जो लोकोक्तियां हैं भोजपुरी में, जेकरा हाथ में कमाई ओकरा मुंह में मिठाई।
1: जी,
0: फिर से सुन लीजिए, जेकरा हाथ में कमाई ओकरा मुंह में मिठाई। इस पर जो है हमारे श्रोतागण विचार कीजिएगा, हमें इसका उत्तर भी आप मेल कर सकते हैं। हिंदी में जो लोकोक्ति है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, हिंदी में फिर से सुन लीजिए, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। पिछली बार जो लोकोक्तियाँ आपसे पूछी गई थी उसका अर्थ गुरु बिस्वा बताएंगे। भोजपुरी में जो लोकोक्ति थी, जितना बोलब तितना खोलब।
1: जी, इसका अर्थ है जितना बोलोगे उतना राज खुल जाएगा।
0: जी, बहुत बढ़िया। और हिंदी में जो लोकोक्ति पूछी गई थी, बाप न मारे मेढकी बेटा तीरंदाज।
1: जी हाँ, इसका भावार्थ है छोटे का बड़े से आगे बढ़ जाना। श्रोताओं, इस लोकोक्ति पर आधारित एक छोटी सी कहानी मैंने लिखी है, कृपया इसे सुने। रामू नाम का एक साधारण किसान किसी गांव में रहता था, जो बहुत ही विनम्र और दयालु था। वह कभी किसी छोटे जीव को भी बिना कारण नहीं सताता था। उसका बेटा पढ़ लिखकर तीरंदाजी सीखने शहर गया। कड़ी मेहनत और सतत अभ्यास से वह इतना कुशल बना कि बड़े बड़े योद्धाओं को भी पराजित कर दिया और प्रसिद्ध तीरंदाज बन गया। गांव लौटने पर लोग आश्चर्य से बोली, अरे यह तो उसी साधारण किसान का बेटा है। तभी किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा, बाप न मारे मेढकी बेटा तीरंदाज। इस कहानी से यही सीख मिलती है श्रोताओं, कि गरीब परिवार या छोटे से घर से भी महान प्रतिभा, ग्रेट टैलेंट जन्म ले सकती है।
0: जी, हर बार की भांति लोकोक्ति के माध्यम से सुंदर कहानी रचने और हमारे प्रिय श्रोतागण को सुनाने के लिए हृदय से गुरु बिस्वा आपका आभार।
1: धन्यवाद।
0: प्रिय श्रोतागण, हर युग में ऐसे लोग होते हैं जो अपने सत्य दान और वचन पालन से समाज के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने त्याग, सेवा या विनम्रता से आपको प्रभावित किया हो? क्या आपने कभी किसी की सहायता बिना किसी स्वार्थ के की है, या किसी परिस्थिति में अपने वचन को निभाने के लिए संघर्ष किया है? अन कहीं एक कहानी आपको आमंत्रित करता है अपनी ऐसी प्रेरक कहानियां हमें लिखकर भेजने के लिए, जो त्याग, दान, सत्य और मानवीय मूल्यों से जुड़ी हों। आपकी चुनी हुई कहानियां हमारे रेडियो कार्यक्रम में प्रसारित की जाएंगी और आगे चलकर एक पुस्तक का हिस्सा भी बनेंगी। तो आइए हम अपने भीतर विनम्रता, सेवा और धर्म का दीप जलाएं और लिख डालें अपनी अनकही कहानी, जो किसी और के जीवन में भी प्रेरणा का प्रकाश भर सके। अपनी रचनाएं professorrajshekhar@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। हमसे जुड़िए, सुनते रहिए, लिखते रहिए, क्योंकि आपकी एक सच्ची कहानी किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राजेन, सब महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। श्रोताओं, कहा गया है, शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता दस सहस्रेषु दाता भवति वानवा। अर्थात सैकड़ों में कोई एक वीर होता है, हजारों में कोई एक विद्वान होता है, और 10,000 में शायद ही कोई एक सच्चा दानी होता है। कहने का यह तात्पर्य है कि सच्चा दानवीर अत्यंत दुर्लभ होता है, क्योंकि दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं बल्कि त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। सच्चा दान धन या प्रसिद्धि पर नहीं बल्कि करुणा और विकट परिस्थिति में त्याग पर आधारित होता है। महान दान वही है जो कोई देख ना रहा हो फिर भी

किया जाए। श्रोताओं, कहा भी गया है, हस्तस्य भूषणम दानम, हाथों का वास्तविक आभूषण दान है। हमें ईश्वर ने दो हाथ दिए हैं, सत्कर्म करने के लिए, धनोपार्जन करने के लिए और निस्वार्थ भाव से दान करने के लिए। प्रिय श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। अब विश्वानंद और प्रोफेसर राज को

0: नमस्कार आप सभी को, समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले चलिए जानते हैं आज की सुर्खियां। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और वैश्विक आर्थिक दबाव के बीच मॉरिशस में रिपो रेट यानी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई है। बैंक ऑफ मॉरिशस की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने इसमें 0.25% की वृद्धि करते हुए इसे 4.50% से बढ़ाकर 4.75% कर दिया है। मॉरिशस में 2021 से 2025 के बीच 650 से अधिक किशोरों को नशीली पदार्थों से जुड़ी समस्याओं के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती करना पड़ा। राष्ट्रसभा में कल मंत्री अविनाश रामतोहल ने कहा कि ये बढ़ती प्रवृत्ति गंभीर चिंता का विषय है और इसके लिए अधिक लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। प्रकृति के संतुलन में मधुमक्खियों की भूमिका बेहद अहम। आज विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कृषि उद्योग मंत्रालय ने रेजी में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया, जहां मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारत में भीषण गर्मी, उत्तर से लेकर मध्य भारत तक सूरज जैसे आग बरसा रहा है। दिल्ली में तापमान 44 डिग्री तक पहुँच गया है। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में बढ़ते दबाव के बीच मॉरिशस में ब्याज दरों में बढ़ोतरी लाई गई है। बैंक ऑफ मॉरिशस की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने रिपो रेट में 0.25% की वृद्धि करते हुए इसे 4.50% से बढ़ाकर 4.75% कर दिया है। समिति का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात, खासकर मध्य पूर्व संकट के संभावित आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए मॉरिशस अपनी तैयारियां तेज कर रहा है। एसामग्ला की आगामी समीक्षा से पहले बालाक्लावा में एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। निजी क्षेत्र, सरकारी संस्था और नियामक विभाग ने मिलकर इस बात पर चर्चा की कि कानून सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे बल्कि जमीनी स्तर पर भी उसके ठोस परिणाम दिखाई दे। दासा पलासोमी, यचना मिश्रा।
1: इस अमलाक द्वारा किए जाने वाले पारस्परिक मूल्यांकन के करीब आने के साथ उम्मीदें मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित हैं कि स्थानीय संस्थान मनी लॉन्डरिंग और आतंकवाद की फाइनेंसिंग के खिलाफ लड़ाई में वास्तविक प्रभावशीलता दिखाने में कितने सक्षम हैं। प्रभावशीलता केवल सरकार के प्रयासों से हासिल नहीं की जा सकेगी बल्कि इसके लिए सभी संबंधित पक्षों को एक साथ लाना होगा। तैयारी के लिए क्या करना चाहिए ताकि कानून का सही तरीके से पालन किया जाए जिनसे ठोस परिणाम सामने आएंगे। सभी देशों के लिए परीक्षा कठिन है क्योंकि इस बार प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा रहा है। क्या प्रणाली प्रभावी तरीके से काम कर रही है या नहीं। पिछले मूल्यांकन के बाद से कई नई अपेक्षाएं जोड़ी गई हैं और 7 देशों पर मूल्यांकन किए जा रहे हैं जो ये दिखाते हैं कि मॉरिशस को कैसी तैयारी करनी पड़ेगी। इस बैठक में अपेक्षित ठोस परिणामों पर जोर दिया गया, जाँच, सजा, निगरानी और सुशासन। मकसद है ये समझाना कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार क्या कर रही है, नियामक संस्थाओं को कौन सी अपेक्षाएं हैं, 2027 के अगले मूल्यांकन के लिए कौन सी तैयारियां बाकी हैं। अटर्नी जनरल गाविन ग्लोवर के अनुसार यह मूल्यांकन पूरे देश से जुड़ा हुआ है और सरकार के लिए एक राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय है। ये मात्र फैटएफ की शर्तों को पूरा करने का सवाल नहीं। चुनौतियां बढ़ रही हैं, रोज बदल रही हैं। वर्चुअल परिसंपत्तियां रोज विकसित

0: हो रही हैं और उनके गलत प्रयोग के खिलाफ संघर्ष इतना आसान नहीं। एक जिम्मेदार देश होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम जनता, संस्थाओं और अर्थनीति को इन नए वित्तीय अपराधों से बचाएं। समय सीमा नजदीक आने के साथ ही तैयारियों और सक्रियता में तेजी आ रही है।
1: और कुछ समय पहले हम इसकी चर्चा कर रहे थे, मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में बढ़ते दबाव के बीच मॉरिशस में ब्याज दरों में बढ़ोतरी। बैंक ऑफ मॉरिशस की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने रिपो रेट में 0.25% की वृद्धि लाई है। समिति का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण ऐसा करना पड़ा है।
2: There was consensus within the MPC that raising the key rate by 25 basis points was best aligned with the bank's mandate of price stability and orderly and balanced economic development. The MPC wishes to emphasize that the decision to raise rates is a calibrated response intended to reinforce price stability at a time of elevated external risk while maintaining support for sustainable economic growth over the medium term. The MPC will continue to closely monitor the evolution of the Middle East conflict and its spillovers to global energy markets, supply chains, financial conditions, and domestic price dynamics. Monetary policy decisions will remain data-driven and will continue to be guided by evolving inflation dynamics, domestic economic conditions, financial market developments, and the external environment.
1: खबरों को हम जारी रखते हैं। डिजिटल लेन देन को अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सभा में कल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट बिल पर बहस हुई। मंत्री अविनाश राम दोहल ने कहा कि इस संशोधन के जरिए इलेक्ट्रॉनिक लेन देन से जुड़े कानूनी ढांचे को मजबूत करने के साथ उपयोगकर्ताओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल को प्रस्तुत किया। मॉरिशस में 2021 से 2025 के बीच 650 से अधिक किशोरों को नशीले पदार्थों से जुड़ी समस्याओं के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती कराना पड़ा है। राष्ट्रीय सभा में एक प्रश्न के जवाब में मंत्री अविनाश राम दोहल ने कहा कि ये बढ़ती प्रवृत्ति गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है और इसके लिए अधिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में नादक माध्यमिक स्कूलों के छात्रों में सिंथेटिक ड्रग्स के सेवन पर एक विस्तृत अध्ययन करने की तैयारी कर रहा है।
3: These figures indicate a concerning upward trend in recent years.
0: ये आंकड़े दिखाते हैं कि स्थिति कितनी बिगड़ गई। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल द्वारा Prevalence of Determinants of Synthetic Drugs Among Secondary Students in Mauritius विषय पर एक अध्ययन चलाया जाएगा, स्थानीय स्तर पर खतरा, हस्तक्षेप आदि पर। मंत्रालय के पास नौजवान लड़कों के लिए लॉन्ग माउंटेन में एक रिहैबिलिटेशन केंद्र है, एक केंद्र महिला मरीजों के लिए है जिनमें बोबासा की युवतियां शामिल हैं, और एक रिहैबिलिटेशन केंद्र आने वाले हफ्तों में फ्लक में कार्यरत होगा।
3: Currently, the ministry has one residential rehabilitation center for male adolescents at Long Mountain, one for female patients, including adolescents of Bobasa, and there is one additional rehabilitation center which will become operational in the coming weeks at FLAC.
1: 114 मिलियन रुपए से जुड़ी सूद केस मामले में आज पोपलेमुस अदालत में एक अहम फैसला सुनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगनाथ की उस मांग को अदालत ने खारिज कर दिया जिसमें एफसीसी जांच के संभावित गवाहों के नाम जानने की अनुमति मांगी गई थी। मैजिस्ट्रेट बीमा बोयरू ने कहा कि इस तरह का आदेश देना इस अदालत के अधिकार में नहीं आता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक अनिश्चितता में रखना उचित नहीं है। इस मामले में प्रवीण जगनाथ की ओर से वकील रवि येरिगादू पेश हुए। अगर प्रकृति का संतुलन आज भी कायम है तो उसमें मधुमक्खियों की

0: भूमि का बेहद अहम मानी जाती है। फूलों से खेतों तक और शहद से खाद्य सुरक्षा तक, ये छोटी सी जीव कृषि और जैव विविधता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कृषि उद्योग मंत्रालय ने आज रिजवी में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया, जहां मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। सागा ओनू की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण याचना मिश्रा के साथ।
1: विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कृषि और पर्यावरण क्षेत्र के कई प्रतिनिधि एक साझा उद्देश्य के साथ एकत्र हुए, ताकि मॉरिशनों के दैनिक जीवन में मधुमक्खियों के महत्व को बेहतर ढंग से समझाया जा सके। हम प्रकृति में ही रहते हैं और मधुमक्खियों के साथ रहना सीखना चाहिए। 10 सालों से मैं ये काम कर रही हूँ। मधुमक्खियों पर कोई कीटनाशक न डाली, उनके बिना जीवन ही नहीं। अगर ये लुप्त हो गई तो 4 साल बाद हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, खाना ही नहीं मिलेगा। कुछ पौधों के धीरे धीरे गायब होने से इस क्षेत्र के पेशेवर चिंतित हैं। ये पौधे मधुमक्खियों को पराग यानी पोलन और रस प्रदान करते हैं। ऐसे पौधे बढ़ाने चाहिए और उन्हें संरक्षित करना चाहिए। निर्माण आदि के कारण मधुमक्खियों की संख्या काफी कम हो गई है। भूमि विकास, कृषि और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, ताकि मधुमक्खियों का अस्तित्व सुरक्षित रहे। विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति का संरक्षण भी। हम बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे हैं। खेती वाली कई जमीन हम गंवा चुके हैं, लेकिन भूमि और कृषि की ओर वापस जाना मन से होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 75% खाद्य फसलें किसी न किसी रूप से परागण यानी पोलिनाइजेशन पर निर्भर हैं।
0: मॉरिशस में क्वाड बाइक गतिविधियां लगातार लोकप्रिय हो रही हैं और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि अब इसे बेहतर ढंग से संगठित और नियंत्रित किया जाना चाहिए। साथ ही ऑटोमोबाइल सर्किट परियोजना को भी जल्द ही आगे बढ़ाने की मांग उठ रही है। इससे जुड़ी इन अपेक्षाओं और चुनौतियों पर पेश है ये रिपोर्ट कुणाल गोजी के साथ, विवरण रचनी बीकर।
2: क्वाड नए बिकते हैं या फिर कुछ सेकंड हैंड भी, न केवल बिक्री करने वालों के यहाँ बल्कि नेट पर भी। कुछ वर्षों से मॉरिशस में क्वाड की संस्कृति सी पैदा हुई है। एक्सकर्शन एजेंसियों के माध्यम से ये उपलब्ध। बिग फुट एडवेंचर के ऑपरेशंस मैनेजर क्रिस्टोफर लम ने कहा, ये दूसरे स्पोर्ट्स की ही तरह है, चलाने में आनंद मिलता है। YouTube, इंटरनेट आदि के साथ लोग देखते हैं कि दूसरी जगह पर क्या हो रहा है और ऐसा करने की इच्छा होती है, कोशिश भी करते हैं। कुछ प्रयोगकर्ता मनाही एवं नियंत्रण के बावजूद अक्सर सड़कों पर दिखाई देते हैं। इस दिलचस्पी के चलते क्रिस्टोफर लम का मानना है कि ऐसे में इसके प्रयोगों को व्यवस्थित करना चाहिए। उन्होंने कहा, एक संगठन कायम होते देखना चाहते हैं जिसे स्पोर्ट्स मंत्रालय और सरकार से मान्यता प्राप्त हो, साथ में स्पोर्ट्स गतिविधि की ही तरह भी इसे मान्यता प्राप्त हो। मॉरिशस में मोटर राइडर संगठन तिवारा बाइकर मॉरिशस की भी यही राय है। तिवारा बाइकर मॉरिशस के अध्यक्ष प्रवीण गणपत ने कहा,
3: क्वाड
2: चलाना अच्छा लगता है, फन है। क्वाड के लिए अगर एक उचित जगह मिले तो बहुत अच्छा है, शिकार वाली जमीन से हटकर अलग जमीन, सीखने के लिए और चलाने के लिए भी। इस बीच परिवहन मंत्रालय याद दिलाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी पाया जाए तो 1,00,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है और 5 साल जेल की सजा भी हो सकती है उन लोगों के लिए जो निजी इलाकों के बाहर क्वाड चलाते हों।
0: फ्रॉम मिलिटेंट प्रोग्रेसिव के नेता पुल बेरांगे का कहना है कि इस बार सरकार के

0: से पिछले वर्ष की तुलना में अधिक आर्थिक गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने मूडीज और आईएमएफ की हालिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि देश की वित्तीय स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। ये बयान उन्होंने आज बजट से जुड़े प्रेस सम्मेलन के दौरान दिया। उपभोक्ताओं के हितों और कीमतों पर बेहतर निगरानी के उद्देश्य से सरकार ने प्राइस कंट्रोल कमेटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। आसिम ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा है कि वो 2015 से इस समिति की स्थापना की मांग कर रही थी। इसी दौरान नेशनल होलसेल मार्केट को वुटन से डिसेंट्रलाइज करने की परियोजना पर भी प्रतिक्रिया दी गई। नीतुषा जिहा, अर्चना मिश्रा।
1: आसिम के महासचिव ने उपभोक्ताओं की बेहतर सुरक्षा के लिए कीमतों पर नियंत्रण रखते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति गठित करने के सरकारी फैसले पर प्रतिक्रिया दी। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। हमें इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री दफ्तर द्वारा इस समिति के टर्म्स ऑफ रेफरेंस आम होंगे ताकि हम सुझाव दे सकें। जयंत चेलम ने वुटन स्थित नेशनल होलसेल मार्केट की विकेंद्रीकरण परियोजना पर भी अपनी बात रखी। वुटन में 15 रुपए का ककड़ा प्लेन विलियम्स की मंडी में 115 रुपए में बिक रहा है। रीजनल मार्केट दोबारा स्थापित करने की मांग मंत्री बुलेल से की जा चुकी है। आसिम ने बैंकिंग सेवाओं में अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की ताकि विशेष रूप से ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों से बचा जा सके।
0: विदेश में भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। उत्तर से लेकर मध्य भारत तक सूरज जैसे आग बरसा रहा है। दिल्ली में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि उत्तर प्रदेश में तापमान लगातार दूसरे दिन 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीषण लू, गर्म हवाएं और तपती रातों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी कई इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रह सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने दोबारा हमला किया तो संघर्ष मध्य पूर्व से बाहर भी फैल सकता है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इस युद्ध को बहुत जल्द खत्म करना चाहता है और ईरान समझौते के लिए तैयार दिख रहा है। कोंगो में फैलते इबोला प्रकोप ने चिंता बढ़ा दी है। अब तक 514 संदिग्ध मामले सामने आ चुके, जबकि 136 लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस प्रकोप की तेज रफ्तार और बढ़ते फैलाव पर गहरी चिंता व्यक्त की है। और अपने 5 देशों के दौरे के अंतिम चरण में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे हैं, जहां भारत और इटली के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। रोम में प्रधानमंत्री श्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात सिर्फ एक राजनयिक कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि इसमें दिखाई दिया कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास, मजबूत होती साझेदारी और साथ मिलकर आगे बढ़ने का संदेश। अब आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। पूर्व की ओर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान रात को तथा कल सुबह बादल घिरे रहेंगे, वर्षा भी होगी और कुछ इलाकों में कोहरा भी छाया रहेगा। कल शाम को भी बादल घिरे रहेंगे, हवा हल्की रहेगी और दक्षिण की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी दक्षिणी समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम तापमान 24 से 26, सारे इलाकों पर न्यूनतम तापमान 23 से 25, अधिकतम 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय कल सुबह 6:33 पर होगा।

0: तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक शिव को धन्यवाद देते हैं, साथ हमें पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

शोक समाचार सुनिए। बोआडोआजो रोड पुद्रोदो विलाज में उन्नासी साल की 79 years old श्रीमती बेदवंती नेहल, पैदाशी नाम सियाम्बा और जिन्हें लोग बेदाम नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ ही कल दिन की 11 बजे इनके पति बागरीत नेहोल के मकान बोआडोआजो रोड पुद्रोदो विलाज से उठाकर बेलमो गुडलैंड से कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमोरो 11 AM रॉयल रोड बुबासे में लाशा पेला डॉन्टिलियनसन रॉयल रोड बुबासे में 82 साल के 82 years old श्री पूरन दौलत, जिन्हें लोग सुरेश नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे नंबर 23 ग्लैडस्टोन स्ट्रीट रोज हिल के रहने वाले थे। इनकी अर्थ ही शुक्रवार को दिन के 1 बजे शुक्रवार 22 मई को दिन के 1 बजे ला शापेल औदौंत इलियनसन रॉयल रोड बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन On Friday at 1 PM ex-railway road Apadaguchia में 80 साल के 80 years old श्री धनेश्वर सामुज जिन्हें लोग दीवान नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनके मकान एक्स रेलवे रोड अपडागुचिया से उठाकर सेकोस्टॉन सैंपिया कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमोरो 9:30 AM एवेन्यू बुगेविलिये तमारे में 71 साल के 71 years old श्रीलाल देव जगरनोत जिन्हें लोग पार्टनर नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे मुसलमान वीओएस कास्कावेल के रहने वाले थे। इनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे इनकी बेटी करुणा जगरनोत रंजीब के मकान एवेन्यू बुगेविलिये तमारे से उठाकर गांधी पालमा कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM रॉयल रोड बुबासे में 70 साल की 70 years old श्रीमती जसमती बेकारू पैदाशी नाम नरसिंह और जिन्हें लोग बालिका नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे रामनारायण रोड कुतेज के रहने वाले थे। इनकी अर्थ थी कल सुबह 10 बजे इलियनसन रॉयल रोड बुबास से उठाकर पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमोरो 10 AM नंबर 14 बी डॉविन एवेन्यू कैटरबोन में 92 साल की 92 years old श्रीमती कमुशलाई रमन जुलू पैदाशी नाम रामसामी और जिन्हें लोग सरोजिनी नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके दामाद पीले महोदय विनेश के मकान नंबर 14 बी डॉविन एवेन्यू कैटरबोन से उठाकर सहमौते मोहोश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। Funeral tomorrow at 11 AM Holdem Avenue Elvisha Saint-Pierre में 72 साल के 72 years old श्री जाकराजन मौदे जिन्हें लोग दुना मौदे नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी शुक्रवार 22 मई को दिन के 12:30 बजे इनके मकान होल्डम एवेन्यू एल्वेशिया सेंपिया से उठा

Fakat Saint Constant Saint-Pierre Kışmaşan Bumi ile Jayegi. Funeral on Friday at 12:30 p.m. शुक्र परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।

और जी हाँ दोस्तों, प्यारे गाने एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार और वेलकम आप सबका ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन, जहां हर शाम हम लेकर आते हैं पॉजिटिविटी की एक नई रोशनी। और चलिए एक बार फिर मैं हूँ परी आपके साथ। अगले 30 मिनट तक हम बात करने वाले हैं लाइफ की, होप्स की और उन छोटी छोटी बातों की जो जिंदगी को थोड़ा सा और खूबसूरत बना देते हैं, और उसमें शामिल होते हैं कुछ गाने भी। कहते हैं ना दोस्तों कि कभी कभी लाइफ हमें पॉज देती है और प्लान्स जो हैं वो कभी फेल भी हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस कभी टूट भी जाती है, लेकिन याद रखिए कि सूरज हर सुबह फिर से उगता है।

वैसे ही हम हर दिन एक नई बिगिनिंग कर सकते हैं, यानी कि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। हर एक दिन आपको देते हैं 24 नए घंटे एंड वी हैव 365 डेज जहां पर हम कितना कुछ कर सकते हैं। इट्स योर ओन बुक जिसमें आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, सो व्हाई नॉट राइट समथिंग वेरी स्पेशल। अभी के लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम नई सोच, मैं हूं परी आपके साथ। शाम के 6:36 हो गए हैं, साथ रहेगा इस प्रोग्राम में या शाम के 7 बजे तक। उसके बाद कुछ रोमांटिक गाने इन योर प्रोग्राम दिलों की आवाज, तो कहीं मत जाइए, कनेक्टेड रहिए रेडियो मनोरंजन के साथ। 5250620000 आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: नई सोच। सो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शाम का टाइम जहाँ पर लेकर आए हैं प्रोग्राम नई सोच। बातें तो होती रहती हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो कभी कभार शायद आपके दिल के राइट नोट को छेड़ जाती है। दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा, हम अक्सर खुद से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, दूसरों की मिस्टेक्स हम माफ़ कर देते हैं लेकिन अपनी एक छोटी सी गलती को लेकर खुद को पनिश करते रहते हैं। तो बस आज एक प्रॉमिस के खुद को थोड़ा सा जेंटली लेंगे, खुद से थोड़ा सा प्यार से बात करेंगे और हीलिंग जो है वो तो उसी मोमेंट शुरू होती है जब आप स्टॉप करते हैं फाइटिंग योरसेल्फ। और याद रखिए, प्रोग्रेस स्लो हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। कभी कभार हम खुद से इतनी उम्मीदें रखते हैं कि इस उम्र में ये होना चाहिए।

ये था इस टाइम पर ये होना चाहिए था इस वक्त ये क्यों नहीं हो रहा लेकिन यू आर जस्ट प्रेशराइजिंग योर सेल्फ वक्त के साथ जो होना है वो हो ही जाता है तो बस खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें खुद को थोड़ा सा प्यार करें और कुछ प्यार भरी बातें खुद से भी करें खुद को आपको ही मोटिवेट करना है अक्सर हम सोचते हैं कि लाइफ में कोई ऐसा आएगा जो हमें मोटिवेट करेगा कोई हमें प्यारी बातें कहेगा या फिर कोई हमारी की हुई बातों की तारीफ करेगा लेकिन ऐसा अक्सर कम ही होता है और अगर कोई करे ना करे आप खुद की तारीफ तो जरूर कर सकते हैं और ये तभी होगा जब दिन भर में आप नोटिस करेंगे कि आपने कितना कुछ खास किया है भले ही वो छोटे छोटी बातें क्यों ना हो छोटे छोटे अचीवमेंट्स क्यों ना हो लेकिन जैसे हम कहते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है तो अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को याद कीजिए उन्हें आप नोटिस कीजिए और खुद को थोड़ी सी शाबाशी दीजिए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और सोलफुल गाने के साथ और ऐसे ही आपके साथ हम जुड़े हुए हैं यह है आपका अपना RN3 रेडियो मनोरंजन।

और चलिए दोस्तों, ऐसे ही कुछ जिंदगी में दिल चाहता रहेगा और हम दिल को मनाते रहेंगे। लाइफ में कहते हैं ना कि हर फेज परमानेंट नहीं होता, ना स्ट्रेस, ना फेलियर्स, ना सैडनेस। कभी कभी हम आंसर्स ढूंढते रहते हैं जबकि लाइफ में सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत होती है। आपको हर चीज़ अभी समझ नहीं आएगी, बट वन डे एवरीथिंग विल मेक सेंस। और एक छोटी सी बात आपसे शेयर ज़रूर करेंगे कि हमेशा अपना ख्याल खुद रखिए, क्योंकि सबसे पहले तो बस आप ही को खुद का ख्याल रखना है। सो अपना ख्याल रखिए, स्माइल थोड़ा ज़्यादा और ओवरथिंकिंग थोड़ा कम। अभी मूड को लाइट करने के लिए एक और प्यारा सा गाना आप सभी के नाम। और जी हाँ दोस्तों, इसी गीत के साथ हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आवर की ओर, जहाँ पर लेकर आएंगे प्रोग्राम दिलों की आवाज़। तो शाम का टाइम जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ आफ्टर सम हैप्पी मोटिवेशनल सॉन्ग्स, सम सोलफुल सॉन्ग्स। इट्स टाइम फॉर सम रोमांटिक सॉन्ग्स। लेकर चलेंगे आपको प्यार भरी दुनिया में, प्यार की नगरी में। मैं हूँ परी आपके साथ रात के 9 बजे तक ऑन रेडियो मनोरंजन।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर रात का टाइम एक्चुअली शाम का टाइम कह सकते हैं और शाम ढलते ढलते रात की तरफ बढ़ रही है। 7:06 हो रहे हैं। रोमांटिक गानों का वादा किया था, रोमांटिक गाने लेकर आए हैं। दिल से मिले दिल और आपका और हमारा दिल तो बस मिला हुआ है, तो आप भी साथ दे रहे हैं दोस्तों। मैसेजेस डेडिकेशंस 5250620052506200 होगा आपका इंतज़ार।

और चलिए दोस्तों, यह है आपका अपना RN3 रेडियो मनोरंजन। मैं हूं परी आपके साथ रात के 9 बजे तक कुछ खूबसूरत गीत आपके लिए लेकर। सुदेवी जी वाकवा से साथ दे रही हैं, गुड इवनिंग आपको, एंजॉय कर रही हैं प्रोग्राम। ट्रियोले के दीदी ललिता और कुशाल परिवार के नाम साथ में है आत्माराम भैया, ऑस्ट्रेलिया के विमल, वर्षा, वीर, निया, मालिंगा के सभी, राम रतन परिवार और सभी हमारी टीम के नाम स्वीट सा गाना डेडिकेट करना चाहती हैं आप। सो बहुत बहुत धन्यवाद सुदेवी जी, साथ देने के लिए शुक्रिया। और आपका इंतजार तो हम करेंगे ऑन 5250-6200। हमारे जितने भी लिसनर्स, जितने भी सुनने वाले हमारा साथ दे रहे हैं। शाम का टाइम, रोमांटिक गानों का कारवां ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन।

So, जी हाँ दोस्तों कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स आपके नाम शाम के 7:30 हो रहे हैं स्वीनल साथ दे रही हैं आप यही गाना डेडिकेट करना चाहेंगी फो भाई श्रवण भाभी कृति अभिनव कियान नव्या तिलक परिवार कहते हैं 90s लव बॉय भाई गुलशन और आयशा के नाम भी बिल्कुल सो चलिए वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक एसपी बाला सुब्रमण्यम एंड लता मंगेशकर की आवाज़ें हमारे सभी लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोशिश यही है दैट गाने कुछ ऐसे हो जिनके साथ यादें तो ताज़ा हों साथ ही साथ मन भी हल्का फील करे So, साथ रहेगा आपका और मेरा रात के 9 बजे तक दिलों की आवाज़ प्रोग्राम RM3 रेडियो मनोरंजन पर मैं हूँ परी आपके साथ

0: दिलों की आवाज, दिलों की
1: आवाज, दिलों की आवाज। और जी हाँ दोस्तों, दिलों की आवाज जो दिल से निकलती है और आपके दिलों तक पहुंचती है। रात का समय 7:49 होने को है और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बता दूं, मैं हूं परी आपके साथ रात के 9 बजे तक रेडियो मनोरंजन पर यह खास प्रोग्राम आप सभी के नाम। सो यहाँ पर रेहाना जी फिनिक्स से साथ दे रही हैं आप प्यार भरा आदाब आपके लिए भी, और ऐसे कुछ प्यारे गाने आपके नाम करेंगे अगला गाना आपके लिए। और यहाँ पर गुलशन जी साथ दे रही हैं आप, डेडिकेट कर रहे हैं गाना फॉर योर लवली एंजल आयशा, मामा प्रभा, सिस्टर दीक्षिता, सभी भोला परिवार के नाम। अर्ज किया है एंड दैट्स ओनली फॉर आयशा, रात भर सोचा कि क्या पसंद है उसमें, रात भर सोचा कि क्या पसंद है उसमें, पर जितना सोचा उतना समझ आया कि शक्ल, आदतें, हरकतें सब बाद में, सबसे पहले उसका होना अच्छा लगता है मुझे। दैट्स रियली स्वीट, किसी का होना, किसी का साथ, किसी की प्रेजेंस, आई गेस अगर आपको अच्छी लगती है तो ही और शी इज द राइट वन फॉर यू। अभी के लिए आयशा, दिस वन इज अ स्पेशल स्पेशल डेडिकेशन खास आपके नाम, और साथ ही जितने भी लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अ ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए। कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, दिलों की आवाज प्रोग्राम ऑन रेडियो मनोरंजन। मैं हूँ आपके साथ रात के 9 बजे तक परी, और आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250 6200 5250 6200 पर आपका इंतजार।

0: RM3 Radio. Radio.
1: और चलिए दोस्तों इसी गाने के साथ बढ़ने वाले हैं अगले घंटे की तरफ यानी कि नेक्स्ट आवर की ओर ये है आपका अपना प्रोग्राम दिलों की आवाज दिल से दिल

का कनेक्शन होता है बस यहाँ ऑन रेडियो मनोरंजन. आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250-6200-5250-6200 परी का साथ है रात के 9 बजे तक. अभी के लिए कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, एक खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए.

0: तो चलिए दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का रात के 8:08 और वेनसडे की ये खूबसूरत सी रात जहां पर लेकर आए हैं आपका अपना प्रोग्राम दिलों की आवाज।
1: You're listening RM Free Radio Radio Radio।
0: कहते हैं ना दोस्तों कि लाइफ में क्या कुछ नहीं होता है लेकिन यादें हमेशा रहती है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सभी लिसनर्स आपके नाम एक स्वीट सा डेडिकेशन लेकर आए हैं और स्पेशली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं चांदनी पुरुषोत्तम और कहती हैं दैट आज पापा प्रेम मचौती वुड सेलिब्रेट हिज 80th बर्थडे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज आपके साथ नहीं है और एक साल हो गया है लेकिन स्टिल उनकी जो यादें हैं वो बिल्कुल आप ही के साथ है और सभी की तरफ से बहुत सारा प्यार प्रीतम पृथ्वी बेटी चांदनी और साथ में है बहू दामाद ग्रैंड चिल्ड्रन सभी चौथी परिवार जो याद कर रहे हैं अपने पापा को। वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आपके नाम और साथ देने के लिए शुक्रिया और जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं ये है आपका अपना RM3 रेडियो मनोरंजन मैसेजेस डेडिकेशन 5250 6200 पर

आपके लिए हम चला रहे हैं ऑन रेडियो मनोरंजन अभी के लिए प्रकाशपति जी बेल्जियम से हमारा साथ दे रहे हैं आपका भी हम स्वागत करते हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन रात के 8:33 बुधवार की एक खूबसूरत सी रात जहां पर कुछ प्यारे गाने लेकर आए हैं आपके नाम दिलों की आवाज प्रोग्राम मैं हूं परी आपके साथ रात के 9 बजे तक

और चलिए दोस्तों, रात के 8:52 और समय हो चला है कि मैं यानी कि परी आपसे लूं अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्यार से आज इस बुधवार में आपने हमारा साथ निभाया, इतने प्यार से आप बने हमारे म्यूजिकल हमसफर। जाते जाते अनीता जी फ्लिक एंड फ्लैग से हमारे साथ कनेक्टेड हैं आप। सो ये खूबसूरत सा ट्रैक आपके नाम आशा भोसले, कुमार सानू की आवाज़ें, रेडियो मनोरंजन, जहां पर कोशिश यही है कि आपका एंटरटेनमेंट, आपका मनोरंजन करते रहें हम प्यारे गीतों के साथ। सो अभी के लिए साइनिंग ऑफ, मुलाकात होगी जल्द यहीं पर हमारे इस प्यारे से रेडियो स्टेशन पर। तब तक के लिए साथ देते रहिए, गानों को सुनते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे म्यूजिकल ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन।

0: അത്തവാ റേഡിയോ മനോരഞ്ജൻ.
1: Continuous music
2: radio. RM3.
3: 7 days a week, 24 hours a day.
4: Live.
3: This is Radio Marxis.
5: कमर, कमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो
0: सब संगतियों के अजय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलामी हत और मनपसंद रेडियो चैनल और एम्प्रियो रेडियो मनोरंजन. रात के 9:02 हुआ था. आज बुधवार की रात 20 मई साल 2024. सबको के स्वागत बा. और आज से ही प्रोग्राम चली लाइव टिकटॉक पेज पर भी, रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर. तो जितना कोई हमने के लिखा था सबको के नमस्ते और सलाम, सबको के स्वागत करते जा. अभी से 9 बज रहे. सब बच्चा अपन पसंदीदा भोजपुरी गीत मांगे काल से हो दे विद से हो विद सैंक पर. और हमने के ये भी ढेर कोई साथ होता, सूर्या हवन, फिर बिब और दिखाते सुल्ताना भी हमने के साथ होता. हाय सुल्ताना. और रिपेल का गाना तो हर खाते चली मोरिसवा. अनिल सिंह रमेश सर मनहिल अमृत की आवाज़ में, मनहिल अमृत और अनिल सिंह रमेश सर की आवाज़ में चली ये गाना मोरिसवा. और जितना सकबर शेयर करे ये टिकटॉक पेज रेडियो मॉरिशस के शेयर करा जा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत लोग हमने के साथ दे. अरविंद बिसोनी हमने के साथ दे वन वेलकम भाई जी. फिर अभी देखते हैं हमने के साथ बा रूपाश शिवरम, प्रमिला ओकला सुस्वागतम. प्रमिला ओकला जी हमने के बहुत प्यार से दिखाते हुए और सुनाते हुए रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन और टिकटॉक पेज पर भी. वृंदा भी हमके साथ देवतन चले, एक साथ सुने गीतवा मोरिसवा.

बुझा था संगत यार कि सर्दी के मौसम में चला ले ऐसा काय के दिखा दे ऐसा फजीर के समय और रात के समय कोहदे में बहुत कोहदे जो ना बड़ी ठंडा ठंडा रहेला और ऐसा मौसम में बस जरा गर्मा गर्म पानी पिए के गर्म गर्म कपड़ा पहने के और साथ में चहना सब कुछ होने की कहे कि सर्दी के मौसम में देर को के खोंकी और सर्दी हुआ था और जब फजीर की देख पा 6 बजे या 6 बज के आधा लिए अंधार कर लग तो जान जा कि इलीविया के महीना है ठंडा के महीना है और शुरू गलबा और सांझ से बखत 5 बज के आधा 5:45 बजे जो न अंधार हो जाए यानी कि ठंडा के मौसम सर्दी के मौसम चला बा और बस ऐसे मौसम में ग्लासे चीज नहीं पिए ना ग्लासे पानी ना सॉफ्ट ड्रिंक तेमूस ले लीजिए को गूद ले लीजिए जेकर मैं गर्म पानी रखिया और समय समय पर गर्म पानी या चेत पानी पिया जा और अभी देर को हमके साथ देवता बीच मावती समत गीत मंगले हवन रतन निहाल गाँव भी से फिर उकर पत्नी रत्ना पापा बीजे और सब परिवार माया उगा गी तोहर खातिर अनवर साहब है गी तोहर नाम वर वर दस्ता है गी तोहरों खातिर और ढेर कोई हमने के साथ देवा था वन टिकटॉक पेज पर भी और सैतुब एसएसएस के ग्रेड 13 के सब स्टूडेंट्स लोग जो कोई हमने के लिखा था टिकटॉक पेज पर वो लोग खातिर भी ये गीत चली बीज मावती संपत के गीत गवाई में चले के बाद और हर ही सप्ताह जगह शादी हो के बाद है गीत है तो लोग के नाम गीत गवाई में चले के बाद चलोगे

संगतियालो जब ठंडा के मौसम आवेला तो हमने की चाय के याद आवेला ढेर प्रकार के चाय बा दुनिया में जैसे कि अदरक वाली चाय मसाले वाली चाय करक चाय जो कि लेमन टी बढ़िया सा ग्रीन टी आसाम चाय दार्जिलिंग चाय नीलगिरी चाय और कश्मीरी चाय और जब अदरक वाली चाय की बात करती रहता जब ढेर ठंडा गिरेला तो थोड़ा सुन चाय बनेबा चाय वहाँ बुई करबा तो थोड़ा सुन दो दिन को अदरक के बूद डाल दिया वो जो करेला हमने के खांसी सर्दी जुकाम से दूर रखेला और जेकर गला सुरसुरा

होला या जो कि खोंकी सर्दी होला तो जो अदरक वाली चाय है बेस्ट चाय है रोज फजीर के पीवा तब तो स्वास्थ्य अच्छा रही अभी जैसे ठंडा कर रहता चला ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी लेके विटामिन सी ले तो स्वास्थ्य खातिर अच्छा बा भोजपुरी तड़का प्रोग्राम जारी बा सुनब जगह जुड़ी संगीत जोली छोकरी से प्यार करीला आय है या जुड़ी जो छोकरी जो कोई हमको देखा था सबको की बल्ब सा सुस्वागतम जितना जुड़ी जोली पापी और लड्डू हमने देखा था लाइव तो ये तो लोग नाम और संगतिया बा हेलो सर यस From Santobe SSS. Okay, welcome. Next gana for you for Santobe SSS grade 13 red ke students to ke naam Jodi Chukri. Hegi to sanga sanga gawap sa aur nachap sa sanga. Okay, Ali. 1, 2, 3. Here we go.

जी हाँ, एक से एक बढ़िया भोजपुर गीत, एक से एक बढ़िया म्यूजिक तोहर खातिर तोहर रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर भी। और जैसे कि बढ़ते सर कि भोजपुरी तरह का जो प्रोग्राम है ये रोज के चले रहा है रेडियो

0: कनेक्शन से रेडियो मनोरंजन की लहरों पे और आज से लाइव चलाता है प्रोग्राम टिकटॉक पेज पर। और आजकल देखिए ऐसे संगतियाँ लोग कि वेज खाना ढेर कोई वेज खाना खाता कहे कि एकर में टॉक्सिन कम रहेला, दुनिया भर में स्वास्थ्य के लिए कि सब कोई जागृत बा और देखते जैसा कि ढेर मना देश में आजकल ढेर कोई वेज खाता जैसे इसराइल, ताइवान, इथियोपिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और कनाडा ढेर मना लोग वेजिटेरियन कर बढ़ता। तो अच्छा बात है शाकाहारी भोजन करब तो वो अच्छा स्वास्थ्य खातिर अच्छा रहेला, शाकाहारी वेजिटेरियन भोजन करब तो ढेर मना बीमारी से बचब जा जैसे दिल के रोग से, मधुमेह से, तोशों से, जाबित से दूर रह जा। और चल अगला गीत सुनब जा अंजू गैलक बा जिंदगी बा। यस अंजू के गावल गीत नहीं, अंजू के गावल गीत है जलसाबा। चल गीत खोजे ढेर कोई गीत मांगत है भी जलसाबा तो हम यो जलसा करब सत लोग के संगे संगे रात के 11 बजे ले जलसाबा अंजू के साथ गीत खास कर चला होते जितना कोई काम करता अभी रात के वक्त नाइट शिफ्ट में तह गीत तो लोग के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ और जितना स्टूडेंट्स और अध्यापक लोग दोस्त हम की सुनता वो लोग खातिर भी। और एक गीत संजय बिहारी की ओर से कर पत्नी सुरेखा, फिर बेटा कुशल, बेटी रिंकू, दामाद, बहू सब परिवार के नाम, शुभम एम जी हेलो है गीत और खातिर भी अंकुश ऑल्सो हम के साथ, नीलम भी हवन टिकटॉक पेज पर हमके साथ होते हैं गीत और अंजिता कोई टिकटॉक पेज पर हमके देखा था हमके सुना था तो गीत तो लोग के नाम जलसा बा चला जलसा करे।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन नमस्कार, गुड मॉर्निंग।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। कमर धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो
2: जैक से एक बेहतरीन गाना, एक से एक बेहतरीन म्यूजिक, तोहर का तेरे एमबीसी रेडियो मॉरिशस पर, रेडियो मनोरंजन पर भी वो संगत है। गीत मांगले वन बरका मामा, बरका मामा, बरका मामा के कर पतोया, एक कर पतोया, एक कर पतोया, बरका मामा एक कर पतोया। हाँ गीतवा बात गीतवा मंगले हवन बरका बरका मामा की मंगलांग भाई गीतवा को संगत है। मंगलांग भाई टिकटॉक पर भी खोजते इसको नाम बरका मामा के गीत। यस हेलो सर, प्लीज प्ले बरका मामा मनी प्रिया था गीत और खातिर चली। और अमला देवी तो यो लोग को भी एम के साथ देवथवन अम्बिसा। हेलो जी नमस्ते, सुस्वागतम रेडियो मॉरिशस, रेडियो मनोरंजन और टिकटॉक पेज पर। और 140 है गीत थोरो खातिर जोशी हम के साथ देवथवन जोशी है गीत थोरो नाम। और जितना कोई भी नाचता गावता His Rain है गीत और खातिर अंदोनीहा नेट्स बी बेबी हम के साथ देवथन टिकटॉक पेज पर। और बोला प्रताप जी प्रोग्राम एकदम बढ़िया बा, नाचते ही सा गावत ही सा तो सबको नाचे गाव। और साध परमा और ढोरा भी हमके साथ देवथवन नूरमान है गीत थोड़ो खातिर। संगीता मिरन हवन लागोजा से गीत मांगले हवन माता जी रीता सीतालु खातिर। रोहबी से बोलते हुआ हैप्पी बर्थडे माता जी और हैप्पी मदर्स डे। और हम के साथ होते हैं मोनी मोनी बरन का निकोल वर्दे वर्दन अनुदी रीना। और राय थे गीत तो लोग के नाम बरका मामा। हियर वी गो।

सबको हमने संगे नाचा था गावा था झूमा था इसे नचते गाती रही पोचपित्र का प्रोग्राम रात के 11 बजे ले आजकल ठीक है ढेर मारा घर में छोटा छोटा बात के लेके मियाँ बीवी में झगड़ा होला नोक झोंक होला कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण पति पत्नी झगड़ा करे लगेला और जब पति पत्नी झगड़ा लेकर कर में हिला तब प्रॉब्लम और गड़बड़ हो जाला तो जब देखभा कि पति पत्नी में झगड़ा हो तब एक जना के जहाँ से दे हो के अगर दोनों जना मुँह चलाए इधर उधर की बात बही तो मार पिटैया हो लगी इसका घर में महाभारत भी हो चला और एक से बच्चे कहते जब पत्नी ढेर मुँह चलावा था तब पति के चेहरा चुपचाप घर में से निकल के थोड़ा समय कर बाहर चल जाए या जब पति ढेर बतियाता था पत्नी के चेहरा समा में से निकल के थोड़ा देर बाहर चला जाए जब स्थिति कंट्रोल पर आ जाए तब एक दूसरे से चाह बात करे कि आजकल देखिए ऐसे स्ट्रेस के कारण तनाव के कारण कभी पैसा के कारण पति पत्नी में नोक झोंक होला तो ये सब चेहरा कम करेगी कहे कि इसे घर में किरकिर होला और किरकिर जो घर में होला वो घर में प्रगति नहीं होला लक्ष्मी माँ नहीं आवेला चल अगला गीत सुनम जाए धोती पोती पगड़ी अमृता गणेशम के साथ देव ध्वन नीला और ललिता ललिता कुशल हवन थयोले से गीत तोरो खाती तो सब परिवार के लिए और चाची प्रभावती लोल हवन नुवे फ्रांसेम के साथ देव ध्वन गीत तोरो नाम प्यारा संगीत विक्रम कोलाचन की आवाज़ में धोती पोती पगड़ी चला एक साथ सुना है गीतों चला दी सद्दी के नाम किरण जी के नाम देवी के नाम जतुना के नाम हाय जतुना जतुना के हाय बोला था टिकटॉक पेज पर हेलो हेलो दी गीत हो रखा तेर हेलो किरण गीत हो रखा तेर और जितना कोई हमने की सुना था रेडियो मॉर्शस रेडियो मनोरंजन पर और जितना कोई हमने की टिकटॉक पेज पर दिखा था तई पेज शेयर करा और ताकि ढेर कोई हमने की सकी देखे और सुने अनिता पर तो

गरीबी से खुशबा निकले के तैके को रास्ता बा उह शिक्षा के रास्ता मॉरिस में सब कोई के चैना पढ़ लिखल रहे के पढ़ लिखल रब त कोई तो रहने सकी ठगे कोई तो रहने सकी कुछ नहीं करे त पढ़े लिखे के चहला भैया कहे के दुनिया जो न पढ़े लिखे के दुनिया है और ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति बन बा तो तुहर खातिर अच्छा बा आगे आने वाला पीढ़ी के लिए भी अच्छा बा देखिए सर जो घर में माँ बाप जो पढ़ा लिखल है तो उनके लड़का लोग भी पढ़ा लिखल बा नया मैं मौके कर रही मॉरिस में ढेर जो माँ बाप लोग लोरिया निकल रहे सर वो लोग के लड़का भी स्वीप करेला एक जीते हैं लड़का लोग भी लोरिया निकाल हम इन्हें बोलते हैं कि जो लड़का के माँ बाप लोरिया नहीं निकल पाते उनका लड़का लोरिया नहीं निकाल रहे निकाले रहें सर पर जो बुद्धिमान जो इंटेलिजेंट लोग रहे ला तो लोग अपन लड़का के छोटा से कैसे को माँ बाप हो वैसे बा तो जसीला मोहताज सबको लड़का के कहे कि घर में माँ बाप लोग सिखावा था लेकुल में तो लड़का सीखत भी बा पर माँ बाप जितना बतावेला और लेकुल में तो दोनों मिल के लड़का ज़्यादा इंटेलिजेंट होला अब जो घर में माँ बाप नहीं पढ़ल बा तो वो लड़का जब देव करके आए घर पर माँ बाप की बताए तो माँ बाप नहीं सके कहू जो करे ना पर माँ बाप जो पढ़ा लिखल रही है घर में माँ बाप दोनों देखे के अलग बा तो लड़का लोग चाहे फर्स्ट से लेके एच एस सी या देखे लेको अपन को देवुआ नहीं सकते कैन सा माँ बाप के बोले कि माँ है देवुआ हम नहीं जानते हैं कि पिताजी है देवुआ हम नहीं जानते तो माँ बाप सकेला लड़का लोग के बताए कहते बस शिक्षा जो ना सब कोई के जहाँ ग्रहण करे के मंत्री की ओर से हमने की प्रधानमंत्री की ओर से हमने की शिक्षा के मंत्री की ओर से सब प्रकार की सुविधा सब प्रकार के लाभताज दिवल जाता वो चाहे प्रीमियर हो प्रीमियर हो सेकेंडरी हो तेसर हो कि तेसर एजुकेशन आजकल फ्री है फ्री एजुकेशन यूनिवर्सिटी कहाँ मिली संदेह जहाँ पर लड़का लोग के फ्री यूनिवर्सिटी में मिलता पढ़े के तई खातिर बोला सर पढ़ा लिखल चहना रहे के बहुत जरूरी है पढ़ा लिखल नहीं रह बा आदमी थोड़ा क्यों नहीं करी आदमी थोड़ा ठग दे दुनिया में बड़िए मोहे आदमी बा अच्छा आदमी भी बा पर आजकल देख रहे ढेर मोहे वो आदमी लोग बा छोटा छोटा बात में लोग आदमी के नीचा दिखावेलन सर और आदमी के मजाक उड़ावेलन सर तो ये बहुत बुरी बात है एक आदमी बोला सर कि शिक्षा सब कोई के चेहरा शिक्षित रह के शिक्षित रहा पढ़ा लिखल रहा तोरा सब कोई गदानी तोरा सब कोई तोर मान करी ऐसे में चला सुन अब जाए अगला गीत भोजपुरी बजावा जो बॉयज गीत गैले हवन एगो फटफटवा किंदे गे मोरा जा गीत चलावती सा खास हम खास आशा जानू खातिर ओका मामा कुमारी फिर शुभम फिर दीदी आरती जीजाजी और सब जानू परिवार के लिए एगो फटफटवा

0: participants puissent sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la chance, participe dans le grand final le 29 mai. MBC Play, avec ou partout. Pour plus d'informations, téléphone-le 400D 8000. Conditions applicables.
1: सुनते लोग आजकल के लेखा लोग बहुत थितर और ढीठ हो जाते हैं सर और छोटा में तो माँ बाप के पीछे पीछे रहे सर पर जैसे लेखा लोग कॉलेज जाए लगे सर माँ बाप से लिखिला सर लोग दूर हो ले जा सर और माँ बाप को बात बताया तो लेखा लोग बड़ी फ्रौते करेला मुँह चलावे सर और लेखा लोग जब कॉलेज आ रहा था ढेर लेखा लोग दिखिला सर बड़ी तेजी माँ बाप के नहीं सुने सर खाली संगतिया की बात सुने सोच लन सर संगतिया लोग के भगवान है पर लोग भुला जा रहा सर कि संगतिया लोग खाली सुख में साथ देवेला दुख में कोई साथ नहीं देवेला माँ बाप के छोरा के कहते लड़का लोग के चेहरा सिखाए कि माँ बाप के आदर सत्कार करके एगो संगतिया बलाइन पे कुछ मिलब जा हेलो जी नमस्ते
2: हेलो नमस्ते जी
1: के हवा जा
2: श्रीमती
1: कहाँ से
2: सुलिया से
1: तो हर स्वागत बा श्रीमती बोला
2: एगो गीत डाल दिया
1: कौन गीत
2: बेलेला
1: बेलेला बेलेला बेलेला
2: बेलेला
1: बेलेला बेलेला की दासपुरी बेलेला के
2: दासपुरी बेलेला
1: दासपुरी आप कहीं बताएंगे बोलिए आओ तो हर लगे
2: कहे नहीं आज बहुत खाती विदा कर रहा हूँ पुस्ते कर दे लापूस में
1: तो लापूस में तो कहाँ फैक्टर खा ली
2: नहीं नहीं नहीं तोरान के दी
1: ऐ तो
2: नाम डाल दे बुमे
1: आले नाम में डाल दिया जोड़ी से
2: और जी डाल दिया सब मोहित परिवार की तरफ से और चंद्रमुनि
1: और उनके भाई मोहित जो ना झापक रहल अब कहाँ रहते रहते हैं
2: ब्यास
1: अभी कहाँ कहाँ वन करे
2: अभी तो घर पर है वन
1: हाँ रहते हो गलबा ना
2: हाँ रहते हो गलबा
1: अब जाला घूमे में थोड़ा सुन
2: अभी तो टेलीविजन में गीत गावा था चमका था गीत
1: गीत गावे मुकेश के सब गीत गावे ला
2: सब मुकेश के गीत हाँ सब मुकेश
1: अब तू गावे तू भी गावे ला थोड़ा बहुत
2: नहीं भाई नहीं
1: एक बहुत गादम नहीं खाते
2: नहीं नहीं
1: नहीं अली है गीत तो सब परिवार खाते
2: हाँ डाल दिया
1: आले बहुत धन्यवाद और ढेर कोई खुशी रहेला भोजपुर का प्रोग्राम कर में ढेर वाना बात करीला सर कहानी भी रहेला और शिक्षाप्रद बातें भी होला ज्ञान की भंडार भी होला तो ढेर कुछ सीखीला सर गीत भी मांगेला सर ढेर कुछ सजा के रहे सर रिसर्च करके ये प्रोग्राम के दिलचस्प बनाए खातिर भोजपुर का जो चल हिंदी से लेकर दिमाग से रात के 9 से 11 बजे लिए और संगत लाइन पे राजन लक्ष्मण जी लाफलोवा से हेलो राजन जी नमस्ते हम ठीक हैं तो राजू धे जोर बा कमती कर दे भैया प्लीज जब भी टेलीफोन हाँ जब भी टेलीफोन है वो राजवा कमती कर दिया वरना उनकी कान फटी
3: यहाँ पर
1: अब ठीक बा बोलो राजन भैया
3: हमारे लिए एक गाना डाल देना
1: कौन की था
3: सुमिता नानकू साजन के देवल सारी
1: साजन के देवल सारी फट गयी ना रात के 11 बजे ले धन्यवाद उनके फोन कर लिया राजन लक्ष्मण जिला फ्लोरा से शालिनी हिरू वहां से वन और पति विशाल कुर्दू को बेटी और सब हिरू परिवार के नाम भी गीत जाता बहुत ही प्यारा सन गाना सुंदर परी चली गीत एक बात चली गीत भाई लक्ष्मण की अनीता अफ्री कॉम्प्लेक्स से अनीता जी नमस्ते
4: नमस्ते प्रताप जी
1: कैसे समाचार
4: आप कैसे हो
1: हम ठीक हैं तू कैसे हवा
4: मैं भी ठीक हूँ थोड़ी सी बारिश हुई है आज ठंडी ठंडी हवा बह रही है
1: ठंडा है गबा फजीर के 6 बज के आधा अंधार के लगवा बाप हम बताए है ले हवा बिस्तर में लेके आलोक जाता तो कैसे अंधार में 20 लौका तक नहीं हाँ तो लेके आलोक आप पीछे को बना
4: तो हमरो दुगो लेकर हर छोटा छोटा रह सब सारे उगल तब ले सुन ले वाटर रह सब तब बीस वा देख देख देख देखा तो नहीं कब हमारे लेकर आए कब हमारे लेकर
1: हमें गुबार बोला फिर हम फजीर के मलेकर के जरा बीस तो थोड़े 6 बजे बीस तो मैं
4: फजीर
1: कलिया बिलियन के ताकत बिस्तुपा के लाहौर चढ़ के

0: तब कहता आंखों झलका था अब हम हम सोचते थे ये कौन सी पुपे था का कोई
1: पुपे सुना सुन,
0: सुना ना गे हम सुनते कौन सी कोई पुपे छोड़ के जब भीड़ी जाते लुत्वा में से दिशा के भीड़ते बिली तो म्याओ म्याओ कर हम जो कहते डर के मारे पगली नहीं तो बीजा बैठ के अंधरवा में जब चिबुआ मारा था अंकुआ में तो अंकुआ झलका था अब दुगो बिली हम बोलते दुगो पुपे को छोड़ के चल गया
1: बहुत अच्छा लगा तुम्हारा डायलॉग बहुत अच्छा लगेगा
0: हाँ यार बोला
1: था कि ठंडा में इसने हो जाना लिविया में
0: हाँ तो लिविया में तो फजी क्या हम तो बोले थे पौन बजे उठ जाएगा सर जब रोटी आने अब रोटी ने बता चाव बनाए के अब ले क्या लोग के जाए कि बिस्तर में छोड़ हमने की तैयार होके कॉलेज जाए के काम करे के पास ही नहीं है
1: हमारा तो फिनिश हो गल ना माँ हमार ड्यूटी फिनिश हो गल लड़का लोग अब शादी कर
0: तो हर लास्ट जो रिट्रीट है यानी कि अवकाश पा लिया हुआ
1: हाँ हाँ तो हम खूबे उतने भाई जी
0: सैक्रिफिस है ना लड़का लोग
1: रोटी चाहे ना खोजे के रोज लड़का की डाली की रोटी नहीं मिले ला बुलांजे में रोटी नहीं मिले
0: आज तो कहाँ जा रहा रोटी आने
1: हमारे लगे तो अभी मिलेगा बुटीक में सब मिलेगा बाकी आगे जब लड़का लोग निकोल तब बहुत दुख होता
0: तिल की रोटी मिलेगा अर्जुन रोटी में तिल रहे चोरी जोरी रहेगा
1: सब प्रकार की रोटी मिलेगा आ जाता है स्पॉ सब बा ना
0: भिरी में
1: हाँ हाँ भिरी में स्पो बा हौजा कास्कावेल जाए तो हौजा विनेस बा अभी
0: हर सुविधा मिलेगा आजकल अनिता बोला था अगला गीत के खातिर कौन गीत मांगने हुआ
1: हम सब परिवार के लिए आपके लिए आपके सभी टीम के लिए आपको बोन क्रोज आप काम करते हुआ
0: 11 बजे ले
1: हाँ,
0: काम करते रहो प्रार्थना करिए कोई पुपे छोड़ के चल
1: सचमुच के दुगो पुपेट मिल जाए
0: है ना सुना ना तो हम दिखाते है नीमन से तो हम खुशी रही ना जानवर से खेले गए बिल्डिंग के देखे म्याओ खोल जो कहते हैं लिखे थे ढग से कर दिला
1: लगे ना
0: हो सुन ना बिलिया जे
1: एगो बांदर आर हर फजीरी हमर लगी बनान रहल बहरा में लताब में अब खाता हमर पति जो है ना भगा दिला हम तो हमर पति के बोलते हैं हम तो दरवाजा बंद के भाग जा
0: नहीं वो लोग नोचे ला ना बांदर लोग नोचे ला ना
1: हाँ तो डर लगी ला ना सगरो सगरो
0: हाँ हाँ सगरो जालन कब जी फिर कुआं में रहे ला जी फिर कुआं में टंगा उसे गिन से तो चल अमिनी साहब की कुलचे का जनाए के लोग आकर नमाज के चल जाए
1: ढेर दिन से बाद
0: आवेला की रोज क्या आवेला
1: नहीं
0: कबो कबो आवेला कबो कबो नया घर में कबो हिलूल जाए तो हाँ तो हाँ के कहे कोमिक जैसे कर तर अंधार करता को बस दुगो करिया बिल्ली अब अंधार में ना बिल्ली के गोर ना बिल्ली के ना बिल्ली के मुंह लोकता ना कान लोकता है दुगों का मुझे हवा में दुगों कैसे से खड़ा बा अब तो डर गई थी नहीं तो अंधेरा में खाली चिबा अंकुआ कुलो ये सिन जोड़ी लोकता अब मैं दुगो पुपे थे लेके चल देती घर
1: बहुत अच्छी लगी आप बात करते हुए
0: बहुत बहुत धन्यवाद आता होला बिस्तर में जेबा फजी के देखिया आंकुक चमकी था नहीं सोचा भूत कुछ बाप रे भूत है कान दुगो आंकलाहो में लोग था ये भूत नहीं है बिल्ली लोग हम लोग बिस्तर के इच्छा में बैठा लोग हम कहाँ जानते भैया हम भीरी गए थे बिल्ली म्याओ से कर हम तो लुत्फ में छटक चकरी बन गई शोभा जी क्या चुप उनसे चला शोभा से मिल जाए हेलो शोभा जी नमस्ते हेलो कैसे समाचार
2: ठीक है आप ठीक है
0: बिल्कुल ठीक और आज के दिन कैसे बीता हेलो
2: ठीक हूँ
0: हाँ दिन अच्छी तरह से बीता ना ढेर दिन के बाद सुने करता किशा कर रहा कहा हमने
2: पानी पानी रहा
0: हाँ हाँ खाते उतना नहीं निकला था
2: गरम गरम ठंडा हुआ था
0: हाँ तो गरम गरम चाय तो कारी पका के गरम गरम चाय
2: नहीं
0: नहीं अभी चाह हुआ गरम करे लगी अभी मूजोन ही रहता दिन के वक्त घर में मूजोन ठंडा हुआ से

0: मुझन लो खिलाता बितरे
1: ठंडा में नहीं काम करबा त उ अपने ठंडा भाग जाला
0: नहीं फजर के जब उठ जईबा पर हाथ पानी में डाल देला त ठंडा सब भागल
1: नहीं फजर नहीं फजर के जब उठला त सेंके जिस पोला डाला नहाए नहा के जब पूजा करे पूजा करके तब लाकुजिन में देखो
0: अच्छा दुसगास बनाई से पनिया गरम
1: में त ठंडा सब भाग जाला
0: ठंडे में नहा लेवेला कबू

0: काबिची
1: पानी में झुगलता सीनी
0: हाँ पंजाब में है गए बैकुटा को रे हाँ जी अरे बोलता कौन कौन गीत कौन गीत सुनबा बोलता शोभा
1: लाली नहीं मिलेला
0: हाँ बोला कौन गीत सुनबा
1: हाँ है गीत आधा लिया ढेर सुन जाए नहीं बजलवा फटफटवा उड़ा जाला कस के पकड़ ले चाची सब कोई खातिन जितना कोई सुना
0: था फटफटवा
1: के लिए जन रात के काम करो था
0: अरे तो चला दे ओके अरे बाबा बहुत धन्यवाद अनिकेत सुनने कर ला शुभ रात्रि और कुछ संगत लाइन पे हेलो हेलो
2: हेलो प्रताप जी
0: नमस्ते जी के हो जा
2: हम मनु है रोजबेरी से
0: हाँ मनु बोला लाइन खोले से देखो की बच्चा आता ना खाते हमने के आनंद है ना सब कोई बचारा प्यार से और ढेर मना स्मृति का रिलासा कैसे कैसे था प्रोग्राम में ढेर कुछ सीखी रासा मिले ला सीखे
2: एक दिन भी जाएगा माटी का मोर जग में रह जाए प्यारे तेरे बोल
0: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल ए जीता जुदी के रखबा मुकेश है
2: हां हमें बता ई तो सच है ना
0: हां जी तो बात सच है हां
2: नहीं हफ्ते जीता सब कोई ना हमने के बात बताई
0: हां नीमन काम कर दिखा दिखा माता जी जीवन भर में नीमन काम कर ले हुआ दान पुण्य कर ले हुआ तो सब कुछ हर गुण गा जीवन भर कोई के गाड़ी दे ले हुआ कोई के दुख दे ले हुआ तो वो मरला के बाद भी आदमी हमने की गाड़ी दे
2: सच है
0: महाभारत महाभारत से महाभारत से रामायण से लेके आज चला ले सर कई कही के आज आज ले कोई नहीं खुशी रहेला फिर भी कई कही मार रहल दासी मंथरा उतना पालाप करके राम के बनवास भी जाकर दिलक उ भी को मार रहल पर आज ले कोई के प्यार नहीं करेला ओकर करतूत खातिर माँ के बाद में पछता तब होता राम तो चल गए बनवास
2: हाँ जब बोलते सब सब कोई सोची सब है दुनिया में था सब कोई निमन से जी अब सा
0: कभी ढेर मोबे आदमी माँ अभी कोई पर
2: बहुत बहुत बहुत जहाँ सुन बहुत प्रॉब्लम
0: खून खराब वो के वहाँ दिलक वो के किताबी कर दिलक
2: आगे हम उसे बाप जो हमने के आगे के दुनिया लकड़ी में पकावा है या की है वो सब दुनिया में रही सा जस्ती निमन से सुख
0: अभी फाजी के घर से निकलवा शाम के काजी घर में हिलवा की
2: नहीं नहीं नहीं सिया हवा हवे
0: बोलते कौन कहते आदमी से अभी आदमी छोटा छोटा बात में गुस्सा हो जाता
2: हाँ गुस्सा जाता तो जाने ला पूजा पाठ कर बहुत भगवान तो हर गुस्सा तो नहीं दूर करी
0: अभी कमती आदमी पूजा पाठ में भाई खाती
2: हाँ, हाँ सच्चे क्या बोला तो पूजा कर बहुत भाई भगवान हमके क्रोध बा हाँ हमके हम कुमाजे हमके निकाल दे है
0: सुबुद्धि दे ज्ञान दे क्रोध के ठंडा कर
2: ज्ञान दे हमके बुद्धि दे कहे हम के बुद्धि नहीं बा ये सब छला भगवान से मांगे
0: के
2: हाँ तब निमन से सब सब कुमाजे कोई को बतो तोरा बोली उ सतो बात बोली छोटा बाबू के अभी 9 महीना हो सिया गंगा और हमारे नाती है वन फ्राक रहेला वो मिहान मिहान
0: एगो ललना चला के को बर्थडे गीत हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे की
2: देखा तू दोनों में कोनो एगो गीत
0: आली आली चला दे
2: दादा आली बहुत धन्यवाद
0: बहुत धन्यवाद तुम मुझे टेलीफोन कर लो ओके जी ओके
2: बाबा कहे बोला सुने कर अब सोचू जाए ला सात आज घरे है आतान कर थोड़ा कब से
0: आज तो काशी हम इधर बच आई की
2: अरे शुभ दिन बहुत धन्यवाद आपको
0: शुभ रात्रि ओके
2: सब तोहरन परिवार के सब लड़का लोग के
0: आली बाय आली बाय राजन लक्ष्मण जी गीत मांगने सुनता के साजन के दिवल सारी और फट आरण को संगत फटफटवा मंगलक बाग टू बाग दो गाना सुना साजन की सारी और फटफटवा

रात के 10:16 हुआ था, तो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन से सुना था कार्यक्रम भोजपुरी तड़का जय प्रताप सिंह के साथ रात के 11 बजे ले। और अब एक छोटा सन कहानी नहीं सर, और कहानी के शीर्षक है गरीब आदमी के सपना। एगो छोटा सन गांव में रामू नाम के एगो गरीब इंसान रहत हल। बहुत मेहनती और ईमानदार रहल। ओकर एगो छोटा सन परिवार रहल, पत्नी के नाम रहल सीता और दुगो लड़का रहल। रामू दिन भर खेत में मजदूरी करत हल, लेकिन ओकर कमाई उतना नहीं रहल कि अपन परिवार के सब जरूरत सकत हल पूरा करे। कई बार घर में खाए के नहीं रहे, केवल सूखी रोटी परतल खाए के। गरीबी के बावजूद रामू के मन में एगो बड़ा सपना रहल। वो चाहत है कि ओकर लड़का लोग पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनी। वो नहीं चाहत है कि लड़का लोग ओकर लिखा गरीब रहे, कठिनाई का सामना करे। ये खातिर हर रात के वो आसमान के तारा दिखत हल और सोचत हल कि एक दिन ओकर परिवार में खुशहाली आई। एक दिन गाँव में एगो स्कूल के शिक्षक आल। वो रामू से बोलन, अगर तू अपन लड़का लोग के पढ़ेब लिखेब तो ओकर भविष्य बदले सकेला। ये सुनकर रामू के मन में आशा जागल। तो वो अधिक मेहनत करलक और फिर सुबह जल्दी उठलक, मजदूरी करलक और रात को भी छोटा मोटा काम करके पैसा बचेलक। कई वर्ष तक रामू कठिन परिश्रम करलक, अपन लड़का लोग के पढ़ाई जब नहीं रुकी। कभी कभी भूखा पेट परल सोई के वो सो लेलन, पर लड़का लोग के पैसा फीस बचा के रखलन, लड़का लोग के भूखा नहीं रखलन। और ओकर लड़का लोग अपन पिता की मेहनत देख के लोगों समझ कर कि चाहना पढ़े के लिखे के कहे कि माँ बाप इतना सैक्रिफिस इतना मेहनत करता लोग खातिर। समय बीतल कर रामू के बड़ा बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बन गल और बेटी अध्यापिका। और जोन गाँव में रामू रहत हल जहाँ गरीब में रहत हल, अब सब लोग ओके देख के ओकर प्रशंसा करते रहन कि हर इंसान के अगर ऐसा बाप मिले तो कितना अच्छा बात हवन। अपन पेट काट के लड़का लोग के पढ़ेलक लिखेलक और लड़का लोग डॉक्टर अध्यापिका प्रोफेसर बन गल। एक दिन रामू जब अपन छोटा सन अब एक दिन रामू अपन नए घर में गल, तब वहाँ पर ही देखला कि वो घर कितना सुंदर बा, मुस्कुरा

आके बोला, गरीब आदमी की सबसे बड़ा सपना रहेला मेहनत। तो एक कहानी के शीर्षक एक कहानी की शिक्षा ई है कि गरीब इंसान के भी हक है सपना देखे के, और मेहनत धैर्य और लगन से काम करब और शिक्षा प्राप्त करब त गरीब इंसान भी एक दिन अमीर बन जाला। तो हमेशा याद रखिए कि जो गरीब आदमी आज के है वो हमेशा गरीब नहीं रही, वो मेहनत लगन करी पढ़ाई करी तो एक दिन वो भी सकेला एगो बड़ा आदमी बन जाए। एक कहानी के साथ सुनब जगो प्यारा संगीत सुंदर परी। है गीत चलावते इस इंदिरा चिंताराम जी के नाम, और बेटा जय बहु पूनम, बेटा चंदन, बहुप्रिया, सब चिंताराम परिवार के नाम।

0: l'occasion lancement MBC Play, prépare-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir à l'essence des grands gagnants pour un pot d'étiquette Saken pour un Helicopter Joyride exceptionnel dans Région 6-10, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et crée un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, reste à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voir un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont créé un compte MBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la chance, participe dans le grand final le 29 mai. MBC Play, avec vous, partout. Pour plus d'informations, téléphone-le 400D-8000. Conditions applicables.
1: हम लोग में से ढेर कोई खुशी रहला सिनेमा घर जाए के भरा पर्दा पर फिल्म देखे के तो ये महीना मई 2026 के अंत में ये दो फिल्म रिलीज हो के बाद एगो कॉमेडी मूवी है हाउसफुल 5। ये फिल्म के कलाकार है अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बावजा, नरगिस वाकरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पालेकर, चंकी पांडे, जॉनी लवर, श्रेयस तलपड़ी, फरदीन खान और चित्रंगदा सिंह। फरदीन खान पर कमबैक करा था बॉलीवुड की दुनिया में, नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ भी रही। ईगो एक्शन, ईगो कॉमेडी मूवी रही, फुल कॉमेडी।

मूवी हाउसफुल 5 जून मई महीना के अंत में रिलीज हो के बा। एक बाद और एगो फिल्म आए एक्शन मूवी ओकर टाइटल है वॉर 2। ये फिल्म के कलाकार एगो एक्शन मूवी है एक में दिखबा ऋतिक रोशन रामा राव जी आर को गारा आडवाणी और आशुतोष राणा ये दुगो फिल्म रिलीज मई महीना के अंत में फिल्म जरूर देखिया जा। एगो है एक्शन मूवी वॉर 2 एगो कॉमेडी मूवी हाउसफुल 5। तो आशा करते हैं कि हाउसफुल 5 जो ना बड़ा जबरदस्त धमाका करी कहे कि हमने खुशियाँ से हंसी खुशी के फिल्म देखे के तो स्ट्रेस के दूर भगाए खातिर जरूर देखिया हाउसफुल 5 मई महीने के अंत में। अभी कहते रात के 10 बज के आधा हुआ था और सुना जाएगो खूबसूरत गीत उमेश दोहू की आवाज़ में जिले जिले जिले जिले बहुत ही प्यारा सन गाना है गीत चली किशन गोरियाप के नाम और अक्षय शर्मा खातिर जो नमन की साधे वन उदय धनी राम की वन राज मन्ना जी हेलो जी नमस्ते गीत हर पत्नी तुहर बेटी दामाद और सब परिवार खातिर जिमी दुखिया है गीत हो खातिर तुहर सब परिवार के नाम सुदेश माफ करिए सुदेश जसवा ओकर माँ राजकुमारी सब जसवा परिवार के नाम जिमी दुखिया है गीत और खातिर सब दुखिया परिवार के नाम है गीत चली सब संगत्यालो के नाम जो न बेशक हमने की साथ दे वतनी समय रात के बखत हमने की सुना तो रात के 11 बजे रे पूरा रात ले रेडियो के साथ जुड़ल रहा फिर कोई की नींद नहीं लगता तो कोई बात नहीं नींद नहीं लगता तो हमने की साथ जिले जिले जिले जिले बहुत ही प्यारा संगीत उमेश दोहू की आवाज़ में

अंग्रेजी लेखक विलियम शेक्सपियर अच्छा बोले रहा, लेट्स ऑल ड्रिंक बी मैरी, लेट्स ईट ड्रिंक एंड बी मैरी फॉर टुमारो वी शॉल डाई एंड कोट। जी हाँ, विलियम शेक्सपियर को अंग्रेजी लेखक रहा, बोला कि खाला पीले जिले भैया जिंदगी में काबा, जिंदगी में कुछ नहीं बा कह के एक दिन मरी के बा। ये बतवा अच्छा बोले रहा ना, तो ये गीत हाँ ही बोलता, जिले जिले जिले जिले जिले जिले जिले जिले जिले जिले जिले जिले रे काल के कौन भरोसा बा भैया, अरे चोला के ठिकाने बा जोन बात आज ही जिला अभी जिला, नाचे गावो हमने के संगे संगे। रात के 10:36 हुआ था। अब थोड़ा सुन बात करब सर मिर्ची के बारे में। मिर्ची के हमने भोजपुर में पीमा बोला सर, तो ढेर प्रकार के पीमा बा, चिपीमा गोपीमा पीमाकारी। अब ढेर कोई सकल नहीं जानते पीमाकारी के खोज ओकर तीता सब दूर करे के, ढेर कोई सब पीमाकारी के तरकारी खाए के, तब पीमाकारी जब कटब तो ओकर सब बिया धो दिया। सब बिया जब तू धो देब, धो के जब ओके तरब, तब तोहर पीमाकारी तनको तीता नहीं रही। सकब ओके रोची संगे खाए, पराठा संगे, नान संगे खाए। तो ये हम एक एक्सपीरियंस कर लेम यूट्यूब पर देखते रही कि कैसे तीता पीमा के तीता दूर खड़े काते को सब बिया छा निकाल दे के और धो लिया पीमा के, नमक डाल के प्याज डाल के तार दिया, मजा से खेब उस धो लिए बार पीमा को खा ली कुछ। पर ढेर कोई खुशिया तीता मजा तीता पीमा खाए के पीमा का आगे था, तब बिया समेत छा पकाए के। ये जो आदमी की सुफमो होला ओके मन करता पीमा का आगे खाए के, तब सब बिया निकाल के धो के तरिया, तब मजा से खाइए सुफमो नहीं हुई। अब चिपीमो है, चिपीमो के कौन सी होला, चिपीमो के माजा बाखू बनेला, पीमो वे के भी पीमा रूस के भी बनेला, और एगो है गोपीमा, वो तो सब में से भी होला, चटनी में तरकारी में ना। और मिर्ची जो पीमा है वो भारतीय भोजन के एगो महत्वपूर्ण हिस्सा है। एकर उपयोग खाना के स्वाद बढ़ाए में तीखापन और सुगंध लाए खातिर ढेर प्ला में एक इस्तेमाल करी रहा सा, और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। पीमा में विटामिन ए बा, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट बी बा, ये शरीर के रोग के दूर रखेला, पाचन क्रिया डाइजेशन के बेहतर बनावेला, सर्दी जुकाम से हमने के दूर रखेला, और शरीर में ऊर्जा और गर्मी पैदा करेला। खेती और व्यापार में भी महत्व देवेला। भारत में मिर्च की खेती बड़े पैमाने पर होला, मॉरिशस में भी खूब पलौताला पीमा यहाँ पर ही, और मॉरिशस हर प्रकार के पीमा खुशी रहेला खाए के। बाजार में जेबा तो सातों दिन दोहरा मिली पीमा, चिपीमा गोपीमा पीमा का आगे सब कहते पीमा बा। एक औषधि के रूप में भी प्रयोग होला। तो जाना तला कि पीमा कुछ आयुर्वेद और घरेलू उपचार में मिर्च के प्रयोग होला। जी हाँ, सीमित मात्रा में ओकर सेवन शरीर के लिए उपयोगी है। तो भूलिए नहीं जो पीमा हमने खाएला सर एक से दवाई भी बनेला, और पर जो की सुफमो होला वो लोग सुफमो से प्रेरित होला, तो लोग के नहीं चाह पीमा खाए के। हाँ, थोड़ा मन करी पीमा का आगे खाए के, तब पीमा का आगे के कोई बिया धो के तरिया, तब सकबा पीमा अच्छी तरह से खाए। तो चला अभी सुन अब जाएगा गाना, ललिता पुनीत की गावल गीत है इंद्रासन से ढोलक मंगाई दी। है गीत तो हमने चलाते ही सब पूनम जी के नाम और सब परिवार के लिए, त्रियोले से सबका कत्या परिवार के नाम, सब जीरा खान परिवार खातिर, सब हरकू परिवार खातिर, और फिर है गीत चली प्रीतम राज जिमिला के नाम, आप जो पस्त तो कर पत्नी का लेकर सब परिवार खातिर, और सैंटोबे SSS कॉलेज के हमारे सब स्टूडेंट्स अध्यापक और रेक्टर के नाम भी गीत इंद्रासन से ढोलक मंगाई दी, खासकर गुरुजी गंगू और मिस्टर एडू खातिर। है गीत चली वीना कुपुस्वामी के नाम, आप रहेलन मीबग, और है गीत चली विश्वानी बाबूलाल के नाम, लाखोजा रहेलन, और है गीत चली सब संगत यारों के नाम, जो ये खत्म नहीं सुनाता रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर।

0: इंद्रासन से ढोलक मंगाई ली गमत करे जाए खातिर का क्या बात है और अभी एगो संगतिया बहन की संगे एक सुनम जा हेलो हेलो हेलो जी हेलो बात करा
1: टेलीफोन नमस्ते
0: नमस्ते जी तो हाँ शुभ नाम कुमाऊ आप छदवीर को तो अभी ते
1: कैपी
0: मामा को वहाँ पे ले
1: कविता
0: ओके और मम्मी से क्या कहना चाहते हो क्यों मुझे मामा जैन जैन जोली मोप मामा जी कविता को मामा स्वांची मिसाज
1: रोजी से नाम वैसे
0: ओके सो मामा को हैप्पी बर्थडे कहते हैं मामा मामा के लिए गीत गाओगे उस वातन चिकित्सु मामा आसाम आवेक नो आलू संते Happy birthday to mama. Happy birthday to mama. Mama ka naam kya hai?
1: Kavita.
0: Happy birthday, mama Kavita. Happy birthday, mama Kavita. Okay?
1: Oui.
0: Allez, nous mettons une santé pour lui là. Okay, beta?
1: Oui.
0: Allez, bye bye. Good night. ये था एक छोटा सा लड़का जो अपनी मामा को हैप्पी बर्थडे कहना चाहता था ठीक है तो हो गल पर माँ का दे देगा हैप्पी बर्थडे का खींचा आपसे कुछ जोली गीत देखा गोले का पर माँ की कितना खुशी रहेला अनुता गणेश पिता से टेलीफोनिक कर लन और बेशक मन करता है कुछ टेलीफोनिक करे कितना सकबा टेलीफोनिक करे लाइन खुलल बा का जगोदे विद सैंक हम एक बात बोले थे जब हम एगो गीत चलाएला तो गीतवा पूरा चलाएला अब गीतवा के बीच में टेलीफोनिक करबा तो जिप्सिल बा गीतवा काट के फोन ले के कहे कि ढेर कोई गीतवा बैठ के अप्रिशिए करा था और आनंद ले होता एक खातिर हम माफ़ी चाहते हैं पर हमने के यहाँ पर एगो नियम है गो डिसिप्लिन है जब वो गीत चली तो गीतवा चला पूरा चलाएगी गीतवा जब चला दे अब सर तो गीतवा के अंत में तब सकब टेलीफोन तब सकब अभी कैसे एगो तापी पर बचाते तो अभी सकब टेलीफोन ले कहे कि अभी गीत नहीं चलाता ठीक बा समझदार की इशारा काफ़ी बा और को संगत वाला पे हेलो
2: नमस्ते नमस्ते
0: भाई जी तो हर शुभ नाम
2: अच्छा हूँ मैं दनपत हूँ वाकवा से
0: हाँ दनपत चाचा तो हर स्वागत बा बोला
2: हमर देखा था देश में हमने जन्म ले लिया सर जब जन्म लेके फिर से हमने की उम्मीद हो गल हमारी उम्मीद हमार उम्मीद हो गल बा चार कोड़ी दो
0: अब
2: कठपुतली हो गल बा अभी हमने की जीवन फिर से जन्म लेना है सर तो हमने के लड़का लोग के चारा सूची के हमने के लड़का के बोला कोई संगीत डलिया हमने के बाप माँ जो जन्म दिले बा हमने के फिर वो अथी में कुबा में नहीं डाला
0: हाँ जी
2: बाप माँ के देखा
0: बाप माँ के दिल नहीं दुखाई के कहा कि माँ बाप हुए तो हमने के बागबान है ना
2: बहुत बहुत
0: माँ बाप जितना करेला कोई नहीं करेला बाबू जितना कोई माँ बाप करेला
2: बोला था थोड़ा मॉरिशस में जितना पूजा हुआ था हमने के लड़का के चल आगे आगे लागे और अभी से चला शुरू नहीं बोलियो तब ले चल रहा हो जल अभी देखो लड़का लोग बड़ा होता मगर इतनी लोग के बड़ा आदमी के अपन बड़ा बुजुर्ग के कहते कुटो से अपन चाकू से मार दे हमारे ये वो गीत बहन वो गीत ऐसे बोला स्कूल कॉलेज में तब बोला माँ बाप को
0: माँ बाप की गीत को खोज हाँ
2: हाँ माँ बाप पर
0: आले आले
2: माँ तो पहला हुआ ना
0: तोहर लेकाल तोहरा लेकाल तोहरा दिखेला भैया तोहर लेकाल तोहरा दिखेला
2: जब हम बोला साईं हमारे

0: बेटी बा दोनों बाहर हो अंश अब जन चीज हो था बाहर में अब वो लोग लौट के हो जाता आएगी अब देखा तो कैसा जमाना चल रहा बा
1: दुनिया
0: भैया
1: हाँ माँ बाप पर
0: हाँ माँ बाप पर वही जो कॉलेज में एक अच्छी बेटी जो बेटी साल गावेला बोला माँ बाप के दुख नहीं दिया
1: एगो फिल्म एगो फिल्म के गीत मांगा था वह फिल्म के
0: नहीं जी बहनिया बाबू के बहन हुई गातवा बरसाई जी अच्छा फिल्म की नहीं है वो
1: एगो
0: भोजपुरी
1: के गीत था आले चला दियो अब सर
0: अच्छा
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमने की फोन कर ला चाह और अब रतन उगैली हवान दा नमवा बुलबा के गेलक बता हमने की फासिरी खोज के लापागई में ते ढेर गीत बा पर माँ पर एगो गीत ओके माँ बाप भगवान है गीत ऐसा कब से चला यहाँ तो जैसे कि भाई जी बोला था कि लड़का लोग जब बड़ा होला तो बुझाला लोग के माँ बाप पोछ उछा ले और माँ बाप के जाके कुओं में छोड़ देवे लन सर भाई जी को विनती करा था बोला था कि माँ बाप के कुओं में नहीं डाले के कहे कि माँ बाप के दिल तरसेला लड़का लोगों से करेला तो क्या करबा पर कभी कभो पति पति दोनों काम कर लड़का लोग अब लोगों भी सहला तो दिखे लन सर कि जगह कबो समय नहीं रहला था जाके कुओं में छोड़ देवे लन सबका पर अपन विचार बा पर कहा लड़का लोग कहा बोल लड़का लोग बड़ा तो सब कुछ भुला जा लन सर माँ बाप कितना परिश्रम से मेहनत से लड़का लोग के जन्म दिलक बड़ा करलक परवरिश करलक पर लड़का लोग जैसे शादी कर लन सर ढेर कोई माँ बाप की भुला चला माँ बाप की सेवा करला भी एगो पुण्य के काम है तू खाए तू खातिर तू कत में कितना भी पूजा पाठ कर कितना भी दान पुण्य कर अगर माँ बाप के तिरस्कार करला माँ बाप की दिल दुखेला तो फिर नहीं का तोहरा बोला विकास जस्ती तू तो हमसे समझदार हुआ पढ़ा लिखा लोग हवा जा कैसे अपन सास ससुर की सेवा कर रहा था कहे नहीं माँ बाप की सेवा होला जब को छोकरी शादी करके आवेला तो दिखी रहा थे छोकरी लोग खाली अपन माँ बाप के मान देवलन सा सास ससुर की गिनती नहीं अब छोकराओ अपन पत्नी की बात सुन के माँ बाप के तिरस्कार खाली सास ससुर की पूजा कर रहा था तोहर माँ बाप ओकर मान सम्मान नहीं बा दोनों के मान सम्मान बा माँ बाप सास ससुर दोनों के जहाँ सेवा करे के अभी फेत मामा हुआ था है लाफेट जी माँ के तब सब कोई चाहे धीरे कोई अपन माँ लगे या अपन सास लगे चाहे नमस्ते बोले अगर रोज के अपन माँ बाप अपन सास ससुर के नमस्ते बोल बा तो यही काफ़ी है माँ बाप के कादू नहीं चहला माँ बाप के यहाँ सब कुछ बा माँ बाप के चेहरा अपन लड़का लोग के प्यार अपन लड़का लोग के अपना अपन एक और माँ बाप के सबसे बड़ा सुख है जब उनका लड़का को रोक के सामने बा खिलाता नाचता गावता और माँ बाप खुशी रह सब लड़का संगे रही बेटा पतु बेटी नाती हर माँ बाप के सपना है पर आजकल घर घर में दिख बा तो महाभारत वो कर सी बचाला वो कर मुन ने मंग कर रहा देखे कि कभी कभी छोटे छोटे बात कभी वो बड़ा आदमी हो लोग कभी वो लोग इधर उधर बचा लन सर तब बड़ा आदमी लोग से मांग कर अब जाके जान ही ना सके तेलो के लिए इस भी लड़का लिखा हो जाता है समय के साथ पर कभी भी एगो बात सुन के बतवा के ऊपर चढ़ा के नहीं बचेगा कभी एगो पतों के बात लेके दूसर पतों के बोल देवे ला सर तब जीवन भर परिवार टूट जाला अब बिलसे बिलसे में तो जाने ला कैसे होला सगरों नहीं बहुत से पर कभी कभी सास लोग झगड़ा डाल देवेला हम देख ले हैं छोटा छोटा बात लेके हाई बहू के बात लेके हाउ बहू के बात कान में डाल देला कि हाउ बहू के कान बात लेके हाई बहू के कान डाल तक जीवन फिनिश तो ये सब नहीं चहला चहला नहीं मन से जिए के उम्र ढलते जाता जाए के समय आवा था तो ऐसा काम नहीं करिए कि तोहर मरला के बाद भी अदमा तोहरा गाड़ी दी तो ये खातिर बैला से जब ले जीबा अपन जीप संभाल के बात करे कि सोचा कहाँ बचा हुआ था वह केकर से बचा था और कैसे बचा हुआ था वह हई मुँह से हमनी हमनी के चुन हमनी के लोग प्रशंसा करेला हई मुँह खातिर हमनी पर ढेर प्रॉब्लम हो रहा था अरे जन मुँह है एक संभाल की बात करें सच्चे बड़ा आदमी लोग से बोलते हैं माफ़ी चाहते हैं पर ढेर बड़ा आदमी लोग दिखी रहता घर में कभी कभी झगड़ा डाल देवे लन सर छोटा छोटा बात लेके हम नहीं बोल रहे थे कि हमने की दीफों में हमियों के नौजवानों की दीफों पर ढेर घर में सास लोग बहू बहू में झगड़ा डाल देवे लन सर बैठ के तमाशा दिखे लन सर हम तो चाहे सबको एक साथ रही अच्छी तरह से, माँ बाप बेटा बहू चीज़ों फॉँ लोग सास ससुर सब कोई, पर ढेर कोई ताना दे वेला ताना दे दे के रिश्ता तोड़ दे वेलन सब।

और जाते जाते सुनना जाए सूचना महतवा कैलाश नाथ सनातन धर्मपतिर एसोसिएशन जन शिवालीन महतवा में स्थित बा सबको की आमंत्रण देवता अधिक मास पूजा में भाग लेके पूजा शुरू हो गल बा रविवार 17 मई से और पूजा एक महीना ले जाए सोमवार 15 जून ले मई से लेके जून ले पूजा हो और पूजा जुन हो चली 15 जून ने रोज के सांझ के 6 बजे का पहले दिन रहल कलश स्थापना कथा और आरती फिर बाद में पूजा विधि 6:30 से रात के 8:30 फिर लिंदी 15 जून से रोज के चली पूजा सांझ के 6 बजे से रात के 9 बजे

चले और सोमवार 15 जून को पूर्णाम होती और महाप्रसाद की वितरण हुई। ये पूजा करियन पंडित आचार्य लवकुश त्रिपाठी जी सबको आमंत्रित

नाथ मंदिर में संडे 17 मई से लेके लिंदी 15 जून तक, तो एक महीने ने पूजा चली, पूजा रोज के हुई सांझ के 6 बजे से 9 बजे चली और 15 जून सोमवार 15 जून के पूर्ण होती हुई पूजा पूरा हुई महाप्रसाद मिली व्यासवाचक होयन आचार्य लवकुश त्रिपाठी जी। तभी सुना तरह एक सूचना हरी गीत के संगे और हे सूचना के संगे भोजपुरी तर का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता। हमने की तरफ की मुलाकात हुई कल बीफे के सांझ के 4 से 5 बजे दिल से मिले दिल प्रोग्राम में रेडियो मनोरंजन पर, और एक मुलाकात तक हमने की इजाज़त दा और जय प्रताप सिंह की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते और सलाम शुभरात्रि।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: फिर से एक बार आ गई हूँ मैं आप लोगों का साथ देने के लिए इन यो सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। तो गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए इस खूबसूरत से शो में जब मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी या मुकेश दा जैसे लीजेंड्स की आवाज़ गूंजती हैं तो दिल खुद ब खुद मुस्कुराने लगता है। आज की शाम उन्हीं सुनहरी आवाज़ों के नाम और ख़ासकर हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स के नाम।

दिल से हम उम्मीद करते हैं कि हर एक गाना जो हम पेश कर रहे हैं आपके लिए इन यो सुनहरे पल आपको दिल से अच्छा लग रहा है दोस्तों। बिल्कुल आज हम लेकर आए हैं म्यूजिक थेरेपी। जी हाँ, ओल्ड बॉलीवुड गाने की थेरेपी, क्योंकि पुराने गीत सिर्फ कानों को नमी दिल को भी सुकून देते हैं। तो चलिए आप अपने दिल को सुकून देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये अगला नगमा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। नाम प्रीति मच्छू की, ये आपका भी फेवरेट हो सकता है।

पुराने गानों की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो हमें हमेशा हमेशा पॉजिटिव और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। तो इस प्यारी सी शाम को और भी हसीन बनाने के लिए बस हमारा साथ यूं ही देते रहना। तो चलिए जी, जितने भी लोग फिलहाल गाड़ी चला रहे हैं, सो मिस्टर ड्राइवर साहब, गाड़ी जरा आराम से चलाना, रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये नेक्स्ट गाना खासकर आपके लिए इन्हीं सुनहरे पर।

पूछो मेरी आहों को समझो, तुम पूजा हम पुजारी, तुम किस्मत

वेल दोस्तों, ये वो दौर था जब गीतों में शायरी होती थी, आवाजों में मिठास और धुनों में सुकून। आज हम लेकर आए हैं उसी खूबसूरत दौर की यादें सिर्फ आपके लिए इन योर सुनहरे पर ऑन रेडियो मॉरिशस। रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक गिनिशा का साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया।

जिंदगी की भागदौड़ में अगर दिल को थोड़ी सी राहत चाहिए, जिंदगी की भागदौड़ में दोस्तों अगर थोड़ी सी आपके दिल को राहत चाहिए, तो ओल्ड बॉलीवुड गाने से बेहतर कुछ नहीं होता है जिंदगी में। तो आज बस रिलैक्स कीजिए और सुरों के सफर का आप दिल से मजा ले लीजिए। पुराने गाने हमें सिखाते हैं कि असली खुशी

छोटी छोटी बातों में ही होती हैं। एक प्यारा सा गीत, एक मुस्कान और अपनों का साथ, बस इतना ही काफी होता है। तो चलिए एंजॉय कीजिए ये अगला नगमा।

चलिए जी, आज का ये खूबसूरत सफर यही पे खत्म होता है। आपका अपना सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस, गिनिशा को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत शो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड नाइट।

0: कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: एक बात बताऊं दोस्त?
1: बता बता जल्दी बता।
0: एक बार वो मुझे मिलने आई।
1: अच्छा?
0: मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी, बस दोनों देखते रह गए।

0: तो उसका टेलीफोन आया। हाँ, कहने लगी हेलो डार्लिंग
1: डार्लिंग।
0: हाँ,
1: फिर क्या बोली?
0: बोली मेरे घर में पार्टी है, आओ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा वहाँ उसकी सिवाय कोई भी नहीं था।
1: फिर क्या हुआ?
0: मैं था,
1: वो थी,
0: मतलब मैं था।

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा,